सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्र मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 सितंबर 2026 सुबह के 7 बज रहे हैं। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर का खर्च चलाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि उसके घर में खाने के लिए अन्न नहीं होता था, लेकिन राधा का दिल बहुत दयालु था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां बीनने गई। लौटते समय उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा। वो बहुत थकी हुई थी और भूख से कमजोर लग रही थी। राधा ने तुरंत अपनी झोली से रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे दे दिया। बूढ़ी औरत ने राधा की आंखों में देखा और बोली, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ये लो, ये एक जादुई हांडी है, जब भी तुम इसमें कुछ पकाओगी ये कभी खाली नहीं होगी और हमेशा स्वादिष्ट भोजन देती रहेगी। राधा ने हैरानी से हांडी ली और घर लौट आई। जब उसकी माँ ने उसमें चावल पकाने चाहे तो हांडी से गर्मा गर्म भोजन निकलने लगा और रुकने का नाम ही नहीं लिया। घर में खुशबू फैल गई और सब ने पेट भर कर खाना खाया। ये देखकर परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उन्हें भूखे रहने की चिंता नहीं रही। धीरे धीरे राधा और उसका परिवार गांव के गरीब और भूखे लोगों को भी उसी हांडी से भोजन कराने लगे। गांव वाले राधा की दयालुता देखकर बहुत प्रभावित हुए। सभी लोग उसे आशीर्वाद देने लगे। एक दिन गांव का लालची जमींदार उस हांडी के बारे में जान गया। उसने राधा के घर से हांडी चुराने की योजना बनाई। रात को वो चुपके से घर में घुसा और हांडी उठा ले गया। लेकिन जब उसने उसमें खाना पकाने की कोशिश की तो हांडी ने भोजन निकालना शुरू तो किया, मगर वो सड़ा गला और बदबूदार था। जमींदार गुस्से से चिल्लाने लगा और हांडी को बाहर फेंक दिया। अगले दिन हांडी किसी तरह वापस राधा के घर पहुंची। गांव वालों ने ये देखकर समझा कि ये हांडी सिर्फ उसी के पास रह सकती है जिसके दिल में सच्ची दया हो। राधा और उसका परिवार अब कभी भूखा नहीं रहा और उन्होंने हमेशा गरीबों और भूखों को खाना खिलाना जारी रखा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है।
0: जीवन सौरभ।

रोजाना की तरह सुबह 8 बजे सुनेगा कार्यक्रम वतन का राग, शहीद बूटा सिंह, इन्हीं पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम वतन का राग। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। सुबह 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम बाल सभा, कृष्ण की बाल लीला। कार्यक्रम में स्वर होगा परिकल्पक और मनीषा चतुर्वेदी का। हमारी सेना हमारा गर्व, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 9 बजे। भारतीय सेना भर्ती में प्रक्रिया, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भाभा से अदिति गौड़ की चर्चा इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। हमारा विशेष कार्यक्रम शहीद भगत सिंह प्ले सुनिए सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की है फराज फैयाज ने। देश के संस्थान के अंतर्गत कार्यक्रम, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10 बजे। और देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो संस्थान पर बातचीत होगी उसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA। कार्यक्रम में स्वर होगा दीपक नेमा और भगवती सक्सेना का। याद करो कुर्बानी, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। वासुदेव बलवंत सिंह गोगटे की जयंती पर आधारित होगा आज का यह कार्यक्रम। आज गुरुवार है और आज परिक्रमा सुनिए 11 बजे। युग प्रवर्तक विवेकानंद, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि एक अंतराल के बाद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
2: अध्वर्यवो यन्नरः कामयाध्वे सृष्टि वहन्तो नशथा तदिंद्रे गभस्तिपूतं भरत श्रुतायेन्द्राय सोमं यज्यवो जुहोत। हे अध्वर्युगणो, नेता इंद्रदेव को हविष्यान्न प्रदान करके अपनी कामना अनुसार वांछित वस्तु में प्राप्त करो। उंगलियों से शोधित सोम को यशस्वी इंद्रदेव के निमित्त प्रदान करते हुए आहुतियां दे। अध्वर्यवः कर्तना सृष्टिमस्मै वने निपूतं वन उन्नयध्वं जुषाणो हस्त्यमभि वावशे व इंद्राय सोमं मदिरं जुहोत। हे अध्वर्युगणो, काष्ठ पात्र में शोधित सोमरस को रखकर इंद्रदेव के समीप पहुंचाओ। वे सोमपाई तुम्हारे हाथ में शोधित सोमरस की इच्छा करते हैं, अतः इंद्रदेव को हर्षित करने वाले सोम की आहुतियां समर्पित करो। अध्वर्यवः पयसोर्ध यथा गोह सोमे भिरीं प्रणता भोजमिंद्रम वेदाहमस्य निभृतम् एतद्दित्संतम् भूयो यजतश्चिकेत। हे अध्वर्युगणो, जिस तरह गाय के थन दूध से भरे रहते हैं, उसी तरह भोज्य पदार्थ प्रदान करने वाले इंद्रदेव को सोम के द्वारा पूर्ण करो। इससे पूज्य इंद्रदेव दाता यजमान को और अधिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इस गोपनीय रहस्य को हम भली भांति जानते हैं। अध्वर्यवो यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा तमूर्दरं न प्रणता यवेनेन्द्रं सोमेभिस्तदपो वो अस्तु। हे अध्वर्युगणो, इंद्रदेव द्युलोक पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्ष में उत्पन्न समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं। जिस प्रकार से जौ आदि अन्न से कोठे भरे जाते हैं, उसी प्रकार उन इंद्रदेव को सोमरस के द्वारा सदैव पूर्ण करते रहो। अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राधः समर्थयस्व बहुते वसव्यम् इंद्र यच्चित्रम् श्रवस्या अनु द्यून् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप महान ऐश्वर्यशाली हैं, अतः श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त हमें धन प्रदान करें। हम सदैव आपके धन को प्राप्त करने की कामना करते हैं। हम इस यज्ञ में पुत्र पौत्रों सहित उत्तम स्तोत्रों का गायन करके आपकी स्तुतियां करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।
2: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
3: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
4: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
3: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
4: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
3: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

समय के निरंतर प्रवाह में तारीखें बीत जाती हैं, पीढ़ियां बदलती जाती हैं, लेकिन बीते समय के गलियारों में उन कदमों की आहट सुनाई देती रहती है जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना, जिनका हर कदम देश के लिए बढ़ा। भारतीय स्वाधीनता इतिहास के गलियारों में ऐसे अनगिनत कदमों की गूंज सुनाई देती है। ये आहट उन नौजवानों की है जिन्होंने गुलामी के अंधेरों के बीच भी आज़ादी के सूरज का स्वप्न देखा, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के भाग्य में स्वाधीनता का सौभाग्य लिखा और अपनी सांसें देश के नाम कर दीं। ऐसे ही एक अमर बलिदानी हैं शहीद बूटा सिंह। अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के लिए देश के भीतर और बाहर कई आंदोलन चलाए गए, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुए गदर आंदोलन का स्थान इन सबसे अलग और अनूठा है। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य विदेशी धरती से भारत में क्रांति की अलख जगाना और ब्रिटिश भारतीय सेना की बैरकों के भीतर तैनात भारतीय सैनिकों के माध्यम से एक व्यापक सैन्य संघर्ष आयोजित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1915 में गदर पार्टी द्वारा बुना गया सैन्य संघर्ष का तानाबाना इतना व्यापक था कि इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी। इस योजना में ब्रिटिश भारतीय सेना की 23वीं कैवलरी के सैनिक भी शामिल थे। इसी रेजिमेंट के घुड़सवार सैनिक थे बूटा सिंह। बूटा सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के कसैल नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंचल सिंह था। कसैल और उसके आसपास का क्षेत्र शुरू से ही अपनी देशभक्ति और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता था। खेती किसानी के बीच ऐसे ही वातावरण में उनकी परवरिश हुई। इस तरह बूटा सिंह को बचपन से ही धार्मिक संस्कार, ईमानदारी और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा अपने परिवार से विरासत में मिली।

बूटा सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उस समय पंजाब में ग्रामीण युवा आजीविका के लिए अक्सर सेना में भर्ती हुआ करते थे। बूटा सिंह शारीरिक रूप से बलिष्ठ, अनुशासित और अत्यंत साहसी थे, इसलिए युवावस्था में प्रवेश करते ही वो ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए। अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर बूटा सिंह 23वीं कैवलरी में एक सैनिक के रूप में नियुक्त हो गए। 23वीं कैवलरी ब्रिटिश भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी थी, जिसे एक प्रसिद्ध घुड़सवार रेजिमेंट के रूप में जाना जाता था। इस रेजिमेंट में पंजाब के वीर जवानों की बड़ी संख्या थी। एक सैनिक के रूप में बूटा सिंह अत्यंत अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और अपने साथी सैनिकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। लेकिन वर्दी पहनने के बावजूद उनके सीने में भारत माता की गुलामी की टीस हमेशा बनी रहती थी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय और एशियाई मोर्चों पर अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसी समय पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों के शोषण और उनकी दमनकारी नीतियों के कारण असंतोष अपने चरम पर था। इन परिस्थितियों ने बूटा सिंह जैसे संवेदनशील सैनिकों के मन को झकझोर कर रख दिया था। विदेशों में रह रहे प्रवासी क्रांतिकारी भी उद्वेलित थे। परिणाम स्वरूप बाबा सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी गदर पार्टी के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दे रहे थे। गदर पार्टी का स्पष्ट मानना था कि जब तक ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक अंग्रेजों का साथ देना बंद नहीं करेंगे और जब तक अपनी बंदूकें अंग्रेजों की तरफ नहीं मोड़ देंगे, तब तक भारत की आजादी संभव नहीं है। इसी रणनीति के तहत गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारियों ने विभिन्न सैनिक छावनियों जैसे लाहौर, फिरोजपुर, मेरठ और नौगांव में तैनात भारतीय सैनिकों से गुप्त रूप से संपर्क साधना शुरू किया। क्रांतिकारी प्रेम सिंह गदर पार्टी के संगठनकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात 23वीं कैवलरी के सैनिकों से संपर्क स्थापित किया। प्रेम सिंह ने सैनिकों को गदर पार्टी के उद्देश्यों और अंग्रेजों की नीतियों के दुष्परिणामों से अवगत कराया। बूटा सिंह और उनके साथी सैनिकों के लिए ये एक निर्णायक मोड़ था। प्रेम सिंह के विचारों ने बूटा सिंह के भीतर देशभक्ति की ज्वाला को और अधिक प्रचंड कर दिया। उन्होंने अपनी आजीविका, भविष्य की सुरक्षा और जीवन की परवाह न करते हुए गदर आंदोलन से जुड़ने का संकल्प लिया। बूटा सिंह ने न केवल खुद को इस महायज्ञ से जोड़ा, बल्कि 23वीं कैवलरी के अपने अन्य साथी सैनिकों को भी इस गुप्त सैन्य संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह 23वीं कैवलरी की नौगांव में तैनात टुकड़ी यूं तो बाहरी तौर पर अंग्रेजों की सेना नजर आ रही थी, लेकिन बूटा सिंह और उनके अनेक साथी जवान अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का शंखनाद करने को तैयार हो चुके थे।

बूटा सिंह गदर आंदोलन से जुड़ चुके थे। अपने साथी सैनिकों के साथ वो गुप्त क्रांति गतिविधियों में सघन रूप से सक्रिय थे। इसी बीच गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को पूरे देश में सैन्य संघर्ष की योजना बनाई। योजना ये थी कि देश भर की विभिन्न छावनियों में भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसरों को बंदी बना लेंगे या मार गिराएंगे तथा शस्त्रागारों पर कब्जा कर लेंगे और गदर पार्टी का झंडा लहराकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। इस व्यापक योजना हेतु सभी सैन्य छावनियों से संपर्क किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की नौगांव छावनी भी शामिल थी, जिसमें बूटा सिंह तैनात थे। इस विद्रोह को लेकर सैनिकों में बड़ा उत्साह था और तैयारी भी मजबूत थी। लेकिन किरपाल सिंह नामक एक गद्दार ने अंग्रेजों तक ये सूचना पहले ही पहुंचा दी और समय से पहले ही इस योजना का खुलासा हो गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की और कई प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए। विद्रोह की योजना के उजागर हो जाने के बाद भी 23वीं कैवलरी के सैनिकों, विशेष रूप से बूटा सिंह का हौसला टूटा नहीं था। वो छावनी के भीतर रहकर सही समय का इंतजार करने लगे और गुप्त रूप से अपने पास विस्फोटक और हथियार इकट्ठा करते रहे। इस योजना की विफलता के बाद ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को लगने लगा था कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा था नहीं। मई सन 1915 में 23वीं कैवलरी की टुकड़ी को, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात थी, उसे यहां से हटाकर युद्ध के मोर्चे पर भेजने का फैसला किया गया। सैनिकों को रेलगाड़ी से रवाना किया गया। 13 मई सन 1915 की तारीख थी। सैनिकों को ले जा रही ट्रेन हरपालपुर स्टेशन पर रुकी। सैनिक अपना सामान ट्रेन के डिब्बे में व्यवस्थित कर रहे थे कि अचानक एक बक्सा नीचे गिर पड़ा। इस बक्से में गुप्त रूप से रखी गई विस्फोटक सामग्री, बम और हथियार रखे हुए थे। बक्सा गिरते ही रेलवे स्टेशन में प्रचंड विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जब पूरे सामान की तलाशी ली गई तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। बक्से के भीतर से बम बनाने की सामग्री और हथियार तो मिले ही, गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी साहित्य, पर्चे और गुप्त योजना के दस्तावेज भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के हरपालपुर स्टेशन का ये विस्फोट ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। इस घटना से अंग्रेज ये समझ गए थे कि ये सैनिक सामान्य सैनिक नहीं हैं, बल्कि ये गदर पार्टी के उस गुप्त संगठन का हिस्सा हैं जो ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए सेना के भीतर काम कर रहा था। अंग्रेजों ने हरपालपुर स्टेशन और नौगांव छावनी को घेर लिया। गहन जांच शुरू हुई और संदेह तथा साक्ष्यों के आधार पर 18 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों में बूटा सिंह मुख्य रूप से शामिल थे, क्योंकि वो छावनी में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। इन 18 सैनिकों के विरुद्ध शिमला के पास स्थित डगशाई सैन्य छावनी में कोर्ट मार्शल किया गया और एक तरफा फैसला सुना दिया गया। 12 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई और शेष सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। मृत्युदंड पाने वाले 12 सैनिकों में बूटा सिंह का नाम प्रमुखता से शामिल था। बूटा सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को अंबाला सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। 3 सितंबर सन 1915 को बूटा सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सबसे मार्मिक तथ्य ये है कि उनके परिवार के सदस्यों को उनकी फांसी की सूचना तक नहीं दी गई। इस तरह भारत माता के एक सच्चे सपूत ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है कान्हा की बाल लीलाएं।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम बाल सभा। अब नाम ही बाल सभा है तो फिर बाल सभा में बातें भी तो वही होनी चाहिए जो आपके मन को भाएं। तो आज हम आपको एक ऐसे बाल सखा से मिलवा रहे हैं जो आपकी हर उम्र में, जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर आपके बुजुर्ग हो जाने तक, हमेशा हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। उनकी कही बातें, उनकी लीलाएं, उनका दिया गया ज्ञान हम सबको पल पल पर ध्यान भी आता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे आज। क्योंकि नन्हे से कृष्ण सिर पर मोर पंख, हाथ में मुरली, पैरों में छोटी छोटी पायल, गले में वैजंती माला और चेहरे पर ऐसी प्यारी सी मुस्कान कि जिसे देखकर यशोदा मैया भी अपनी सारी नाराजगी भूल जाती थी। इसीलिए तो कान्हा कैसे कैसे प्रश्न कर लेते थे, याद है आपको? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। अब बताइए, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कभी किसी से? लेकिन जो बाल कान्हा हैं वो कुछ भी पूछ लेते थे अपनी मैया से। कभी माखन की मटकी के पीछे भागते कान्हा, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते कान्हा, कभी जमुना जी के किनारे गायों के बीच घूमते कान्हा, तो कभी अपनी मुरली की धुन से पूरे वृंदावन को मोहित करने वाले कान्हा। और इसलिए ही तो आज मैं आपको ऐसी ही कान्हा की बाल लीलाएं बता बता के उनकी शरारतों में छुपे प्रेम को सुनाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि कैसे हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक हैं ये सारी लीलाएं। आज हम ज़रूर कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी हम सबको उनका दिया ज्ञान कैसे कैसे अपने साथ समाहित कर लेता है। अब देखिए, कृष्ण जी का जन्म तो अंधकार में ही हुआ था, कहानी यहीं से शुरू होती है। भगवान विष्णु ने देवकी को सूचित किया कि वो शीघ्र ही आठवीं संतान के रूप में उनकी कोख से जन्म लेने वाले हैं। वे वासुदेव से बोले, मेरे जन्म लेते ही आप मुझे लेकर अपने मित्र गोकुलवासी नंद बाबा के घर जाएं। वहां उनकी पत्नी यशोदा एक बालिका को जन्म दे चुकी होंगी, मुझे उन्हें सौंप कर आप उनकी नवजात बालिका को ले आएं तथा माता देवकी की गोद में डाल दें, किसी प्रकार का भय ना करें। ऐसा कह विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अर्धरात्रि के समय देवकी ने बालक को जन्म दिया। बालक रोया नहीं। वासुदेव ने नवजात शिशु के लिए कंस द्वारा रखवाई गई टोकरी में बालक को रखा। फिर कई पल तक वात्सल्य भरे सजल नेत्रों से अपलक उसे निहारते रहे। तभी वासुदेव के मस्तिष्क में प्रश्न कौंधा, जंजीरों से बंधा एक कैदी नवजात शिशु को कैसे सुरक्षित गोकुल पहुंचा सकता है? इसका उत्तर तुरंत मिला। उनकी जंजीरें खुलकर नीचे गिर पड़ी। वासुदेव समझ गए कि ईश्वर की लीला शुरू हो चुकी है। बस फिर क्या था, उन्होंने टोकरी उठाई और बाहर की ओर चल दिए। कारागार का द्वार खुला और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी के मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो चुकी थीं। बस यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की लीला। कितनी कठिन परिस्थिति थी और वही आधी रात का समय, चारों तरफ घोर अंधकार, लेकिन उसी अंधकार के बीच जब जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, तो कितनी अद्भुत रात होगी वो। उसके बाद यमुना जी ने कैसे चरण पखारे हैं, आप सुनकर देखिए। बाहर बादल अभी गरज ही रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, मूसलाधार बरसात होने लगी, पर वासुदेव निर्भय निर्विरोध आगे बढ़ते रहे, इस बात से अनभिज्ञ कि भगवान विष्णु के 1000 फनों वाले सेवक शेषनाग उनके ऊपर अपने फनों का विशाल छत्र ताने अदृश्य रूप से साथ साथ चल रहे हैं। यमुना तट पर जाकर वासुदेव ठिठके, लहरें उफन रही थीं, गोकुल यमुना नदी के उस पार था। वासुदेव भगवान का नाम लेकर लहरों में उतर गए। अचानक लहरें ऐसे ऊपर उठीं जैसे वासुदेव को टोकरी समेत लील जाना चाहती हों। शिशु कृष्ण ने यमुना की इच्छा को जानकर अपने पांव नीचे लटका दिए। यमुना चरणों को स्पर्श कर शांत हो गई। चमत्कारिक रूप से वासुदेव के लिए एक शुष्क धरातल वाला गलियारा बन गया। वासुदेव तेजी से आगे बढ़ने लगे। देखिए किस तरह से पवित्र नदी यमुना भी कृष्ण जी के पांव पखार कर शांत हो गई। कैसी है अद्भुत कृष्ण लीला। इसीलिए कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी गहरा हो बच्चों, प्रकाश आने की संभावना कभी खत्म नहीं होती। यहीं से हमें प्रभु श्री कृष्ण सीख देते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब आगे पहुंचे, अब गोकुल पहुंचे पालनहार। गोकुल की गलियां सुनसान थी। नंद बाबा के घर पहुंचकर वासुदेव ने द्वार खटखटाए, द्वार तुरंत खुल गए। मानो नंद बाबा द्वार के पीछे इसी प्रतीक्षा में तो खड़े हों कि कब वासुदेव आए और वे द्वार खोले। नंद बाबा अपने मित्र को देखकर आश्चर्य से बोले, मित्र वासुदेव, तुम यहां इस समय? तुम तो कंस के कारागार में थे। वासुदेव ने उनकी बात काटते हुए कहा, प्रिय मित्र, इस टोकरी में देवकी की 8वीं संतान है, पापी कंस का काल है। भगवान विष्णु की आज्ञा से इसे मैं तुम्हें सौंपने आया हूँ। अपनी सुरक्षा के साए में तुम इसे पालो। भगवान की यह भी आज्ञा है कि इसके बदले अपनी नवजात कन्या तुम मुझे दे दो। नंद बाबा मुस्कुराए, मैं समझ गया मित्र, जरा प्रतीक्षा करो। उन्होंने टोकरी से नवजात शिशु को उठाया और भीतर गए, जहां पलंग पर उनकी पत्नी यशोदा अपनी नवजात बालिका के साथ सो रही थी। नंद बाबा ने वासुदेव के बालक को यशोदा के बगल में लिटाकर अपनी बालिका को वासुदेव की टोकरी में रख दिया। दोनों मित्र केवल एक दूसरे को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते रहे। वासुदेव ने बालिका को टोकरी से उठाकर देवकी की गोद में रख दिया। देख रहे हैं आप कैसे यशोदा मैया के आंगन में आ गए, कैसे गोकुल की गलियों को हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने ठिठोलियां करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन गलियों में दौड़ते हुए नन्हे कान्हा कभी घुटनों के बल चलते, कभी अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश करते, कभी ऐसी शरारत करते कि बस पूरा घर उनके पीछे दौड़ता रहता। कल्पना कीजिए कि मैया ने घर में माखन रखा है और कान्हा की नजर उस माखन पर पड़ गई। अब खाना सोच रहे हैं कि इसे कैसे पाया जाए, मटकी इतनी ऊपर है, अकेले कैसे पहुंचेंगे। तो कान्हा अपने दोस्तों को बुलाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर माखन की मटकी तक पहुंचते हैं। और माखन मिल गया तो सिर्फ खुद तोड़ी खाएंगे, अपने दोस्तों को भी तो खिलाएंगे। और यहीं से कान्हा की शरारत में छिपी खूबसूरती है कि उनकी खुशी अकेले की खुशी नहीं है बच्चों, ये है हमारा आज का दूसरा ज्ञान कि कान्हा ने कभी किसी भी चीज का उत्सव अकेले नहीं मनाया। माखन मिला तो बांट के खाया, और जब मटकी फूटी तब डांट भी मिल बांट कर खाई। तो बच्चों, जो भी करना है मिल बांट कर करना है। खुश होना है तब भी, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तब भी सबके साथ शेयर करनी है। तो बस ये जो शरारत है ना, कई बार आपने सुना होगा माखन चोर कहते हैं कृष्ण को। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कृष्ण की माखन चोरी की कहानी हमें क्या सिखाती है? इन छोटी छोटी शरारतों में वो कितने लोगों से एक साथ जुड़ते हैं, कितने लोगों के बाल कान्हा बन जाते हैं वो। अपनी इन बाल सुलभ चेष्टाओं से कितने लोगों का दिल हर लेते हैं कान्हा, है ना। इसीलिए तो कृष्ण का गोकुल हमें बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी रिश्तों में है, तो रिश्ते बनाइए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह कान्हा ने अपनी छोटी छोटी सी बाल लीलाओं से कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। तो अब आते हैं पूतना वध पर। कंस को ये विश्वास हो गया था कि उनके विरुद्ध कोई दैवीय षड्यंत्र रचा गया है। तभी तो देवकी की आठवीं संतान को किसी और के गर्भ में भेज दिया गया। इसलिए अपने काल को समाप्त करने के लिए कंस ने भयानक राक्षसी को बुलाकर आज्ञा दी, पूतना मथुरा या उसके आसपास के क्षेत्र में सावन माह में किसी स्त्री ने मेरे काल रूप को जन्म दिया है, तुम इस समूचे क्षेत्र में सावन में जन्मे बच्चों को समाप्त कर दो। फिर क्या था, पूतना ने विष का लेप किया और गोकुल जा पहुंची। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धर के नंद बाबा के घर गई और अन्य स्त्रियों की भांति कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दुलारने लगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया अंदर गई, पूतना ने अवसर ताड़कर कृष्ण जी को अपना दूध पिलाना चाहा। लेकिन फिर क्या था, बाल कान्हा ने उनके प्राण ही खींच लिए और मायावी पूतना मृत होकर जमीन पर आ गिरी। देखा आपने किस इरादे से भेजा गया था पूतना को कंस के द्वारा। लेकिन बच्चों, यहीं से बाल कान्हा की छोटी छोटी सी दैवीय शक्तियों से लोग ताकते रह गए कि ये क्या है। पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा के आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। इसके बाद क्या था, पूतना की मृत्यु ने कंस के सभी संदेह मिटा दिए। सिद्ध हो गया कि नंद बाबा का बालक कृष्ण ही उनका काल है। इसलिए इस बार कृष्ण को मारने के लिए बच्चों, कंस ने तृणावर्त नामक मायाधारी राक्षस को भेजा। उसने क्या किया पता है, वो वायु का झोंका बनकर गोकुल पहुंचा। उस समय कृष्ण को गोद में लिए यशोदा घर के बाहर बैठी हुई थी। तृणावर्त की माया से यशोदा को एकाएक कृष्ण का भार बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अचानक होने वाले इस बदलाव को देखकर वो घबरा गई और उन्हें पालने में लिटाकर नंद बाबा को बुलाने भीतर भागी। इसी बीच अवसर पाकर तृणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया, अपने कंधे पर बैठाकर बवंडर बनकर आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंच तृणावर्त ने बालक कृष्ण को मारने के लिए अपने शरीर को खूब झटके दिए, टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन कृष्ण तो जोंक की तरह उसकी गर्दन से चिपक गए और बाज के पंजों की तरह उनकी उंगलियां दुष्ट राक्षस की गर्दन में गढ़ती जा रही थीं। तृणावर्त उनके बोझ तले दबकर धड़ाम से धरती पर आ गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब माता यशोदा, नंद बाबा और दूसरे ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो उन्होंने बालक कृष्ण को पर्वताकार दानव के मृत शरीर के पास अपना अंगूठा चूसते देखा। सुना बच्चों, कैसे छोटे से नन्हे से बालक बनकर कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटा दी, और इसके बाद फिर धीरे धीरे लीलाएं और चमत्कारों का क्रम आगे बढ़ता गया। एक दिन माँ यशोदा ने बालक कृष्ण को मिट्टी फांकते हुए देखा, चिल्लाती हुई कृष्ण की ओर दौड़ी और आकर उनके कान पकड़ लिए। कृष्ण ने सिर हिलाकर मिट्टी खाने के आरोप को नकार दिया। यशोदा ने बालक को मुंह खोलने पर मजबूर किया ताकि वो उंगली से मिट्टी बाहर निकाल सके। नन्हे कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा ठगी रह गई। कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का विहंगम दृश्य नजर आ रहा था। वात्सल्य और भक्ति से विभोर होकर यशोदा ने कृष्ण को अपने अंक में भर लिया। ऐसे ही एक दिन फल बेचने वाले की पुकार सुनकर बालक कृष्ण फल खरीदने मुट्ठी भर चावल लेकर बाहर की ओर दौड़े। जब फल वाली तक पहुंचे तब सारे चावल उंगलियों के बीच से होकर दाना दाना गिर गए। फल वाली ने बालक के भोलेपन पर न्योछावर होकर काफी सारे फल वैसे ही दे दिए। फल वाली जब घर पहुंची तो अपनी टोकरी देखकर विस्मित रह गई। टोकरी में उसके बचे फल मूल्यवान रत्नों की ढेरियों में परिवर्तित हो गए थे। तो बच्चों, ये कान्हा की बाल लीलाएं आखिर मैं आपको सुना क्यों रही हूं? पहले तो ये बताइए कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, गीत गोविंद सुनती हूँ और फिर मैं बहुत सुंदर सुंदर पद सुनती हूँ जो कान्हा के लिए लिखे गए हैं, मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चे को कान्हा की बाल लीलाएं जाननी चाहिए। बच्चों, जब उन्हें सुनो तो जीवन का मार्ग दिखाई देता है, जब उनके बारे में पढ़ो तो जीवन की कठिनाइयां ऐसे लगती हैं जैसे वो दानव थे ना। आते तो थे कभी बवंडर का रूप लेकर, कभी मायावी राक्षस तरह तरह की माया रच कर आते थे, लेकिन कृष्ण के सामने बहुत बोने नजर आते थे। तो ऐसे कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस रूप में कृष्ण को देखते हैं वो आपको उसी रूप में नजर आते हैं। कभी वो द्रौपदी का चीर बन जाते हैं, कभी वो पूतना को जमीन पर गिराने वाला बालक बनकर अपनी ताकत दिखाते हैं। ऐसे कान्हा की कहानी मैं आपको सुनाकर आज सच मायने में बच्चों खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य ही तो है जब आप जैसे नन्हे मुन्हे अगर रेडियो कान से लगाए सुनना चाह रहे हैं कि कुछ और कहानियाँ बताइए। आ रही है ना आपके मन में ये बात? तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको और बहुत सारी कहानियां सुनाने का दिल कर रहा है, लेकिन समय की ये थोड़ी सी मांग है कि आज थोड़ी कम कहानियां सुनाओ, अगली बार थोड़ी और सुना देना। तो मैंने सोचा है कि ये कान्हा की बाल लीलाएं ना बच्चों अगली बार सभा में भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन अभी एक बात और बता देती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि माँ यशोदा का ध्यान आकर्षित करने के लिए ना कृष्ण हर तिकड़म का सहारा लेते थे। एक दिन यशोदा माँ दही बिलो रही थी तो कृष्ण ने दूध पीने के लिए रो रो कर घर सिर पर उठा लिया। उसके बाद क्या था, यशोदा अपनी गोदी में बिठाकर दही बिलोते हुए दूध पिलाना पड़ा। तभी यशोदा को याद आया कि रसोई में वो चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रख आई हैं। बदहवासी में वो कृष्ण जी को वहीं छोड़कर भीतर भागी। बालक कृष्ण को अपनी उपेक्षा पर अत्यंत क्रोध आया और बालक कृष्ण ने दही वाला घड़ा मथनी मारकर फोड़ दिया। सारा दही फर्श पर फैल गया। अब कृष्ण ने उस कोठरी की ओर कदम बढ़ाए जहां छत से लटकते घड़ों में मक्खन रखा था। नटखट बालक ने वहां रखी बड़ी सी ओखली पर चढ़कर कुछ घड़े नीचे पटक दिए। घड़े गिरने की आवाज सुनकर कुछ बंदर और नन्हे कान्हा के दोस्त कूद कर अंदर आ गए और माखन की दावत उड़ाने लगे। कृष्ण स्वयं एक घड़ा लेकर ओखली पर बैठ मुट्ठी भर भर कर माखन फांकने लगे। आधा मक्खन मुंह में जा रहा था और आधा शरीर पर और आधा कपड़ों पर। जब यशोदा मैया बाहर आई तो सारी दही फर्श पर फैली देखकर सन्न रह गई। उन्हें कृष्ण के दही में लिथड़े नन्हे पैरों के निशान दिखे तो मक्खन की कोठरी की ओर गए थे। वो बस दौड़कर कोठरी के द्वार पर पहुंची और वहां उड़ रही मक्खन की दावत का नजारा देखकर संयम खो बैठी। और क्रोधित स्वर में कृष्ण पर चीखी। माता यशोदा का तमतमाया मुखड़ा देखकर कृष्ण को आभास हो गया कि आज खैर नहीं। कृष्ण ओखली पर से कूदकर खिड़की से बाहर भागे। एक डंडा लेकर यशोदा मैया भी पीछे पीछे दौड़ी और माँ बेटे की दौड़ कमरों बरामदों आंगन को नापती हुई काफी देर तक जारी रही। अंत में यशोदा ने जब कृष्ण को पकड़ लिया तो नटखट ने ऐसा प्यारा सा मुखड़ा बनाया और रोना शुरू कर दिया कि यशोदा माँ भी नरम पड़ गई। बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें नहीं दंड दूंगी, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा दंड तो दूंगी। तो यशोदा ने कृष्ण को कुछ समय के लिए उसी बड़ी ओखल से बांधने का प्रयास किया, पर रस्सी जरा छोटी पड़ गई। यशोदा ने और रस्सी जोड़ी, वो भी छोटी रह गई। कई रस्सियां जोड़ी, पर हर बार रस्सी जो थी वो रहस्यमय ढंग से छोटी पड़ती रही। अंत में हताश होकर यशोदा रो पड़ी और बोली कि अरे दुष्ट, क्यों सताता है, क्या मिलता है मुझे सताकर। तब कृष्ण को यशोदा माँ पे तरस आया और वो स्वयं स्नेह पाश में बंध गए। अब आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जब नटखट बालक के रूप में आते हैं तो माँ की डांट खाते हैं। तो आप जैसे बच्चे मुझे कभी कभी मिलने पर जब ये बताते हैं कि मम्मी डांटती बहुत है, तो उन सब बच्चों के लिए आज मुझे ये कहना है कि देखिए ना, कान्हा भी तो जब बचपन में बच्चा बनकर आए थे तो माँ यशोदा की कितनी डांट खाई थी। और तो और, प्रभु श्री कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता, वो माता यशोदा ही थी जिन्होंने उन्हें स्नेह पाश में बांध लिया। तो ऐसी ऐसी बाल लीलाओं को जबकि मैं आपको सुना रही हूँ और फिर घड़ी भी देख रही हूँ तो लग रहा है कि आज थोड़ी और बात करनी चाहिए थी, पर नहीं, आज इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतनी सारी मैंने आपको बाल लीलाएं सुनाई हैं। और यकीन मानिए बच्चों, मैं यहाँ अभी ख़त्म नहीं करूँगी। मैं बाल सभा में जब अगली बार आपसे मिलूँगी तो थोड़ी और कृष्ण लीलाएँ बताऊँगी। इसलिए बच्चों, क्योंकि हमें कृष्ण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें हर दिन कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ों का सम्मान, दोस्तों की दोस्ती का मान और दुनिया में जो लोग राक्षस समान हैं, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई गंदी आदत भी हो सकती है, क्योंकि अब तो राक्षस होते नहीं, तो आपकी गंदी आदतें, आपका आलस, आपका बिल्कुल भी डिसिप्लिन में ना होना, ये सब क्या बोलते हैं इनको, राक्षसी प्रवृत्तियां, है ना। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जब बच्चे देर से उठते हैं तो क्या बेटा तुम्हारे अंदर बहुत राक्षसी प्रवृत्ति आ रही है। तो ये प्रवृत्तियां ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा इंसान बना देती हैं। एक दिन मैंने आपको एक कविता सुनाई थी कि बूंदों का आखिर क्या था दोष, एक बूंद सीप पर गिरेगी और मोती बन जाएगी, दूसरी बूंद नाली में गिरेगी और कीचड़ कहलाएगी। तो बच्चों, आज की ये कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी संगत का भी ख्याल रखिएगा, और अगर आपको बाल लीलाएं और सुननी है तो अगले हफ्ते तक मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते चलते वो समय आ गया है जब हम और आप छोटे छोटे से कुछ संकल्प लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, अब ये जो मुरली की धुन बज रही है इसमें शांति से बैठने का प्रयास कीजिए। कृष्ण को समझने के लिए बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है बच्चों, कभी कभी उन्हें समझने के लिए हमें आप जैसा बच्चा बनना पड़ता है। तो बस आज इस बाल सभा में पहला संकल्प यही है कि थोड़ा थोड़ा पूरे दिन मुस्कुराएंगे। आज पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेलेंगे भी, किसी दोस्त को गले लगाएंगे, माता पिता का बहुत सम्मान करेंगे, और हाँ, प्रकृति के करीब जरूर जाएंगे, क्योंकि कान्हा कभी गैया को चराने के बहाने, कभी गोपियों को छेड़ने के बहाने, कभी पेड़ पर बांसुरी बजाने के बहाने, प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। और ये स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मैं वृक्षों की बात करूं तो वृक्ष में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बहुत ख्याल रखेंगे। तो अब इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ आज बाल सभा को समाप्त करें। उससे पहले आप सब आंखें खोल लीजिए, अपनी दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से आंख पर लगाइए और इसी मुरली की धुन पर शांति से अब मुझे यानी अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए। ठीक है बच्चों, अगली बार बाल सभा में फिर ऐसी ही बातें लेकर जल्द ही मुलाकात होगी। चलूँ अभी, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा स्नेह बच्चों। मिलते हैं अगली बार बाल सभा में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय था कान्हा की बाल लीलाएं। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंधानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: यूनियन नामक जुड़वा जहाज, एक कॉरपोरेट गृह युद्ध की कहानी। क्या आप जानते कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्र की लहरों पर एक अजीब संयोग देखने को मिला था? दो कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास दो बिल्कुल एक जैसे जहाज थे और दोनों का नाम था यूनियन। ये जहाज बनाने वालों की कोई गलती या कल्पना की कमी नहीं थी, बल्कि ये जुड़वा जहाज अंग्रेजी मसाला व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए की गई एक हताशा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस भ्रम को समझने के लिए आपको उस कॉरपोरेट गृह युद्ध को देखना होगा जिसने लंदन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। लगभग एक सदी तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था, लेकिन 1690 के दशक तक उन्हें उन राजनेताओं और व्यापारियों ने घेर लिया जो उनके विशेष अधिकारों को एक असंवैधानिक अवशेष मानते थे। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता कितनी तीव्र थी? दोनों कंपनियों ने केवल काली मिर्च के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ का युद्ध छेड़ दिया। सूरत में नई कंपनी की कौंसिल सर निकोलस वेट ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर पुरानी कंपनी के अध्यक्ष सर जॉन गियर को 9 साल तक जेल के एक गंदे छेद में बंद रखा। हिंद महासागर के पार दोनों फर्मों के एजेंटों ने स्थानीय राजाओं के सामने एक दूसरे को चोर और समुद्री डाकू घोषित कर दिया, जबकि उनके कर्मचारी एक दूसरे को कालकोठरी में फेंक रहे थे। लंदन में बैठे निदेशकों ने जब अपने बैंक खातों को देखा तो वे कांप गए। इस आंतरिक युद्ध की लागत अनुमान से अधिक थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक नया युद्ध, वॉर ऑफ द स्पैनिश सक्सेशन, करीब आ रहा था और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि रॉयल नेवी दो विभाजित और झगड़ालू बेड़ों की सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकती। दोनों कंपनियों को एहसास होने लगा कि अगर वे विलय नहीं करती हैं तो दोनों दिवालिया हो जाएंगी। अतीत में उन्होंने स्पीड वेल या ट्रेड्स इंक्रीज जैसे आशावादी नाम चुने थे। अब दोनों ने यूनियन नाम से एक जहाज का निर्माण कराया जो इस बात का संकेत था कि विलय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अप्रैल 1702 में अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्या आप जानते हैं कि यूनियन ने वास्तव में भ्रम को समाप्त नहीं किया? 7 साल की संक्रमण अवधि के लिए तकनीकी रूप से एक साथ 3 कंपनियां काम कर रही थी, पुरानी नई और नई बनी यूनाइटेड कंपनी, जो अपने अलग अलग ऋणों को निपटाने की कोशिश कर रही थी और एक ही जहाज साझा कर रही थी। बंगाल में इसने पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जहां दो प्रतिद्वंदी अध्यक्ष हर हफ्ते बारी बारी से गवर्नर की कुर्सी पर बैठते थे। दो जहाज जिनका नाम यूनियन था, उस समय के प्रमाण हैं जब व्यापारिक लालच ने एशिया में ब्रिटिश उपस्थिति को लगभग नष्ट कर दिया था। केवल जहाज के पतवार पर लिखा वह हताश नाम उस यूनाइटेड कंपनी की ओर इशारा कर रहा था जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाली थी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल, थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामाजी से चर्चा।
3: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद अदिति, नमस्कार।
3: आज रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं, संक्षिप्त तौर पे अगर बात करना चाहें तो किस आयु से बच्चे तैयारी कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेज में आने की, किस तरह की तैयारी कर सकते हैं?
4: अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी तो हम घर में बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पे सबसे अच्छे तो माता पिता ही कर सकते हैं, पर अगर एक प्रशिक्षण की बात करें तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक स्कूल्स होते हैं जिनको हम सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं। ये जो सैनिक स्कूल्स होते हैं, ये बच्चों को खासकर जो है मेंटली एंड फिजिकली डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए तैयार करते हैं। इसमें जो है बच्चों का एडमिशन जो है सिक्स क्लास से होता है, और इस समय जो है हमारे देश में ऐसे 33 सैनिक स्कूल्स हैं, और युवाओं में जो एक जोश है, उत्साह है, उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि 100 और नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। ये जो सैनिक स्कूल हैं, ये एक अलग कैटेगरी है, इसमें 18 स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो सैनिक स्कूल हैं, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और स्टेट गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर होता है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है फंड्स देता है और सर्विंग ऑफिसर्स प्रोवाइड करता है ये सैनिक स्कूल में, जो कि अपॉइंटमेंट्स में होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपना लैंड यानी कि ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ प्रोवाइड करता है। सैनिक स्कूल्स जो होते हैं वो CBSE का करिकुलम फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ कैसे आर्मी में ज्वाइन करना है उसी के लिए बच्चों को फिजिकली और मेंटली तैयार करते हैं। तो जिस तरह से एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए, उसके लिए उनको शुरू से जो है वो प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका एडमिशन जो है क्लास 6 में जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होता है, एंड क्लास 9 में जो है बॉयज़ के लिए होता है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और रेजिडेंशियल्स होते हैं, मतलब कि ये इसमें जो है बोर्डिंग होता है, सब लोग बच्चे वहीं रह के पढ़ाई करते हैं। सारे के सारे सैनिक स्कूल में जो ये बच्चे पढ़ते हैं, ये NCC जूनियर विंग में ज्वाइन करते हैं, और इनके सबके पास NCC सर्टिफिकेट होता है जब ये वहाँ से पास आउट होते हैं। अगर हम एडमिशन की बात करें तो इनका जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। जैसे मैंने बताया कि 33 सैनिक स्कूल जो हैं वो पुराने हैं, जिसमें कि बच्चों को क्लास 6 और क्लास 9 में लिया जाता है, और ये जो नए 18 सैनिक स्कूल जो अप्रूव हुए हैं, फिलहाल सिर्फ क्लास 6 से बच्चों को वो ले रहे हैं। ये जो नए वाले स्कूल्स हैं, इनका जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स हैं उसमें पार्टनरशिप करके जो है ये स्कूल्स को सैनिक स्कूल्स के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक नई स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है। लेकिन जो दोनों कैटेगरी के स्कूल हैं, यानी कि पुराने वाले जो थे और ये जो नए स्कूल्स हैं, ये सभी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। और जो इनका एडमिशन है वो रिटन टेस्ट के ऊपर बेस होता है, और रिटन टेस्ट के बाद काउंसलिंग, मेडिकल फिटनेस, इन सब के पश्चात जो है मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें कि सिलेक्शन के बाद जो है बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसका जो एज है यानी कि उम्र जो है वो 10 और 12 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 10 साल से

0: इसमें जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑनलाइन सबमिशन जो है अक्टूबर में शुरू हो जाता है, दिसंबर और जनवरी में जो है इसका एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जो हमारे 33 सैनिक स्कूल्स हैं अगर उनमें देखते हैं तो तकरीबन 2600 बॉयज की वैकेंसीज आती हैं और 325 से 350 जो है गर्ल्स की वैकेंसीज हैं, जो कि क्लास 6 के लिए है। क्लास 9th में जो वैकेंसीज होती हैं वो फिक्स नहीं है, वो वहाँ पे जितनी उस समय की वैकेंसीज अवेलेबल हैं उसके ऊपर ही उनको लिया जाता है। इसमें जो है सीट्स का रिजर्वेशन भी होता है, देन डिफेंस सर्विस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन और स्टेट डोमिसाइल, ये अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं जिसके द्वारा बच्चों का इसमें जो है रिजर्वेशन कोटा भी होता है।
1: इसके अलावा और कुछ विवरण है जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
0: सैनिक स्कूल के अलावा हमारे देश में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं।
1: जी,
0: ये जो मिलिट्री स्कूल्स हैं ये हिंदुस्तान में मतलब सबसे पुराने पब्लिक स्कूल्स इनको हम कह सकते हैं
1: जी।
0: और इनकी स्थापना जो है मतलब 1925 में हुई थी। तो 5 जो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं वो एक जैल में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में, 2 जो है राजस्थान में है, अजमेर और धौलपुर में, और 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है बेलगांव और बैंगलोर कर्नाटका में है। ये स्कूल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं
1: जी।
0: इसमें भी जो है देखिए बेसिक एम यही है कि बच्चों को एनडीए और दूसरे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए तैयार करना, और इसमें भी एडमिशन जो होता है बच्चों का वो क्लास 6 और क्लास 9 में होता है, और उसके लिए जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि दिसंबर के महीने में कंडक्ट किया जाता है। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है
1: जी।
0: ये रिटन टेस्ट में होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है और मेडिकल फिटनेस कंडक्ट करी जाती है। देन उसके बाद जैसे कि प्रोसीजर होता है कि मेरिट बनती है, मेरिट के बाद जो है बच्चों का एडमिशन इसमें होता है। अगेन इसमें जो बच्चों की एज होती है वो 6ठी कक्षा में जाने के लिए एलिजिबिलिटी है कि 10 और 11 के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए, और जो 9th में जो बच्चे जाते हैं उनकी 13 से 14 के बीच में उम्र होनी चाहिए। ये 1 जुलाई को सेशन का जो होता है उसका ही कट ऑफ माना जाता है, और जाहिर है कि बच्चा अब 6th क्लास में जा रहा है तो 5th क्लास वो पास कर चुका होना चाहिए रिकग्नाइज्ड स्कूल से, या उस समय वो बच्चा 5th क्लास में जो पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी इसमें अपीयर कर सकते हैं। एंड अगर वो अपने एग्ज़ाम में 5th क्लास क्लियर कर जाते हैं और इसमें उनके क्लियरेंस मिलता है तो वो 6th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल मतलब प्रोसीजर होता है। जनरली जैसे बताया कि मैंने दिसंबर में इसका एग्जाम्स होते हैं और इसका लास्ट डेट जो सबमिशन होता है फॉर्म्स वगैरह का वो सितंबर ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। जो भी माता पिता अपने बच्चों को इन स्कूल्स में डालना चाहते हैं वो सितंबर ऑनवर्ड्स या उससे पहले से जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें देख सकते हैं, इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इनकी जो वेबसाइट्स हैं सब स्कूल्स की वेबसाइट्स हैं, अगर आप सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी टाइप करेंगे तो भी आएगी, उसमें उनके ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं तो उससे आपको काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। एंड ये स्कूल्स का मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, और इन स्कूल्स ने बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं देश को दिए हैं, एंड काफ़ी अच्छे स्कूल्स में इनकी गिनती होती है।
1: तो सैनिक स्कूलों की तुलना में कर्नल साहब इनमें प्रतियोगिता का जो स्तर है वो भी ज़्यादा कठिन रहता होगा?
0: जी, क्योंकि ये सिर्फ 5 ही स्कूल हैं और इस कारण से जो है थोड़ा सा जो है सैनिक स्कूल से ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट इज समथिंग लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट में होते हैं, फिर IIT होता है, तो IIT जो है कम है जी, तो वैसे ये भी है। लेकिन एम अगर हम देखेंगे तो सबका एक ही होता है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पे डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए तैयार करना, और किसी कारण से अगर वो डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकते हैं तब भी वो एक देश के लिए एक अनुशासित नागरिक बनते हैं, और हर फील्ड में जहां वो जाते हैं किसी और फील्ड में भी बहुत अच्छा जो है उनका योगदान रहता है। अदिति जी, मैं आपको एक और स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है। वैसे हम इसको बोलते कॉलेज हैं लेकिन ये जो है स्कूल है, ये इसकी स्थापना जो है मार्च 1922 में हुई थी और उसको समय प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहा जाता था। आगे चल के जो

0: है इसी का नाम जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हुआ। ये एक एनडीए के लिए और दूसरी डिफेंस एकेडमीज में जाने के लिए एक फीडर इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करता है। इसको हम नर्सरी ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। अगेन ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें जो है सीबीएसई के थ्रू करिकुलम फॉलो होता है और साइंस स्ट्रीम में ही होता है। इसमें साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी और जुलाई में, और ये जो एडमिशन है सिर्फ क्लास 8th से शुरू होते हैं। इसमें जैसे जिसको एडमिशन लेना होता है उस बच्चे की जो उम्र है 11.5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 13 साल से कम होनी चाहिए। वही सेम है कि बच्चे ने जो है 7th क्लास जो है पास करी होनी चाहिए। और इसका भी ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है। सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज होता है, और जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको फिर वाइवा वॉयस के लिए बुलाया जाता है। वाइवा वॉयस में क्लियर होने के बाद फिर इनका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट बनती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इसकी सिर्फ हर टर्म में सिर्फ 25 सीट्स होती हैं,
1: यानी ये और कठिन
0: ये और कठिन है। और इसमें जो है स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं।
1: कनेल साहब, आपने ये बोला था कि इसमें सिर्फ विज्ञान स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जाते हैं, तो इस पर थोड़ा क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो विषयों का चुनाव होता है वो कक्षा 10 के बाद होता है।
0: हाँ, ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि इसमें जो 9th से 12th में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ ये साइंस स्ट्रीम में ही पढ़ाते हैं।
1: अच्छा।
0: मतलब कि कोई बच्चा 6th क्लास में 7th क्लास में सोचता है कि मैं आगे चल के कॉमर्स लूंगा तो वो इसमें
1: यहाँ संभव नहीं है।
0: उसको वहाँ पे साइंस ही पढ़नी पड़ेगी। ये जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज अभी बॉयज के लिए है, इसमें 25 सीट्स होती हैं, ये स्टेट वाइज अलॉट होती हैं, तो स्टेट के थ्रू जो है जाते हैं। और जाहिर है कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा और टफ होता भी है। और जो इनके एलुमनाई हैं जो यहाँ से निकले हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक इस कॉलेज ने 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए हैं, 2 चीफ ऑफ एयर स्टाफ यहाँ से निकले हैं, और बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल ऑफिसर्स जो हैं, सिविल डिग्निटरीज जो हैं, इस कॉलेज के एलुमनाई हैं।
1: कर्नल साहब, सैनिक स्कूल से मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या यह स्कूल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनके अभिभावक आर्म्ड फोर्सेस में है, कि भारत के सभी नागरिकों के बच्चे इन स्कूलों में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं?
0: अदिति, ये स्कूल सबके लिए ओपन रहते हैं और इसमें हर बच्चा जो है, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनके जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। पहले ये सिर्फ बॉयज़ के लिए हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये गर्ल्स के लिए भी जो है ओपन है, तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं।
1: और अगर मोटे तौर पे पूछा जाए तो आर्मी में या किसी भी सेना में एंट्री के लिए मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है?
0: जैसे अभी ये स्कूल के बाद जो नेक्स्ट लेवल की एंट्री होती है उसको हम एनडीए बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं। इसमें जो एंट्री होती है वो 17 साल तक बच्चा जो है जा सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में जो ऑफिसर्स के लिए जो है कैंडिडेट्स को लेती है, और ये 12वीं में पढ़ने वाले और उसके बाद 12वीं पास कर चुके जो है बच्चे हैं एग्जाम में बैठ सकते हैं। लड़कियां भी जो है इसमें अप्लाई कर सकती हैं।
1: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू अदिति। जय हिंद श्रोताओं।
2: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल, थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लश्कर और सीधी स्टीमशिप युग का मानवीय ईंधन। 1880 के दशक में एक P&O स्टीमशिप भाप के जहाज के डेक पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। डेक के ऊपर का दृश्य अविनाशी आकर्षण और गहरी संतुष्टि से भरा है। अमीर यात्री शामियाने के नीचे आराम कर रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जबकि जहाज हिंद महासागर के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे जहाज उन मानसूनी हवाओं से बेपरवाह है जो कभी यहाँ के जीवन को नियंत्रित करती थी। लेकिन पॉलिश किए हुए टी की लकड़ी के नीचे जहाज के दम घोटने वाले भीतरी हिस्सों में एक अलग ही दुनिया मौजूद है। ये लश्करों और सीधियों की दुनिया है। वे गुमनाम समुद्री मजदूर जिन्होंने हिंद महासागर को ब्रिटिश झील बनाना संभव बनाया। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ी, औद्योगिक क्रांति ने हिंद महासागर को बदल दिया। 1869 में स्वेज नहर के खुलने और भाप तकनीक के उदय का मतलब था कि जहाज अब हवाओं के गुलाम नहीं रहे। हालांकि इन नए यांत्रिकी दिग्गजों को चलाने के लिए भारी मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता थी। 1914 तक ब्रिटिश व्यापारिक बेड़े में 51,600 से अधिक लश्कर कार्यरत थे। लश्कर मुख्य रूप से भारतीय नाविक थे, हालांकि वे बेड़े के संचालन के लिए अनिवार्य थे, लेकिन वे एक सख्त नौसैनिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर थे। उनका जीवन एशियाटिक आर्टिकल्स द्वारा शासित था, एक कानूनी ढांचा जो बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करता था। इसे विशेष रूप से यूरोपीय नाविकों को दिए जाने वाले अनुबंधों से अलग और कम सुरक्षात्मक बनाया गया था। ये वे टेक हैंड और विशेषज्ञ थे जिन्होंने पारंपरिक डाउ और जंग जहाजों से निकलकर भाप युग के जटिल रखरखाव और संचालन को संभाला था। जहाज के निचले हिस्से में और भी गहराई पर सीधी काम करते थे। ये अफ्रीकी मजदूर थे जिनमें से कई गुलाम मूल के थे या वे स्वतंत्र लोग थे जिन्होंने बॉम्बे या जंजीबार जैसे बंदरगाहों में नए जीवन की तलाश की थी। उनका काम शायद समुद्र के इतिहास में सबसे कठिन था। वे फायरमैन थे। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की तीव्र गर्मी में सीधी अपनी शिफ्ट कोयले को उन दहकती भट्टियों में झोंकने में बिताते थे जो बॉयलरों को चालू रखती थी। ये कमर तोड़ देने वाला और खतरनाक काम था जो ऐसी अंधेरी जगहों पर किया जाता था जहां रोशनी के नाम पर केवल आग की लपटों की चमक होती थी। लश्कर और सीधी की कहानी औद्योगिकरण और विस्थापन की कहानी है, जबकि स्टीमशिप को अक्सर प्रगति के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। जिसने मानसून के अत्याचार पर विजय प्राप्त की वो प्रगति एक विविध बहुजातीय कार्यबल के कंधों पर बनी थी। ये लोग एक नई प्रकार की अफ्रो एशियाई पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसी पहचान जो सुहाली तट के बाजारों या गुजरात के संघों में नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवाद के इंजन के रूप में गढ़ी गई थी। वे पाल वाली प्राचीन दुनिया और कंटेनर जहाजों वाली आधुनिक दुनिया के बीच के सेतु थे। लश्करों और सीधियों के बिना ब्रिटिश झील सूख जाती और 19वीं सदी के हिंद महासागर का आपस में जुड़ा जाल रुक जाता। वे शांत और कालिक से सने हुए नायक थे जिन्होंने उस वैश्वीकृत दुनिया को ऊर्जा दी जिसे हम आज पहचानते हैं।

लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते हैं कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरेज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था? धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय शासकों से भारी उपहार वसूलते थे और दस्तक, निजी व्यापार, पास के दुरुपयोग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाते थे। नवाब का हर बदलाव एक और 5 अंकों वाले इनाम का बहाना बन गया, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लॉर्ड क्लाइव अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इस व्यापक भ्रष्टाचार की सफाई करने के जनादेश के साथ आए थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही सहयोगियों का शिकार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का इस्तेमाल किया? क्लाइव ने उन्हें मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पार्षदों को उनकी अचानक बड़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे, वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे? जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे, तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।

नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही माच शैली में। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: मित्रों, मैंने जयदेव जी के असेंबली का पास वायस राय की निगरानी रखाओ कही दियो है।
2: ठीक है भगत, तुम असेंबली में बम फेंकवा के मत जाओ, आफत में पड़ी जाओ, और ये मैं नहीं चाहूंगा। अभी तुम्हारो भायर रहना जरूरी है।
3: सही बात है
1: आजाद जी, आप निश्चिंत रहो, मैं तो यो सब जनता के जगावा का वास्ते करी रही हूं।
2: तो ठीक है,
1: हमारी चिंता मत करो।
2: तो ठीक है, पर साथियों आप सब सुनी लो, आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को ध्यान रखना। इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद।
3: आज 8 अप्रैल 1929 को दल ने अपने भगत सिंह अपना साथी उनका साथ असेंबली का माय
5: कार्यवाही शुरू की जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पे अटेंशन।
4: इंकलाब जिंदाबाद,
5: वंदे मातरम।

0: हमारा सभी साथी लाहौर जेल में, आजाद जी फरार है और हमारा जीवन तो मृत्यु साधना का सिद्धांत पर चली रही है और हम अपनो बयान या जेल में नहीं सीधो सेशन जज की अदालत का मायदान का इनकलाब
1: जिंदाबाद
0: वंदे
1: मातरम
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: 4 जून 1924 का दिन भगत सिंह जी की पेशी दिल्ली की अदालत में हुई। कार्यवाही शुरू की जाए।
0: जज साहब, कानून पे कानून तमलाव हो और हमारे घना डराव हो। फ्रांस रूस की क्रांति देखो, कोई भी नहीं दबाई पायो। आजादी को कारगो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगो और फांसी अगर न्याय तमारो तो फंदा कम पड़ जाएगा। दस साहब, हमारी बात सुनी के नौजवान में जोश खूब भराएगा। सच्चा वीर सपूत भारत माँ का देश पे बलि बलि जाएगा। इनकलाब
1: जिंदाबाद
0: वंदे
1: मातरम
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: देखियो देखियो आपने भगत सिंह के बयान का सत्य। आखो देश भगत सिंह जी का साथी हुई गयो। बच्चों देश का ऊपर बलिदान करवा के लिए तैयार हुई। अब 10 जून 1929 का दिन फैसलो आवे।
3: ओ रामलाल जी।
4: अरे हाँ, कई बात है रामलाल।
3: आओ थोड़ा इधर आओ जरा।
4: हाँ,
3: काम की बात है।
4: हाँ।
3: हमारे मालूम है
4: कहीं
3: भगत सिंह ने बट्टू केशर दत्त को आजीवन कारावास की सजा भई है।
4: हाँ। और
3: ने भगत सिंह के मियाँ वाली जेल में।
4: हाँ।
3: ने बट्टू केशर दत्त के लाहौर जेल में भी सजा है।
4: अरे
3: और वहाँ कहीं पे हो ना।
4: हाँ।
3: इनके साथ साथ सारा कैदी उन भी सब भूख हड़ताल पे बैठी जा। भगत सिंह ने वहाँ कितना परेशान कर रखा।
4: तुम सही कह रहा हो, वहाँ लाहौर जेल में भी बट्टू केशर दत्त ने ऐसो ही माहौल बनाए रखे।
3: हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा कर अपना।
4: तुम भी अपना ध्यान रखा करो।
3: ठीक
4: है, मिलते हैं फिर।
0: मैंने इंस्पेक्टर जनरल के पत्र लिखो कि हमारे यहाँ से लाहौर जेल भेजो जाए। और भी ने हमारी बात मानी ली है और अब मैं भी लाहौर जेल में आई हूँ।
2: दस जुलाई 1929 का दिन भगत सिंह जी के पेशी हुआ वाली थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की हालत ऐसी थी कि विद्रोही चले भी नहीं पा रहा था। जो सब सुनी के भारत की जनता का मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़तो जा रही थी। विद्रोही कदोई अदालत का माय हड़ताल पे बैठी गया। जो सब होने से अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंची, जब इनके पाछों जेल में पहुंची।
0: सरकार की परेशानी तो बढ़ती जा रही है, हमारा साथियों की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। सरकार तो चाह रही है कि हड़ताल खत्म हो जाए, पर यह हड़ताल तो चली रही है। हमारो ध्यान अब अपना साथियों की जान बचाव में। ए सुनो जरा, हमारा साथियों के पानी क्यों जाए।
5: ए सुनो, भगत सिंह वान हड़तालियों को पानी की जगह दूध दिया जाए।
4: सब दूध के मटके इनके लिए पहले से ही भरवा के रख दिए।
5: दूध हम में से कोई भी इना दूध के हाथ भी नहीं लगाए दो,
6: हम पानी ही पियांगा। फोड़ दो इन मटका के,
0: फोड़ दो मटका उनके।
5: हे व्हाट हैपेंड, सब सब इन हड़तालियों ने कैदियों ने तो सारे दूध का मटका फोड़ दिया इन्हें। अरे इन हड़तालियों को पानी ही देना पड़ेगा, अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो उस पर क्या जवाब देंगे।
0: जी सर। साथियों, अगर हमारा मित्र यतीन्द्रनाथ जी की मृत्यु नहीं होती तो हम पानी के कभी हाथ भी नहीं लगाता और या हड़ताल भी कभी समाप्त नहीं करता।
7: भगत, तुमने इन अंग्रेजों की हकीकत जनता के सामने लाके रखी थी।
0: मारो जो मकसद हो मैं उनमें सफल हो तो जा रही हूं और हमारा मनोबल अब और बढ़ते जा रही है।

0: नौजवान मालूम है ये नौजवान जो है नौजवान ये अपराधी नहीं है, और ये तो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी,
1: क्रांतिकारी,
0: हाँ क्रांतिकारी है,
2: क्रांतिकारी नहीं देशभक्त।
3: भगत सिंह जी की रणनीति से लाहौर षड्यंत्र रचियों ने पूरी अपना साथी उनका माय भी ने जोश भरी। 1 मई के लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई थी।
4: इनकलाब
5: जिंदाबाद,
4: वंदे
5: मातरम,
4: भगत सिंह,
3: सुखदेव, राजगुरु।
2: कार्यवाही शुरू की जाए।
4: जज साहब, देश की खातिर कौन बाजी लगाएगा, और सुनिए कि महफिल में हमारा इम्तहान होएगा। ए खुदा, वो दन भी आएगो जदे हम कायम होवांगा, जदे अपनी जमीन और अपनो आसमान होएगा। इनकलाब
5: जिंदाबाद,
4: वंदे
5: मातरम,
4: साम्राज्यवाद
5: मुर्दाबाद।

इनकी पिटाई देखी के आगा हैदर खान वहां से चलिया गया। तो फिर एक दिन फैसला आयो कि सुखदेव राजगुरु ने भगत सिंह जी के जल्द से जल्द फांसी दे दी।

0: बेटा वाले।
1: हाँ पिताजी।
2: मैंने सुने थारे फांसी हुआ वाली।
1: हाँ पिताजी, तुमने सही सुनी, हमारे फांसी हुआ वाली है।
2: देशभक्ति है इतनी बड़ी, हम समझा माँ ने बाप, हमारो छोरो फांसी चढ़ी दी, सीना में चली दिया।
1: पिताजी, म्हारी मौत जीवन से कीमती, सबके यो बतानो है, देश प्रेम की लो लगे ऐसो फर्ज निभानो है। तम मोह में मत पड़ जाओ, तमारो बेटो देश का वास्ते शहादत दई के देश की आजादी को रस्तो पक्को करनो चाहिए।
2: ठीक है भगत, वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम।
4: बेटा महारा, यो कई होएगी?
1: माँ, तू रोएगी तो लोग कहेगा कि वीर की मार हो रही है, भगत सिंह की मार हो रही है। तुम्हारी बात सुन माँ,

0: मैं थारा जैसे वीर सपूत की माँ हूँ।
1: तू अपनो ध्यान रख जे माँ, बेन तू भी अपनो ध्यान रख जे।
0: ठीक है भैया। भैया तमारो यो बलिदान आपको देश याद रखे।

धोनी के तून टाली सके, वह तो अटल सत्य। समय सब गुंगो हुई के देखी ले। लो फांसी को पैगाम है आपके मालूम। भगत सिंह की फांसी से अंग्रेज सरकार इतनी डरेगी कि उनके एक दिन पेलाच फांसी पे चढ़ावो को हुक्म दिया। अखो देश, अखो देश भगत सिंह के बचा हुआ की प्रार्थना करके, माँ ऐसो भाई चाहिए, माँ ऐसो बेटो चाहिए, बहन ऐसो भाई चाहिए, सबकी आख्या नम, मारी भी नम।

0: ये था मार्च 6 शहीद भगत सिंह। इसे लिखा था श्री सुंदरलाल मालवीय और यशस्विनी निगम ने। परिकल्पना, निर्देशन और संगीत श्री सुंदरलाल मालवीय।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए यानी सपनों को पंख देने वाली संस्था के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले कुछ प्रकरणों में दादू और रुचि ने देश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों की प्रेरक कहानियां जानी। लंबी यात्रा के बाद अब दोनों अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन ज्ञान की यात्रा तो अभी भी जारी है ना?
2: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक खबर है।
1: नमस्ते दादू।
2: हाँ हाँ हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गई कॉलेज से? कैसी रही आज की पढ़ाई?
1: बहुत अच्छी रही दादू, लेकिन आप कौन सी खबर को इतनी ध्यान से पढ़ रहे हैं?
2: अरे बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ भारत के विमानन क्षेत्र से जुड़ी, ये एक आर्टिकल है, यही पढ़ रहा हूँ मैं।
1: विमानन क्षेत्र मतलब हवाई जहाजों की दुनिया?
2: हाँ हाँ बेटा, एक मिनट बस। हाँ बेटा, केवल हवाई जहाज नहीं बल्कि उन संस्थाओं की दुनिया जो भारत को आकाश में नई ऊंचाइयां देने का काम कर रही है।
1: दादू, जब भी मैं आकाश में उड़ते हुए विमान देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है।
2: मुझे देखकर तुम्हारे मन में कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। अखबार रख देता हूँ एक मिनट। चलो हाँ बेटा, पूछो सवाल पूछो।
1: दादू, इतना भारी विमान आखिर उड़ता कैसे है और उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी?
2: लगता है आज की कहानी फिर से शुरू होने वाली है।
1: वो तो होने वाली है दादू, अब जल्दी से बताइए ना, आज हम किस संस्थान के बारे में जानेंगे?
2: तो आज हम जानेंगे यही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की कहानी। एक ऐसी संस्था की कहानी जिसने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को नई दिशा दी।
1: वाह दादू, यानी आज की कहानी आकाश से जुड़ी है।
2: हाँ बेटा, आज हम धातुओं की दुनिया से निकलकर उड़ान की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं।
1: दादू, वो देखिए, छत पर बैठे कबूतर एक साथ उड़ गए।
2: हाँ बेटा, प्रकृति का ये दृश्य जितना सुंदर है उतना ही प्रेरणादायक भी है।
1: अच्छा दादू।
2: हाँ बेटा।
1: क्या इंसान ने उड़ने का विचार पक्षियों को देख कर ही सीखा था?
2: काफी हद तक, हजारों वर्षों से मनुष्य पक्षियों को उड़ते देखता रहा और उसके मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा जागती रही।
1: मतलब उड़ान का सपना बहुत पुराना है।
2: बहुत पुराना बेटा। पुराने ग्रंथों, कथाओं और लोक कथाओं में उड़ने वाले रथों और आकाश यात्राओं का उल्लेख इन सब में मिलता है। लेकिन सपना देखना और उसे वास्तविकता में बदलना दो अलग बातें हैं।
1: फिर दादू, इंसान ने ये सपना भला कैसे पूरा किया?
2: इसके लिए वैज्ञानिकों, अभियंताओं और आविष्कारकों ने वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने पक्षियों की उड़ान को समझा, हवा की गति को समझा और फिर ऐसे यंत्र विकसित किए जो हवा में उड़ सके।
1: यानी विमान केवल मशीन नहीं है बल्कि सदियों पुराने एक सपने की पूर्ति है।
2: बहुत सुंदर कहा तुमने।
1: लेकिन दादू, पक्षी तो अपने पंखों से उड़ते हैं, फिर ये विमान आखिर कैसे उड़ता है?
2: ये प्रश्न दुनिया के लाखों बच्चों के मन में आता है। विमान के पंखों का आकार ऐसा बनाया जाता है कि जब वो तेज गति से आगे बढ़ता है तो हवा का दबाव उसके ऊपर और नीचे अलग अलग हो जाता है
1: और उसी से वह ऊपर उठता होगा।
2: बिल्कुल, इसे ही उड़ान का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इसे समझना आसान है जबकि इसे व्यवहार में सफल बनाना बहुत कठिन होता है बेटा।
1: वो भला क्यों?
2: वो भला ऐसे बेटा, क्योंकि विमान को केवल उड़ना नहीं होता, सुरक्षित भी उड़ना होता है ना। उसे तेज हवा, बारिश, ऊंचाई और अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
1: अब समझ में आया कि विमान बनाना इतना कठिन काम क्यों है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, क्या हर देश अपना विमान बना सकता है?
2: नहीं नहीं बेटा, विमान निर्माण दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक माना जाता है।
1: मतलब इसके लिए बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव चाहिए होगा।
2: बिल्कुल चाहिए। विमान बनाने के लिए वायु गतिकी, धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सामग्री विज्ञान और अनेक अन्य क्षेत्रों का ज्ञान एक साथ काम करता है।
1: यानी ये कई विज्ञानों का संगम होगा।
2: बिल्कुल है बेटा।
1: अच्छा दादू, जब विमान बनाना इतना कठिन है तो भारत ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुरुआत कैसे की थी?
2: बेटा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये महसूस किया कि यदि हमें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपनी तकनीक विकसित करनी पड़ेगी,
1: और इसमें विमानन तकनीक भी शामिल थी।
2: बिल्कुल, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण था। किसी भी देश की वायु सेना उसकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार होता है बेटा।
1: तो क्या इसी सोच ने एडीए के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया?

0: तकनीकी दिशा प्रदान करना।
1: यानी ADA का जन्म केवल एक संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय सपने के रूप में हुआ था।
0: सही कहा बेटा, ये उस सपने का हिस्सा था जिसमें भारत अपने लिए आधुनिक लड़ाकू विमान स्वयं विकसित करना चाहता था।
1: दादू, क्या ये वही कार्यक्रम था जिससे आगे चलकर तेजस विमान बना?
0: हाँ बेटा, तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, अभियंताओं, तकनीशियनों और परीक्षण पायलटों की वर्षों की मेहनत, आत्मविश्वास, अनुसंधान, धैर्य और नवाचार की कहानी भी है।
1: दादू, जब ADA की स्थापना हुई होगी तब क्या किसी ने सोचा होगा कि एक दिन भारत अपना आधुनिक लड़ाकू विमान विकसित करेगा?
0: सपना बड़ा था बेटा, चुनौतियाँ उससे भी बड़ी थी, लेकिन संकल्प उतना ही मजबूत था।
1: दादू, अब तो मुझे तेजस की पूरी कहानी जानना है आपसे।
0: तो तैयार हो जाओ, अब हम जानेंगे कि कागज पर बने एक विचार ने कैसे आकाश में उड़ान भरी और भारत की विमानन यात्रा का नया अध्याय लिखा।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है, लेकिन किसी लड़ाकू विमान की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है?
0: दिलचस्प प्रश्न है बेटी। किसी भी विमान की शुरुआत कारखाने से नहीं बल्कि विचार से होती है। विचार से? हाँ बेटा, सबसे पहले ये तय किया जाता है कि विमान को क्या क्या कार्य करने होंगे, वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकेगा, उसकी गति कैसी होगी, वो कितना भार ले जा सकेगा और उसकी युद्ध क्षमता कैसी होगी।
1: मतलब पहले उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार की जाती होगी?
0: हाँ बेटा बिल्कुल, उसके बाद वैज्ञानिक और अभियंता मिलकर प्रारंभिक डिजाइन तैयार करते हैं।
1: दादू, क्या आज भी विमान केवल कागज पर डिजाइन किए जाते हैं?
0: नहीं बेटा, आज आधुनिक संगणक प्रणालियाँ इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: वो भला कैसे?
0: ADA ने अत्याधुनिक संगणन सुविधाएं विकसित की, वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर आधारित डिजाइन, विश्लेषण और सिमुलेशन तकनीकों का उपयोग किया।
1: सिमुलेशन मतलब?
0: मान लो किसी विमान को वास्तव में बनाने से पहले उसके व्यवहार को कंप्यूटर पर परखा जाए, ये देखा जाए कि उड़ान के दौरान वो कैसा प्रदर्शन करेगा।
1: अरे वाह, यानी पहले आभासी दुनिया में परीक्षण और फिर वास्तविक दुनिया में?
0: हाँ बेटा बिल्कुल।
1: दादू, लेकिन वैज्ञानिक कैसे जान पाते हैं कि हवा में विमान का व्यवहार कैसा होगा?
0: इसके लिए विंड टनल परीक्षण किए जाते हैं।
1: विंड टनल, ये क्या होते हैं?
0: ये बेटा एक विशेष सुविधा होती है जहाँ नियंत्रित गति से हवा प्रवाहित की जाती है
1: और उसमें विमान को उड़ाया जाता है।
0: पूरे विमान को नहीं बल्कि उसके मॉडल का परीक्षण किया जाता है बेटा, ताकि ये देखा जा सके कि हवा उसके चारों ओर कैसे बह रही है।
1: सच में दादू?
0: इससे वैज्ञानिक ये समझते हैं कि डिजाइन कितना प्रभावी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है।
1: मतलब विमान की पहली परीक्षा आकाश में नहीं प्रयोगशाला में होती है।
0: बिल्कुल सही कहा बेटा।
1: दादू, ADA की सुविधाओं में एक नाम आपने बताया था आयरन वर्ड, ये सुनकर तो किसी विज्ञान कथा की याद आती है मुझे।
0: हाँ, नाम सचमुच रोचक है बेटा।
1: तो बताइए ना, क्या है ये?
0: आयरन बर्ड वास्तव में एक परीक्षण व्यवस्था होती है बेटा। इसमें विमान की विभिन्न प्रणालियों को जमीन पर ही जोड़कर उनकी कार्य क्षमता की जांच की जाती है।
1: यानी विमान उड़ने से पहले उसकी कई प्रणालियां जमीन पर परखी जाती है?
0: हाँ बेटा, इससे संभावित समस्याओं का पता पहले ही चल जाता है।
1: मतलब सुरक्षा की शुरुआत उड़ान से पहले ही हो जाती है?
0: बिल्कुल।
1: दादू, जब इतने वर्षों की मेहनत के बाद कोई विमान पहली बार उड़ान भरता होगा तब कैसा माहौल होता होगा?
0: कल्पना करो बेटा, वर्षों तक वैज्ञानिकों ने काम किया, अभियंताओं ने डिजाइन तैयार किए, तकनीशियनों ने अनगिनत घंटे लगाए, परीक्षण किए गए,
1: और फिर वो दिन आता है
0: जब विमान पहली बार रनवे पर दौड़ता है,
1: और उस समय सबकी निगाहें उसी पर होती होंगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि उस क्षण में केवल एक मशीन नहीं बल्कि वर्षों का परिश्रम और आशाएं उड़ान भर रही होती हैं बेटा।
1: दादू, मुझे सुनकर कितना रोमांच हो रहा है।
0: हाँ बेटा।
1: दादू, एक विमान का नाम तेजस भी तो था, वो भला कैसे रखा गया?
0: तेजस संस्कृत का शब्द है बेटा, जिसका अर्थ है तेज, ऊर्जा, प्रकाश और शक्ति।
1: तो ये नाम वास्तव में विमान की भावना को दर्शाता है।
0: हाँ, और ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि भारतीय विज्ञान और आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गया है।
1: अब समझ में आ रहा है कि तेजस की चर्चा होते ही लोगों की आंखों में गर्व क्यों दिखाई देता है।
0: क्योंकि ये उस क्षमता का प्रतीक है जिसे भारत ने अपने वैज्ञानिकों और अभियंताओं के बल पर विकसित किया है।
1: अच्छा दादू, क्या एडीए का काम केवल तेजस तक ही सीमित है?
0: नहीं नहीं बेटा, यही तो इस कहानी का अगला और भी रोचक अध्याय है।
1: मतलब एडीए भविष्य के विमानों पर भी काम कर रही है?
0: हाँ, तेजस के बाद तेजस MK2 नौसेना के लिए उन्नत लड़ाकू विमान और भविष्य की अत्याधुनिक विमान परियोजनाओं पर भी लगातार कार्य चल रहा है।
1: यानी एडीए केवल वर्तमान नहीं बल्कि भारत के भविष्य के आकाश की भी तैयारी कर रहा है।
0: हाँ बेटा, और हम उसी भविष्य की कहानी जानेंगे।
1: दादू, जब हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तो उसकी चमक और गति दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे चलने वाली वैज्ञानिक दुनिया हमें दिखाई नहीं देती।
0: हाँ बेटा, किसी भी आधुनिक विमान के पीछे हजारों गणनाएं, लाखों आंकड़े छिपे होते हैं।
1: क्या एडीए में भी ऐसी सुविधाएं हैं?
0: हाँ हाँ, एडीए ने समय के साथ अत्याधुनिक संगणन केंद्र विकसित किए हैं जहाँ जटिल डिजाइनों का विश्लेषण किया जाता है।
1: मतलब वैज्ञानिक कंप्यूटरों की सहायता से विमान के व्यवहार का अध्ययन करते हैं।
0: हाँ, पहले जिन गणनाओं में महीनों लग जाते थे आज उन्हें शक्तिशाली कंप्यूटर बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं।
1: यानी आधुनिक विमान निर्माण में कंप्यूटर भी उतने ही जरूरी हैं जितने हमारे इंजीनियर्स।
0: सही कहा बेटा, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं।
1: दादू, आजकल वर्चुअल रियलिटी की बहुत चर्चा होती है, क्या विमान निर्माण में भी इसका उपयोग होता है?
0: हाँ हाँ बेटा, वर्चुअल रियलिटी वैज्ञानिकों और अभियंताओं को विमान के विभिन्न भागों को त्रिआयामी रूप में देखने और समझने में सहायता करती है।
1: यानी विमान बनने से पहले ही उसके भीतर घूमकर देखा जा सकता है।
0: हाँ हाँ, इससे डिजाइन संबंधी समस्याओं को पहले से ही पहचानना आसान हो जाता है।
1: तो ये समय और संसाधन दोनों की बचत करता होगा।
0: हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: दादू,
0: हाँ,
1: अब मुझे लग रहा है कि विमान निर्माण केवल धातुओं और इंजनों की कहानी नहीं है।
0: आधुनिक विमानन में सॉफ्टवेयर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा।
1: वो कैसे?
0: एडीए ने विभिन्न प्रकार के विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जिनका उपयोग डिजाइन, विश्लेषण, निर्माण, उड़ान अनुकरण और परीक्षणों में किया जाता है।
1: यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रेखाएं आगे चलकर वास्तविक विमान का रूप ले लेती हैं।
0: हाँ, कई बार एक छोटी सी गणना भी पूरे विमान के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है बेटा।
1: दादू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि विमान निर्माण में गणित और विज्ञान कितना जरूरी है। सही कहा था आपने कि एडीए का काम केवल तेजस तक ही सीमित नहीं है।
0: हाँ बेटा, विज्ञान की यात्रा कभी रुकती नहीं है।
1: तो अब आगे क्या?
0: आगे बेटा, तेजस के अनुभव और सीख के आधार पर और अधिक उन्नत विमान विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है।
1: तो क्या ये तेजस का नया रूप लेगा?
0: इसे तुम अगली पीढ़ी की प्रगति कह सकती हो बेटा। हर नई परियोजना पिछली उपलब्धियों पर आधारित होती है।
1: यानी हर सफलता अगले लक्ष्य का आधार बन जाती है।
0: एकदम सही।
1: दादू, क्या भविष्य में विमानों की दुनिया और भी बदल जाएगी?
0: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले समय में विमान अधिक उन्नत, अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से और भी परिष्कृत होंगे।
1: तो क्या अब हमारा भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है?
0: हाँ, इसी उद्देश्य से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई परियोजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है।
1: मतलब एडीए केवल आज की जरूरतों के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए भी तैयारी कर रही है।
0: हाँ बेटा, यही किसी दूरदर्शी संस्था की पहचान होती है।
1: दादू, आज की कहानी सुनकर मेरे मन में एक नया विचार आया है।
0: वो क्या बेटा?
1: वो ये कि जब मैं अगली बार आकाश में कोई विमान देखूंगी ना, तो केवल उसकी गति नहीं देखूंगी, मैं उसके पीछे छिपे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत को भी याद करूंगी।
0: हाँ बेटा, और यही इस कहानी का उद्देश्य है।
1: दादू, लोग अक्सर उड़ते हुए विमानों को देखते हैं लेकिन उसे उड़ाने वाले ज्ञान को नहीं देखते।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात पकड़ी। लगता है कि आज की कहानी ने तुम्हें फिर एक नई सीख दे दी है।
1: दादू, एक बात बताइए ना।
0: हाँ।
1: आपने BEML, मिधानी और कई अन्य संस्थानों की कहानियाँ सुनाई है मुझे, लेकिन विमान बनाने की बात आते ही हर कोई इसे बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों मानता है? क्या ये कार या रेलगाड़ी बनाने से भी अधिक कठिन है?
0: बहुत कठिन है बेटा। सोचो, रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है और कार सड़क पर, लेकिन विमान को हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ना होता है।
1: और वहाँ तो कोई सड़क भी नहीं होती।
0: हाँ, विमान को अपने संतुलन, दिशा और गति का नियंत्रण स्वयं बनाए रखना पड़ता है।
1: मतलब जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है दादू।
0: हाँ बेटा, यही कारण है कि विमान निर्माण में अत्यंत सूक्ष्मता और सावधानी की आवश्यकता होती है।
1: दादू, आधुनिक लड़ाकू विमानों के बारे में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, फ्लाई बाय वायर। ये क्या होता है?
0: बेटा, पहले के विमानों में पायलट के नियंत्रण सीधे यांत्रिक प्रणालियों से जुड़े होते थे, लेकिन आधुनिक विमानों में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: कैसे?
0: देखो बेटा, जब पायलट कोई नियंत्रण देता है तो कंप्यूटर उस संकेत को समझकर विमान की विभिन्न प्रणालियों तक पहुंचाता है।
1: यानी कंप्यूटर पायलट का सहयोगी बन जाता है।
0: हाँ, इससे विमान अधिक स्थिर और नियंत्रित रहता है।
1: तो तेजस में भी ऐसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया?
0: हाँ बेटा, यही कारण है कि तेजस भारत की तकनीक क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।
1: दादू, लड़ाकू विमान को मजबूत भी होना चाहिए और तेज भी, तो दोनों बातें एक साथ कैसे संभव होती हैं?
0: यही तो अभियंताओं की सबसे बड़ी चुनौती होती है।
1: कैसे?
0: यदि विमान बहुत भारी होगा तो उसकी गति और दक्षता प्रभावित होगी, यदि बहुत हल्का होगा तो मजबूती कम हो सकती है।
1: तो फिर समाधान क्या है?
0: देखो बेटा, विशेष सामग्रियों और उन्नत डिजाइन का उपयोग।
1: मतलब यहाँ मिधानी जैसी संस्थाओं का योगदान भी जुड़ जाता होगा।
0: हाँ, देखो कैसे देश की विभिन्न संस्थाएं मिलकर एक बड़े लक्ष्य को पूरा करती हैं।
1: दादू, जब कोई नया विमान पहली बार उड़ता है तब उसे कौन उड़ाता है?
0: परीक्षण पायलट।
1: क्या ये सामान्य उड़ान से अलग होता है?
0: हाँ बेटा, परीक्षण उड़ानों में विमान के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पायलटों को अत्यंत प्रशिक्षित और अनुभवी होना पड़ता है।
1: यानी वे केवल पायलट नहीं बल्कि उड़ान के वैज्ञानिक भी होते हैं।
0: ये सही कहा बेटा तुमने।
1: और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सुधार किए जाते होंगे।
0: हाँ बेटा, विमान विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
1: और ADA ने इन सबको दिशा दी है।
0: बिल्कुल दी है।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस के बाद भी ADA की यात्रा जारी है, तो अब उसका अगला बड़ा सपना क्या है?
0: देखो बेटा, हर उपलब्धि एक नए लक्ष्य का मार्ग खोलती है। आज ADA भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और अधिक उन्नत विमानों की दिशा में कार्य कर रही है।
1: क्या उनमें से कोई विशेष परियोजना है?
0: हाँ हाँ, ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, अर्थात AMCA।
1: वाह, नाम सुनकर ही लग रहा है दादू कि ये कोई अत्याधुनिक विमान होगा।
0: इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक उन्नत लड़ाकू विमान विकसित करना है बेटा।
1: मतलब विज्ञान और तकनीक की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि।
0: हाँ, विमानन विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए भविष्य के विमानों में नई सामग्रियां, आधुनिक प्रणालियां और उन्नत क्षमताएं शामिल की जाती हैं।
1: तो AMCA केवल एक विमान नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है।
0: हाँ बेटा, ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें देश केवल वर्तमान की नहीं आने वाले दशकों की आवश्यकताओं की भी तैयारी करता है।
1: दादू, अब तक हम वायुसेना के विमानों की बात कर रहे थे, लेकिन नौसेना का क्या?
0: नौसेना की आवश्यकताएं अलग होती है बेटा।
1: कैसे दादू?
0: देखो, समुद्र में विमान वाहक पोत पर काम करना सामान्य हवाई अड्डे पर काम करने से अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।
1: क्यों?
0: क्योंकि जहाज लगातार गतिशील रहता है, समुद्री हवाएं, सीमित स्थान और विशेष परिचालन आवश्यकताएं होती हैं।
1: तो दादू, नौसेना के लिए अलग प्रकार के विमान चाहिए होते?
0: हाँ बेटा, इसी दिशा में TEDBF अर्थात ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जैसी अवधारणाओं पर कार्य किया जा रहा है।
1: मतलब ऐसा विमान जो समुद्र में तैनात विमान वाहक पोत से उड़ान भर सके।
0: हाँ, ये दर्शाता है कि भारत विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: दादू, ADA की स्थापना बेंगलुरु में ही क्यों की गई?
0: क्योंकि बेंगलुरु लंबे समय से भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विमानन गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
1: मतलब वहाँ केवल एक संस्था नहीं है?
0: हाँ, वहाँ अनेक वैज्ञानिक संस्थान है बेटा, अनुसंधान केंद्र हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं और विमानन से जुड़े संगठन कार्य करते हैं।
1: यानी अलग अलग विशेषज्ञ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
0: हाँ, इसे ही कभी कभी वैज्ञानिक या तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है।
1: जैसे एक बगीचे में अलग अलग पौधे मिलकर पूरा वातावरण बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बेटा, ये उदाहरण बहुत सुंदर है।
1: दादू, तो बेंगलुरु केवल एक शहर नहीं बल्कि विचारों और नवाचारों का भी संगम है।
0: हाँ बेटा।
1: दादू, आपने बताया था कि एडीए का संबंध रक्षा अनुसंधान से भी है।
0: एडीए रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ से जुड़ी हुई है।
1: तो क्या दोनों मिलकर काम करते हैं?
0: हाँ हाँ बेटा, किसी भी बड़ी परियोजना में अनेक संस्थाएं अपना अपना योगदान देती हैं।
1: मतलब कोई संस्था डिजाइन में योगदान देती है, कोई परीक्षण में और कोई अनुसंधान में।
0: हाँ, आधुनिक तकनीक इतनी जटिल होती है कि इसमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है बच्चे।
1: यानी सफलता का श्रेय केवल एक संस्था को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता होगा दादू।
0: हाँ बेटा, पूरी टीम को जाता है।
1: ये कार्यक्रम सुनने वाले बहुत से बच्चे और युवा भी होंगे जो हमें सुन रहे होंगे दादू।
0: होंगे ही।
1: अच्छा, ये बताइए कि यदि कोई छात्र विमान निर्माण या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: अगर विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, उसे जानना है, समझना है, तो सबसे पहले जिज्ञासु बनिए।
1: जिज्ञासु?
0: हर वैज्ञानिक यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है।
1: जैसे मेरे प्रश्न?
0: हाँ बेटा, विज्ञान में प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना जाता है।
1: और फिर?
0: गणित विज्ञान, अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मेहनत करनी होती है।
1: यानी आज का जिज्ञासु विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक बन सकता है?
0: क्यों नहीं बन सकता। देश की हर बड़ी उपलब्धि कभी किसी विद्यार्थी के सपने के रूप में ही शुरू हुई थी बेटा।
1: तो हो सकता है दादू कि आज ये कार्यक्रम सुन रहा कोई बच्चा भविष्य में किसी नए विमान का डिजाइन तैयार करे?
0: बिल्कुल तैयार करेगा बेटा, और शायद वो भारत की अगली बड़ी तकनीकी उपलब्धि का हिस्सा भी बने।
1: दादू, अब मैं एक बार फिर वही प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो मैंने मिधानी के बारे में पूछा था।
0: पूछो पूछो बेटा, पूछो।
1: वो ये दादू कि यदि एडीए जैसी संस्था ना होती तो क्या फर्क पड़ता?
0: बहुत बड़ा फर्क पड़ता बेटा।
1: कैसे?
0: कल्पना करो, यदि किसी देश के पास अपनी विमानन डिजाइन क्षमता ना हो तो उसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए बाहरी तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
1: मतलब केवल विमान खरीदना ही पर्याप्त नहीं होता?
0: नहीं नहीं बेटा, तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान क्षमता और डिजाइन कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।
1: और एडीए ने भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ाया?
0: हाँ बेटा, इसने केवल परियोजनाओं का नेतृत्व नहीं किया बल्कि देश में विमानन अनुसंधान और विकास की क्षमता को भी बहुत मजबूत किया है।
1: यानी ये संस्था केवल विमान नहीं बनाती बल्कि ज्ञान भी विकसित करती है।
0: हाँ, और यही किसी भी विकसित राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होती है।
1: दादू, आज मैंने जाना कि उड़ान केवल पंखों की कहानी नहीं होती।
0: तो फिर किसकी कहानी होती है?
1: दादू, ये विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, साहस और सामूहिक प्रयास की कहानी होती है।
0: लगता है आज की चर्चा का सार तुम्हें मिल गया बच्चे।
1: हाँ दादाजी, और एडीए की कहानी बताती है कि जब कोई देश बड़े बड़े सपने देखने का साहस करता है ना, तो वे सपने एक दिन आकाश में उड़ान भी भरते हैं।
0: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही भारत की वैज्ञानिक यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है।
1: प्रिय श्रोताओं, आज के संक में हमने जाना कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए केवल लड़ाकू विमानों के विकास का संस्थान नहीं है बल्कि भारत की वैज्ञानिक दूरदृष्टि, आत्मनिर्भरता और नवाचार का एक सशक्त प्रतीक है। तेजस से लेकर AMCA और TEDBF जैसी भविष्य की परियोजनाओं तक एडीए ने भारत को स्वदेशी विमान डिजाइन और विकास की दिशा में नई पहचान दी है।
0: और यदि आप भी विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी या अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं तो अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए। कौन जाने आने वाले वर्षों में भारत के किसी नए विमान, किसी नई तकनीक या किसी नए वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे आपका भी योगदान हो। इसी प्रेरक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: अगले अंक में हम जानेंगे कि कैसे भारत के सैन्य उपग्रह धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर रहकर हमारी सीमाओं की निगरानी करते हैं। सुरक्षित संचार उपलब्ध कराते हैं और देश की सुरक्षा को नई शक्ति प्रदान करते हैं। श्रोताओं सुनते रहिए रेडियो नाटक देश के संस्थान। आज के कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
0: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नीमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: गोदावरी का लाल जादू, वह मिट्टी जिसने वैश्विक फैशन को रंग दिया। भारत के गोदावरी डेल्टा की घुमावदार नहरों के भीतर मिट्टी में एक ऐसा रहस्य दफन था जिसने यूरोप के शाही दरबारों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। ये सोना या रत्न नहीं था, बल्कि चेरूट नाम का एक साधारण सा पौधा था। कृष्णा गोदावरी डेल्टा का यह विशिष्ट क्षेत्र दुनिया का सबसे जीवंत और टिकाऊ लाल रंग पैदा करता था। एक ऐसा रंग जो इतना गहरा और स्थायी था कि वह वैश्विक फैशन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। आखिर यही विशिष्ट स्थान क्यों? इसका उत्तर प्रकृति और रसायन विज्ञान के एक अनूठे संगम में छिपा है। डेल्टा की मिट्टी बेहतरीन चेरूट के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त थी, लेकिन असली जादू नदी के किनारे होता था। 18वीं शताब्दी के पर्यवेक्षकों ने पाया कि स्थानीय पानी में मौजूद खनिज तत्व पौधों से मिलने वाले जैविक रंगों के साथ इस तरह प्रतिक्रिया करते थे जिसे पृथ्वी पर कहीं और दोहराया नहीं जा सकता था। इस प्राकृतिक रासायनिक प्रतिक्रिया ने रंग को कपड़े पर इस तरह नियत कर दिया कि वह लाल रंग न केवल असाधारण रूप से चमकीला था, बल्कि पक्का भी था, यानी वह कभी फीका नहीं पड़ता था। जब ये वस्त्र, जैसे कि प्रसिद्ध मछलीपट्टनम चिंट्स, 1680 के दशक में लंदन पहुंचे तो उन्होंने एक जबरदस्त सनक पैदा कर दी। बड़े घरानों की महिलाएं अपनी सबसे महंगी गाउन में इन कपड़ों का अस्तर लगवाती थीं, क्योंकि गोदावरी का लाल रंग बार बार और कठोरता से धोने के बाद भी अग्नि की तरह चमकदार और ताज़ा बना रहता था। जहां अन्य रंग सुस्त और भूरे पड़ जाते थे, वहीं गोदावरी का लाल रंग अपनी चमक के लिए प्रसिद्ध रहा। ये साबित करता है कि 18वीं शताब्दी में सबसे तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धी बढ़त किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि एक भारतीय नदी के किनारे की अनूठी मिट्टी और खनिजों में छिपी थी।
0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। क्रांति की चिंगारी से स्वतंत्रता का अलख जगाने वाले क्रांति वीरों की यशोगाथा का कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी।
2: याद करो कुर्बानी।
0: आज हम चर्चा करेंगे क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत गोगटे की। महाराष्ट्र के शोलापुर नगर के निवासी एक विचित्र सत्याग्रह के द्वारा शासन की नीति का विरोध कर रहे थे। उन लोगों ने अपने सत्याग्रह को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया था। झुंड के झुंड लोग नगर सीमा के बाहर जाते और जंगल से वृक्ष काटकर जुलूस के रूप में नगर भ्रमण करते थे, और इसी तरह का एक प्रदर्शन किया गया 1 मई 1930 को। अंग्रेज सरकार अपना अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने जंगल सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ सत्याग्रही गोलियों से मारे गए, जिसके कारण जनता और अधिक भड़क उठी। न्यायालय के भवन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी गई और न्यायालय के अभिलेख जलाकर भस्म कर दिए गए। शोलापुर से अंग्रेज जिलाधीश मिस्टर नाइट ने महाराष्ट्र के गृह सचिव और प्रभावी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन से अनुरोध किया कि शोलापुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए। सर अर्नेस्ट हॉटसन ने शोलापुर में तुरंत ही मार्शल लॉ लागू कर दिया। सरकार को दमन करने की अब खुली छूट मिल गई थी। जनता पर तरह तरह के अत्याचार होने लगे। तभी पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने वाला एक युवक वासुदेव बलवंत गोगटे ब्रिटिश सरकार के इन अत्याचारों की कथाएं सुनकर विचलित हो उठता था। वो सोचने लगे कि शोलापुर में लगाए गए मार्शल लॉ का विरोध किस प्रकार किया जाए। वो इस परिणाम पर पहुंचे कि मार्शल लॉ लगाने वाले अधिकारी सर अर्नेस्ट हॉटसन को दंडित किया जाए। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का, उसके बाद जानेंगे कि वासुदेव बलवंत गोगटे ने क्या योजना बनाई मार्शल लॉ का विरोध करने के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी। हम चर्चा कर रहे हैं वासुदेव बलवंत गोखटे की। वासुदेव बलवंत अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणित करने के विचार से निजाम हैदराबाद के राज्य में जा पहुंचे। हैदराबाद में उनके भाई डॉक्टर थे। गोखटे ने हैदराबाद की एक दुकान से दो रिवॉल्वर और कुछ कारतूस भी खरीद लिए। जंगल में जाकर निशानेबाजी का अभ्यास भी करने लगे और शीघ्र ही उनका निशाना अच्छा हो गया। लौटकर वो पूना पहुंच गए और सर अर्नेस्ट हॉडसन को मारने के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश करने लगे। लेकिन गोखटे को क्या मालूम था कि सर अर्नेस्ट हॉडसन 20 जुलाई 1931 को बंबई विधान परिषद के सत्र का शुभारंभ करेंगे। उन्हें मारने का ये उपयुक्त अवसर समझकर वो बंबई पहुंच गए और एक प्रवेश पत्र का प्रबंध करके परिषद में सीधे पहुंच गए। उन्हें ये जानकर बहुत निराशा हुई कि हॉडसन महोदय उस दिन वहां नहीं पहुंचेंगे और वे निराश होकर पूना लौट आए। गोखटे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हॉडसन महोदय पर हाथ साफ करने का फिर से अप्रत्याशित अवसर उन्हें शीघ्र लग जाएगा और वो भी पूना में। 22 जुलाई 1931 को उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज के फाटक पर एक अंग्रेज सार्जेंट को खड़ा हुआ देखा। वो जानना चाहते थे कि सार्जेंट वहां पर क्यों खड़ा है। उसने अपने साथियों से पूछा भी, लेकिन कोई भी उसे सार्जेंट की उपस्थिति का कारण नहीं बता सका। वो स्वयं उस गोरे सार्जेंट के पास पहुंच गए और विनम्रता के साथ उससे बातें करने लगे। गोरे सार्जेंट ने बताया कि आज ही बंबई प्रांत के प्रभारी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉडसन फर्ग्यूसन कॉलेज का निरीक्षण करने आने वाले हैं। फिर क्या था, गोखटे की तो बाँछें खिल गई। वो दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे और अपने दोनों रिवॉल्वर भरकर उन्हें कोट की जेब में रखकर फर्ग्यूसन कॉलेज पहुंच गए। सर हॉडसन की रुचियों के विषय में उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि वे पुस्तक प्रेमी हैं और पुस्तकालयों का निरीक्षण वे अवश्य करेंगे। उसने कॉलेज के वाडिया पुस्तकालय में गवर्नर पर गोली चलाने का निश्चय कर लिया। वाडिया पुस्तकालय की पहली सीट पर बैठकर गोखटे अध्ययन करने का अभिनय करने लगे। उसकी निगाहें दरवाजे की ही ओर थीं। उन्होंने अपने कोट की बाहरी जेब में हॉडसन महोदय का एक फोटो भी इसलिए रख लिया था जिससे वो गलत आदमी पर गोली न चला सकें। गोखटे को अपना प्रतीक्षित अवसर शीघ्र ही हाथ भी लग गया। पुस्तकालय भवन के निरीक्षण में गवर्नर महोदय उनके बिल्कुल पास आ गए। उनके साथ वाडिया बंधु भी थे जिनके दान से पुस्तकालय का निर्माण हुआ था। गोखटे गवर्नर महोदय को आदर दिखाने के लिए अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। वो उनके बिल्कुल सामने थे। अवसर का लाभ उठाने की दृष्टि से उसने कोट के अंदर की जेब से अपना रिवॉल्वर निकाला और एक गोली सर हॉडसन की छाती को लक्ष्य करके छोड़ दी। निशाना बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ना तो खून की एक बूंद निकली, ना हॉडसन महोदय के मुंह से कोई चीख। गोली खाकर हॉडसन महोदय गोखटे पर झपट पड़े और उसे नीचे गिराकर उस पर लेट गए। नीचे पड़े पड़े भी उसने एक गोली और उनकी छाती पर छोड़ दी। इतने पास से छोड़ी गई गोली का भी कोई असर नहीं हुआ। अब तो कई लोग दौड़ पड़े और गोखटे को काबू में करके उससे दोनों रिवॉल्वर छीन लिए गए। देशभक्ति गीत के बाद बताएंगे क्या हुआ गोखटे महोदय का।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी और हम चर्चा कर रहे हैं क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत गोपटे की। बलवंत वासुदेव ने हॉडसन पर गोली चलाई लेकिन उनको गोली नहीं लगी। गोपटे और हॉडसन फिर आमने सामने खड़े थे। हॉडसन ने पूछा, आपने मुझ पर गोलियां क्यों चलाई? गोपटे का उत्तर था, शोलापुर में मार्शल लॉ लगाकर आपने भारतीय जनता पर जो अत्याचार किए हैं उन्हीं के प्रतिरोध में मैंने आप पर गोलियां चलाई हैं। गिरफ्तार करके गोपटे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। उन्होंने कुछ अन्य बातें तो बताई लेकिन ये नहीं बताया कि उसने रिवॉल्वर कहां से खरीदा था। प्रारंभिक जांच करके खान बहादुर कोठाला ने गोपटे को सेशन सुपुर्द कर दिया। न्यायमूर्ति एनजे वाडिया की अदालत में गोपटे का मुकदमा शुरू हो गया। बचाव पक्ष की ओर से प्रसिद्ध वकील एलबी भोपटकर थे। इस घटना से देश भर में सनसनी फैल गई और अदालत में अच्छी खासी भीड़ हमेशा रहती थी। मुकदमे के निर्णय के दिन ज्यूरी ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अभियुक्त ने हिज एक्सीलेंसी पर दो गोलियां चलाई और अपनी खुशकिस्मती या गोलियों के कमजोर होने के कारण हिज एक्सीलेंसी की जान बच गई। इस वक्तव्य पर गोपटे के वकील श्री भोपटकर ने अस्पष्टता का आरोप लगाया। सेशन जज महोदय ने ज्यूरी से स्पष्ट कथन के लिए कहा और थोड़ी देर के लिए ज्यूरी के सदस्य फिर उठकर चले गए। उन्होंने स्पष्ट वक्तव्य देते हुए ये बात कही, अभियुक्त गोपटे स्पष्ट रूप से अपराधी है। उसने हिज एक्सीलेंसी सर अर्नेस्ट हॉडसन की हत्या का प्रयत्न किया है। चूंकि वो विद्यार्थी है और उसकी उम्र अभी कम है, इसलिए हम उसे कम सजा दिए जाने की सिफारिश करते हैं। गोपटे को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के अंतर्गत 8 वर्ष के कठोर कारावास का निर्णय सुना दिया गया। अवैध रूप से हथियार रखने के अपराध में भी उन्हें 2 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। उनके पक्ष में ये निर्णय भी दिया गया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा भुगतने के लिए गोपटे को पूना के निकट यरवदा के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। दोस्तों, वसुदेव बलवंत गोपटे का जन्म 11 अगस्त 1919 को सतारा जिले के मिराज नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिता मिराज हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। मिराज से हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद गोपटे फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने पुणे चले गए थे। गोपटे वीर सावरकर के जीवन दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और वो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के भी भक्त थे, जिन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी के फंदों पर झुला दिया गया था। मुकदमे के क्रम में गोपटे को बताया गया कि उनकी दोनों गोलियां हॉडसन महोदय के सीने में लगी थीं, लेकिन हॉडसन महोदय अपने शर्ट के नीचे रुपए रखने का एक चमड़े का बटुआ हमेशा रखते थे जिसमें स्टील के बटन लगे थे। स्टील के बटनों में ही गोलियां लगने के कारण हॉडसन महोदय की जान बच गई थी। गोपटे को इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ। उनका अनुमान था कि हॉडसन महोदय कपड़ों के अंदर स्टील का जिरह बख्तर पहनकर कॉलेज गए थे, क्योंकि खतरे के उन दिनों में अपने बचाव की सावधानी रखना उनके लिए बिल्कुल ही स्वाभाविक था। गोपटे को यरवदा जेल में रखा गया और उसी जेल में कुछ दिन बाद महात्मा गांधी को भी रखा गया था। जेल के अधिकारियों ने यह ध्यान रखा कि गोपटे और गांधी जी की भेंट ना हो सके। गोपटे की जेल से मुक्ति सन 1937 में हुई और कहा जाता है दोस्तों कि स्वयं सर अर्नेस्ट हॉडसन ने गोपटे की मुक्ति के लिए प्रयत्न किया था। जेल से मुक्ति के बाद गोपटे ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था उस पत्र में, जानेंगे इस देशभक्ति गीत के बाद।

0: क्रांति वीरों की यशोगाथा का कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रांति वीर वसुदेव बलवंत गोप्टे की। वसुदेव बलवंत गोप्टे को जेल हुई और फिर बाद में महात्मा गांधी को उन्होंने पत्र भी लिखा। गांधी जी ने 24 सितंबर 1937 को वर्धा से गोप्टे के पत्र का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। प्रिय श्री गोप्टे, आपका पत्र पाकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। मुझे इस बात का भी हर्ष है कि आप जेल से मुक्त हो गए हैं। यदि आप वर्धा आकर मुझसे मिलेंगे तो मुझे और अधिक हर्ष होगा। जब आप जेल में थे तो मैंने आपसे मिलने का प्रयत्न किया था, लेकिन मैं अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका। आपका शुभाकांक्षी मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, जेल से मुक्त होने के बाद गोप्टे ने सर अर्नेस्ट हॉटसन को भी एक पत्र लिखा था। हॉटसन महोदय ने गोप्टे के पत्र का उत्तर दिया और 100 रुपए का एक चेक भी गोप्टे के पास भेजा था, और उस उपहार को स्वीकार करने का अनुरोध भी किया गया। गोप्टे ने उपहार को स्वीकार करते हुए सर अर्नेस्ट हॉटसन को धन्यवाद का पत्र लिखते हुए लिखा था, प्रिय सर हॉटसन महोदय, आपने जो मेरे पास उपहार स्वरूप 100 रुपए का चेक भेजा है, उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। मेरा कथन है कि आपने मेरे लिए 100 रुपए के रूप में 100 आशीर्वाद भेजे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रति मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है। वो तो उस समय की बात थी जब विशेष परिस्थितियों के कारण मैंने आपको दंड देना चाहा था। वो अध्याय अब समाप्त हो चुका है, और अच्छा यही है कि उस घटना पर पर्दा डालकर हम लोग शेष जीवन में अच्छे मित्रों की भांति रहें। आपके प्रति समस्त शुभकामनाओं के साथ, आपका वसुदेव बलवंत गोप्टे। अपने शेष जीवन के लिए वसुदेव बलवंत गोप्टे ने वकालत का काम शुरू किया था और उसे उन्होंने जीवन भर निभाया भी। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे क्रांतिवीर वसुदेव बलवंत गोप्टे। आप सुनिए ये देशभक्ति गीत और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: वो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से एकता मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी रंगमंच की ओर से आयोजित 16वां 5 दिवसीय एकता नाट्य समारोह इन दिनों रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप सभागार में चल रहा है। समारोह के तहत बुधवार को हास्य नाटक बाप रे बाप का मंचन हुआ। डॉक्टर केपी सक्सेना लिखित संतोष पाणिक्कर द्वारा निर्देशित नाटक जन चेतना मंच संस्था के कलाकारों ने खेला। नाटक की कहानी मध्यम वर्गीय सिख परिवार की है, जहां पिता बच्चों से परेशान हैं। बच्चों को शक है कि पिता का दूसरी स्त्री से संबंध है। इसी गलत फहमी में पिता घर से गायब हो जाते हैं। बेटा विक्की और बहू अखबार व टीवी पर विज्ञापन देते हैं। पिता को ढूंढने वाले को 5,000 रुपये इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में कई लोग रूप बदलकर नकली बाप बनकर आ जाते हैं। पंडित अनोखीलाल तिवारी एक बाप पकड़ लाते हैं। उसने विक्की के बाप जैसे कपड़े पहने पर शक्ल नहीं मिलती। फजल साहब एक बाप पकड़ लाते हैं, उनका हुलिया मेल खाता है पर वे गूंगे हैं। तभी असली पिता लौटते हैं। वे घर में बहुरूपियों को पाकर हैरान हो जाते हैं। वे दोनों बापों से पूछते हैं कि वे क्या करने आए हैं। फजल मियाँ के साथ आया बाप नौटंकी कलाकार है, वह पेट पालने के लिए नाटक करने आया था। पंडित जी के साथ आया बाप बचपन का यार है, उसे ढूंढने वे खुद जालंधर गए थे। इस बीच मित्र उन्हें ढूंढते हुए दिल्ली आ गया। बचपन में हुबहू कपड़े पहनने का वादा निभाने वाले मित्र के कपड़े देखकर पंडित जी उसे घर ले आए। दोनों दोस्त बरसों बाद मिले। बाप के गुम होने की गुत्थी सुलझी। टैगोर नाट्य महोत्सव के अंतिम दिन रविंद्र भवन में कथाकार संतोष चौबे की कहानी सतह पर तैरती उदासी का नाट्य मंचन हुआ। निर्देशन देवेंद्र राज अंकुर ने किया। दिल्ली के संभव समूह ने प्रस्तुति दी। अधूरे प्रेम, व्यक्तिगत टूटन और सामाजिक परिवेश की कहानी, झारखंड के राजनगर की पृष्ठभूमि पर आधारित ये नाटक पति पत्नी और पत्नी की मित्र के त्रिकोणीय रिश्तों की जटिल भावनात्मक विडंबना को दर्शाता है। नाटक में एक और बंद होते कारखाने और औद्योगिक पतन के कारण प्रभावित होता जीवन है, तो दूसरी ओर निजी संबंधों की टूटन, अधूरा प्रेम और गहरी उदासी। ये कहानी दर्शकों को मानवीय संवेदनाओं तथा बदलते सामाजिक औद्योगिक परिवेश पर सोचने को मजबूर करती है। मैनेट भोपाल में मध्य भारत के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालयीन हिंदी महोत्सव तूरीनाथ के 15वें संस्करण का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक किया जा रहा है। भारत, आर्य, अध्यात्म, अभ्युदय के केंद्रीय विषय पर आधारित इस महोत्सव में देश के 22 से अधिक राज्यों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। प्रतिभागियों के लिए 12 मुख्य प्रतियोगिताओं में कुल 2,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। मामे खान की प्रस्तुति से लेकर स्वदेशी फैशन शो तक। महोत्सव का शुभारंभ 11 सितंबर को शाम 4 बजे प्रसिद्ध चिंतक मुकुल कानिटकर करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे राजस्थान के मशहूर लोक कलाकार मामे खान एवं उनका बैंड रॉक एंड रूट्स संगीतमय प्रस्तुति देगा। वहीं 12 सितंबर को लेखन प्रतियोगिताएं, छात्र संसद और गैर हिंदी भाषियों के लिए खिचड़ी प्रतियोगिता का पहला चरण होगा। अभिव्यक्ति, नृत्य व गायन के बाद शाम को इतिहास के अमर अध्याय थीम पर स्वदेशी फैशन शो परिधानिका आयोजित किया जाएगा। अंतिम दिन 13 सितंबर को प्रातः 9 बजे भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता होगी। बाग मुगलिया स्थित कुबेर बैंक्वेट में 11 सितंबर को शाम 6:30 से सामूहिक तबला वादन का आयोजन किया जा रहा है। मासिक सांस्कृतिक श्रृंखला के तहत आयोजित कार्यक्रम में ताल अकादमी के विद्यार्थी अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत उपस्थित रहेंगे, जबकि अध्यक्षता मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट करेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत पारंपरिक वाद्य संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है।
विश्व साक्षरता दिवस पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट मध्य प्रदेश में साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रसिद्ध चित्रकार एवं कलाकार निखिल खत्री अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने साहित्यकार नवनीत नीरव की कहानी छरबिंदा का पाठ किया। कहानी में दो आदिवासी बच्चों के जरिए क्रिएटिविटी, कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता की दुनिया सामने आती है। कहानी में एमिली साथी हुपून के साथ बारिश में जंगल जाती हैं। वहां उसे जहरीले कीड़े छरबिंदा के काटने से दर्द होता है। डरी हुई एमिली घर लौटती है। उसकी दादी गर्म पानी और नमक से कलाई धोकर प्याज लहसुन का लेप लगाती हैं। दर्द कम होने के बाद दादी उसे समझाती हैं कि छरबिंदा जैसे छोटे जीव भी डरते हैं और केवल बचाव में काटते हैं। कहानी बच्चों को प्रकृति को समझने का संदेश देती है। तो ये थी आज की परिक्रमा सुनते रहिए FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: यामादा नागामासा, अयोध्या का मर्चेंट मर्सिनरी, व्यापारी किराए का सैनिक। 17वीं शताब्दी के सियाम, आज का थाईलैंड की राजधानी अयोध्या के व्यस्त बंदरगाह में एक व्यक्ति एक ही समय में कई भूमिकाएं निभा सकता था। दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी किस्मत आजमाने वाले जापानी साहसी यात्रियों में यामादा नागामासा से बेहतर इस लचीलेपन का उदाहरण कोई और नहीं है। नागामासा जापानी शुइंजो या लाल मुहर पास प्रणाली द्वारा संचालित अभूतपूर्व समुद्री विस्तार के युग के दौरान सियाम पहुंचे थे। अपने हजारों देशवासियों की तरह वे अयोध्या के निहोनमाची यानी जापानी समुदाय में बस गए। एक ऐसी दुनिया जहां व्यापार और हिंसा के बीच की रेखाएं हमेशा धुंधली रहती थीं। इस माहौल में जापानी प्रवासी एक बदलती निरंतरता में रहते थे, जो जरूरत पड़ने पर मर्सनरी बन जाते थे और मुनाफा दिखने पर वापस व्यापारी की भूमिका में आ जाते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नागामासा एक दुर्जय व्यवसायिक प्रतिद्वंदी थे। वे केवल एक सैनिक ही नहीं थे, वे एक समृद्ध व्यापारी थे जिन्होंने एक अत्यधिक लाभदायक वाणिज्यिक नेटवर्क का प्रबंधन किया था। उन्होंने जापान में भारी मांग वाली वस्तु हिरण की खाल के आकर्षक व्यापार पर नियंत्रण के लिए VOC के साथ कड़ा मुकाबला किया। इस मर्सनरी मर्चेंट ढांचे ने उन्हें अपनी निजी सेना बनाए रखते हुए व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की अनुमति दी। सियाम के राजा अपनी सुरक्षा के लिए तेजी से जापानी लड़ाकों पर निर्भर होने लगे थे, जिन्हें वे साहस और निष्ठा के लिए सबसे सम्मानित मानते थे। यूरोपीय पर्यवेक्षकों ने इन सैनिकों को वीर और भयंकर योद्धाओं के रूप में वर्णित किया है, जो किसी भी संघर्ष के परिणाम को बदलने में सक्षम थे। जापानी समुदाय के राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत एक दुस्साहसी कृत्य से हुई थी। डच वृत्तांतों और अयोध्या के इतिहास के अनुसार जापानी सैनिकों ने सियाम के सम्राट का अपहरण कर लिया था और उन्हें तब तक बंधक बनाए रखा जब तक कि वे उन्हें अपने एलीट पैलेस गार्ड और जीवन भर के लिए अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने पर सहमत नहीं हो गए। इस उच्च स्तरीय माहौल में नागामासा रैंकों में ऊपर उठते गए और सियाम के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। नागामासा का करियर अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुंचा जब उन्होंने सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और उत्तराधिकार की विश्वासघाती राजनीति को संभाला। वे एक सैन्य और वाणिज्यिक उद्यमी की अनूठी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह युद्ध का नेतृत्व कर सकता था और दोपहर में व्यापारिक सौदे पर बातचीत कर सकता था। अंततः एक किंगमेकर का जीवन जितना लाभदायक था उतना ही खतरनाक भी। नागामासा की मृत्यु 1630 में हुई। वे उसी दरबारी साजिश के शिकार हुए जिसे आकार देने में उन्होंने मदद की थी। उनकी कहानी उस युग का प्रमाण है जहां साहसी यात्री समुद्र पार कर सकते थे और अपनी युद्ध प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर विदेशी भूमि में सत्ता हथिया सकते थे। नागामासा केवल एक विदेशी घुसपैठिए नहीं थे, वे सियामी राज्य के एक अनिवार्य अंग थे, जो ये साबित करता है कि उस समय एक तेज तलवार और व्यापार की गहरी समझ ही राजनीतिक अस्तित्व का अंतिम हथियार थे।
1: यूनियन नामक जुड़वा जहाज, एक कॉर्पोरेट गृह युद्ध की कहानी। क्या आप जानते कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्र की लहरों पर एक अजीब संयोग देखने को मिला था? दो कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास दो बिल्कुल एक जैसे जहाज थे और दोनों का नाम था यूनियन। ये जहाज बनाने वालों की कोई गलती या कल्पना की कमी नहीं थी, बल्कि ये जुड़वा जहाज अंग्रेजी मसाला व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए की गई एक हताशा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस भ्रम को समझने के लिए आपको उस कॉरपोरेट गृह युद्ध को देखना होगा जिसने लंदन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। लगभग एक सदी तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था, लेकिन 1690 के दशक तक उन्हें उन राजनेताओं और व्यापारियों ने घेर लिया जो उनके विशेष अधिकारों को एक असंवैधानिक अवशेष मानते थे। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता कितनी तीव्र थी? दोनों कंपनियों ने केवल काली मिर्च के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ का युद्ध छेड़ दिया। सूरत में नई कंपनी की कौंसिल सर निकोलस वेट ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर पुरानी कंपनी के अध्यक्ष सर जॉन गियर को 9 साल तक जेल के एक गंदे छेद में बंद रखा। हिंद महासागर के पार दोनों फर्मों के एजेंटों ने स्थानीय राजाओं के सामने एक दूसरे को चोर और समुद्री डाकू घोषित कर दिया, जबकि उनके कर्मचारी एक दूसरे को कालकोठरी में फेंक रहे थे। लंदन में बैठे निदेशकों ने जब अपने बैंक खातों को देखा तो वे कांप गए। इस आंतरिक युद्ध की लागत अनुमान से अधिक थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक नया युद्ध वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन करीब आ रहा था और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि रॉयल नेवी दो विभाजित और झगड़ालू बेड़ों की सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकती। दोनों कंपनियों को एहसास होने लगा कि अगर वे विलय नहीं करती हैं तो दोनों दिवालिया हो जाएंगी। अतीत में उन्होंने स्पीड वेल या ट्रेड्स इंक्रीज जैसे आशावादी नाम चुने थे। अब दोनों ने यूनियन नाम से एक जहाज का निर्माण कराया जो इस बात का संकेत था कि विलय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अप्रैल 1702 में अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्या आप जानते हैं कि यूनियन ने वास्तव में भ्रम को समाप्त नहीं किया? 7 साल की संक्रमण अवधि के लिए तकनीकी रूप से एक साथ 3 कंपनियां काम कर रही थी, पुरानी नई और नई बनी यूनाइटेड कंपनी, जो अपने अलग अलग ऋणों को निपटाने की कोशिश कर रही थी और एक ही जहाज साझा कर रही थी। बंगाल में इसने पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जहां 2 प्रतिद्वंदी अध्यक्ष हर हफ्ते बारी बारी से गवर्नर की कुर्सी पर बैठते थे। 2 जहाज जिनका नाम यूनियन था उस समय के प्रमाण हैं, जब व्यापारिक लालच ने एशिया में ब्रिटिश उपस्थिति को लगभग नष्ट कर दिया था। केवल जहाज के पतवार पर लिखा वह हताश नाम उस यूनाइटेड कंपनी की ओर इशारा कर रहा था जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाली थी। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद ने जब डेट्रॉइट से विदा ली तो वहां लौटने की बात उनके मन में बिल्कुल न थी, परंतु घटना चक्र ऐसा घूमा कि 2 सप्ताह बाद ही 9 मार्च को वे पुनः वहां आ पहुंचे। 9 मार्च के डेट्रॉइट जनरल में छपा था कि हिंदू सन्यासी विवेकानंद शिकागो से आज रात डेट्रॉइट लौटेंगे और श्री पामर का आतिथ्य ग्रहण करेंगे। वे ओपेरा हाउस में भारत में पश्चिमी मिशनरी विषय पर व्याख्यान देंगे।
1: लगभग हजारों श्रोताओं ने ये व्याख्यान सुना था। डेट्रॉइट ट्रिब्यून में इसका विवरण प्रकाशित हुआ।
2: स्वामी जी ने सर्वप्रथम भारत की सामाजिक अवस्था का वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने स्पेन व पुर्तगाल से आने वालों की ध्वंस लीला का उल्लेख किया। इसके बाद आए अंग्रेज मिशनरी, परंतु वे भारतवासियों से मेल जोल न रखकर अपने अभिजात्य वर्ग की रक्षा में व्यस्त रहे और गरीबों की अन्न और वस्त्रहीनता का फायदा उठाने लगे। उन्होंने और भी कहा, अधिकांश मिशनरी भारतीय शास्त्रों के साथ अपरिचित, अर्धपरिचित तथा अपने कार्य के अनुपयुक्त हैं। वे सच्चे धार्मिक मिशनरी के विरोधी नहीं थे, परंतु ऐसे निस्वार्थ धार्मिक मिशनरी हैं कहाँ। वे तो आजीविका के रूप में धर्म प्रचार करने जाते हैं, और इन राष्ट्रों के बारे में चर्चा करनी हो तो कहना पड़ेगा कि उन लोगों ने पृथ्वी पर खून की नदियां प्रवाहित की हैं। उन्होंने और भी कहा कि सभी धर्म मूलतः सत्य हैं, अतः मिशनरियों को चाहिए कि वे किसी राष्ट्र या संप्रदाय का गर्व ना पालें, क्योंकि भगवान की संतानों के बीच भला संप्रदाय भेद कैसे होगा।
1: ये व्याख्यान देने के बाद स्वामी जी ने स्वयं बड़े संतोष का अनुभव किया था। अगले दिन हेल बहनों को अपने पत्र में उन्होंने सूचित किया,
3: इस समय मैं श्री पामर का अतिथि हूँ। ये बड़े ही सज्जन हैं। परसों रात उन्होंने अपने पुराने मित्रों को एक भोज दिया था, जिसमें से हर एक की आयु 60 वर्ष के ऊपर थी। इस मंडली को वे वयोवृद्ध बालक संघ कहा करते हैं। एक नाट्यशाला में मैंने 2.5 घंटे तक व्याख्यान दिए हैं, उनमें ये अंतिम ही सर्वोत्तम था। सुनकर श्री पामर आनंद विभोर थे और श्रोतागण मंत्र मुग्ध बैठे रहे। व्याख्यान समाप्त हो जाने पर ही मुझे पता चला कि मैं इतनी देर तक बोलता रहा।
0: इस भाषण के बाद ही वे पास के बे सिटी और सेगिनो नगर का दौरा कर पुनः डेट्रॉइट लौट आए और शनिवार को यूनिटेरियन चर्च में भारतीय नारी विषय पर बोले।
3: भारतीय नारी का आध्यात्मिक आदर्श अति उच्च है। विभिन्न देशों के नारी समाज को उनके अपने अपने आदर्शों के आधार पर विचार करना चाहिए। पाश्चात्य मापदंडों से प्राच्य नारी का मूल्यांकन करना उचित नहीं। पश्चिम में नारी पत्नी है, पूर्व में वो माँ है। भारत में सतीत्व का सर्वाधिक सम्मान है। नारी के शरीर से जगदम्बा ही अभिव्यक्त होती है।
1: श्रोतागण पाश्चात्य और भारतीय नारियों की तुलना सुनकर अचंभित हो गए। इस प्रकार 30 मार्च तक डेट्रॉइट में बिताकर स्वामी जी इस नगर से विदा हुए, पर बाद में एक बार सन 1896 में पुनः वहां आकर लगभग 2 सप्ताह तक व्याख्यान और कक्षाएं चलाई। उस बार के डेट्रॉइट निवास के बारे में श्रीमती फंकी ने लिखा है,
4: उनके साथ आए संकेत लेखक तथा विश्वस्त गुडविन, विभिन्न परिवारों के निवास के लिए वहाँ पर एक छोटा सा रिचेल्यू होटल है, उसी के एक कमरे में वे लोग रहते थे और कक्षाओं एवं व्याख्यान के लिए बड़ा बैठक खाना उपयोग में लाते थे। तथापि भीड़ के अनुपात में वो कमरा छोटा पड़ता था, अतः अनेक लोगों को लौट जाते देखकर हमें अत्यंत दुख होता था। कमरा, हॉल और सीढ़ी सब लोगों से भर जाता था। उस समय वे केवल भक्ति से परिपूर्ण रहते थे, भगवत प्रेम के ही वे भूखे और प्यासे थे। वे एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद में विभोर हो उठे थे। लगता था मानो स्नेहमयी जगदम्बा के लिए व्याकुलता के फलस्वरूप उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका अंतिम सार्वजनिक व्याख्यान हुआ था टेंपल बेथेल में। उसके पुरोहित थे राबाई लुई ग्रॉसमन, जो स्वामी जी के बड़े निष्ठावान प्रशंसक थे उस दिन रविवार था और जनता इतनी अधिक संख्या में आई थी कि हम लोग किसी दुर्घटना की आशंका से भयभीत हो गए थे। धसाधस भरे लोगों की पंक्तियां सड़क तक फैली हुई थी और कई सौ लोगों को लौट जाना पड़ा। स्वामी जी ने वहां उपस्थित अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लिया था। वहां उनके दिए हुए दो व्याख्यानों का विषय था, पाश्चात्य जगत को भारत का संदेश तथा विश्व धर्म का आदर्श। उनके अति मनोरम तथा विद्वतापूर्ण व्याख्यान हमने सुने। उस रात आचार्य देव को मैंने जिस रूप में देखा वैसा और कभी नहीं देखा। उनके सौंदर्य में ऐसा कुछ था जो इस पृथ्वी का नहीं था।
0: सम्मान तथा सफलता के बीच भी स्वामी जी का वैराग्य किस प्रकार अभिव्यक्त हो उठता था, इसका परिचय उस काल के एक पत्र में प्राप्त होता है।
3: श्री होल्डन आज सुबह मुझे मिशिगन में भाषण देने के लिए खूब समझा रहे थे, परंतु मैं थोड़ा सा बोस्टन और न्यूयॉर्क देख लेने को इच्छुक हूं। सच कहता हूं, जो जो मुझे लोकप्रियता मिलती जा रही है और बोलने में आसानी होती जा रही है, त्यों त्यों मैं इससे उब रहा हूं। इन सब व्यर्थ की बातों से भगवान मुझे बचाएं। अब ये सब अच्छा नहीं लगता। ईश्वर को मंजूर हुआ तो मैं बोस्टन या न्यूयॉर्क में विश्राम करूंगा।
0: ठीक इसी समय उन्होंने अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों की सहायता से व्याख्यान कंपनी से नाता तोड़ लिया था। उनके 15 मार्च के पत्र में है,
3: पहले व्याख्यान के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं हुई। हॉल का किराया ही था $150। मैंने होल्डन को विदा कर दिया है, एक दूसरा व्यक्ति मिल गया है, देखें वो अच्छी व्यवस्था करता है या नहीं।
0: व्याख्यान विषयक अनुबंध रद्द करने के विषय में श्रीमती बर्क ने लिखा है,
4: स्वामी जी जिस समय श्री पामर के मकान में निवास कर रहे थे, संभवतः तभी स्वामी जी का व्याख्यान कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त हुआ था। यह अनुबंध 3 वर्षों के लिए हुआ था, परंतु 4 महीनों के भीतर ही वो उन्हें एक बड़ा बंधन प्रतीत होने लगा। संभवतः स्वामी जी के व्यवसायी मित्र ही उन्हें उससे मुक्ति दिलाने में सफल हुए थे, क्योंकि भगिनी क्रिस्टीन के मतानुसार प्रभावशाली मित्रों के हस्तक्षेप के बिना उससे मुक्त होने का कोई उपाय न था। परंतु इस अनुबंध को रद्द करने से उन्हें बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि स्वामी जी ने तब तक अपने भारतीय कार्य के लिए जितना कुछ संचय किया था वो लगभग पूरा ही उन्हें खो देना पड़ा था।
1: ये सारी बातें उन्होंने खुद श्रीमती हेल को लिखी थी। फिर निरंतर आलोचनाओं और आक्रमणों से वे ऊब गए थे। उन्होंने श्रीमती हेल को लिखा,
3: अब तक सब कुछ ठीक है, परंतु पता नहीं क्यों जब से यहां आया हूं मेरा मन बड़ा उदास है। व्याख्यान आदि निरर्थक चीजों से मैं बिल्कुल थक गया हूं। सैकड़ों प्रकार के नर पशुओं से मिलते मिलते मेरा मन अशांत हो गया है। मैं तुम लोगों को अपनी रुचि की बात बताता हूं। मैं लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, परंतु मैं गंभीर विचार कर सकता हूं, और उसके फलस्वरूप जब जोश में आता हूं तो वाणी के स्फुलिंग निकाल सकता हूं। पर यह होना चाहिए केवल कुछ चुनिंदा लोगों के बीच ही, फिर वे यदि चाहें तो मेरे विचारों को दूर दूर तक प्रसारित करें। चिंतन करने के लिए मनुष्य को स्वाधीन होना चाहिए, और विशेषकर तब जबकि विचार आध्यात्मिक हो। चूंकि स्वाधीनता का यह दावा कि मनुष्य मशीन नहीं है समस्त धार्मिक विचारों का सार है, अतः यंत्र के समान नियम पूर्वक इस चिंतन में अग्रसर होना संभव नहीं। हर चीज को यंत्र के स्तर पर खींच लाने की प्रवृत्ति ही पाश्चात्यों की अपूर्व समृद्धि का कारण है, परंतु इसी प्रवृत्ति ने समस्त धर्म को उनके द्वार से विताड़ित भी किया है। जो थोड़ा सा बचा है उसे भी पश्चिम ने नियमबद्ध कवायद सा बना लिया है। वस्तुतः मैं तूफानी कतई नहीं हूं, बल्कि हूं ठीक इसके विपरीत। मैं जो चाहता हूं वो यहां नहीं है, और मैं इस तूफानी वातावरण को और अधिक काल तक सहन करने में असमर्थ हूं। स्वयं पूर्ण बनने का प्रयास करना तथा कुछ अन्य नर नारियों को पूर्ण बनने में सहायता करना पूर्णता की उपलब्धि का यही मार्ग है। भला करने से मेरा तात्पर्य है कुछ असाधारण मानवों का विकास करना, न कि भैंस के आगे बीन बजाते हुए समय, स्वास्थ्य तथा शक्ति का क्षय करना।
1: व्याख्यान कंपनी के साथ संबंध तोड़ने के मूल स्वरूप उन्हें अपना अर्जित प्रायः सारा धन ही त्याग देना पड़ा था। कंपनी उन्हें कैसे ठगती थी उसके बारे में उन्होंने आला सिंगा को 11 जुलाई 1894 में लिखा था।
3: डेट्रॉइट के व्याख्यान से मुझे $900 अर्थात 2700 रुपए मिले थे। अन्य व्याख्यानों में से एक के द्वारा मैंने एक घंटे के अंदर $2,500 अर्थात 7,500 रुपए कमाए, परंतु मुझे मिले $200 ही। एक धोखेबाज भाषण कंपनी मुझे ठग रही थी, अब मैंने उनका साथ छोड़ दिया है।
1: आपको जानकारी दे दूं कि उन दिनों डॉलर की विनिमय दर 3 रुपए थी।
5: दूसरी बार डेट्रॉइट आकर स्वामी जी पहले श्री पामर के यहाँ फिर श्रीमती वागले के घर पर ठहरे थे। इस बारे में उन्होंने एक पत्र में मजेदार बात लिखी थी।
3: मैं बूढ़े पामर के साथ आनंद पूर्वक हूँ, वे बड़े विनोदी तथा भले वृद्ध हैं। हाँ, मेरे बारे में सबसे मजेदार बात लिखी है यहाँ के एक समाचार पत्र ने। लिखा है, तूफानी हिंदू यहाँ आ पहुंचा है और वो श्री पामर का अतिथि है। श्री पामर हिंदू हो गए हैं और भारत जा रहे हैं। बस उनकी जिद यही है कि दो चीजों में सुधार होना चाहिए। प्रथम ये कि जगन्नाथ जी के रथ में श्री पामर के लॉग हाउस फार्म में पले हुए फ्रेंच नस्ल के घोड़े जोते जाएं, और द्वितीय ये कि हिंदुओं के पवित्र गौवंश में जर्सी गायों को भी सम्मिलित कर लिया जाए। श्री पामर उक्त नस्ल के घोड़ों तथा गायों के बड़े शौकीन हैं और उनके लॉग हाउस फार्म में दोनों का बाहुल्य है। श्री पामर के घर अधिक दिन बिताने से श्रीमती बागले नाराज हो गई हैं, अतः आज उनके यहां लौट आया। वैसे श्री पामर के घर में दिन बड़ी तफरीह में कटे। वे बड़े ही मौजी और हंसमुख आदमी हैं। मेरे चले आने से वे बड़े दुखी थे, लेकिन मैं विवश था।
5: स्वामी जी के पत्रों से ही ज्ञात होता है कि वे मध्य पश्चिम का कार्य समाप्त कर पूर्वी अंचल में जाने के लिए व्यग्र थे। उस अंचल में जाने से पूर्व 23 फरवरी को वे ओहियो प्रांत के आडा शहर में और वहां से डेट्रॉइट लौटकर पुनः 20 मार्च को मिशिगन प्रांत के बेसिटी तथा सेगिना नगर में गए थे।
1: इन्हीं यात्राओं के दौरान उनकी भेंट अमेरिका के लोकप्रिय अक्षयवादी वक्ता इंगरसोल से हुई। उन्होंने स्वामी जी को सावधान कर दिया था कि वे अति साहसी या अति स्पष्टवादी न हो। इसका कारण पूछने पर इंगरसोल ने कहा था,
6: 50 वर्ष पूर्व इस देश में प्रचार के लिए आने पर आपको फांसी से लटका दिया जाता या फिर जिंदा जला दिया जाता। यहाँ तक कि इसके कुछ और काल बाद आने पर भी आपको पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया जाता।
5: स्वामी जी तथा इंगरसोल के अनुभवों के बीच एक अंतर था। इंगरसोल पूरे धर्म के ही विरोधी थे, जबकि स्वामी जी स्वयं आस्तिक, ईश्वर प्रेमी तथा ईसा मसीह के प्रति असीम श्रद्धावान थे। इंगरसोल अतीन्द्रिय सत्य में अविश्वासी थे, जबकि स्वामी जी विश्वासी थे। इंगरसोल धर्मध्वंसी थे, जबकि स्वामी जी केवल संकीर्णता एवं पाखंड के विरोधी थे। अतः स्वामी जी के भाग्य में विरोधी के साथ समर्थन भी यथेष्ट जुटा था। एक घटना के द्वारा इन दोनों के बीच के पार्थक्य का स्पष्ट बोध हो जाता है। एक कक्षा के श्रोताओं को स्वामी जी ने बताया था,
3: एक बार इंगरसोल ने मुझसे कहा था, मेरा विचार है कि संसार से जितना अधिक संभव हो लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। संतरे को निचोड़कर जितना अधिक हो सके रस निकाल लेना होगा, क्योंकि इस जगत के अलावा अन्य किसी लोक के अस्तित्व के बारे में हम निश्चित नहीं हैं। मैंने उत्तर दिया, इस जगत रूपी संतरे को निचोड़ने की मैं आपसे अच्छी प्रणाली जानता हूं और उससे मुझे रस भी ज्यादा मिलता है। मैं जानता हूं कि मैं मर नहीं सकता, अतः मुझे रस निकालने की हड़बड़ी नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है, अतः आराम से निचोड़ता हूं। मेरा कोई कर्तव्य नहीं, स्त्री पुत्रादि तथा विषय संपत्ति का कोई बंधन नहीं है, अतः मैं समस्त नर नारियों से प्रेम कर सकता हूं। सभी मेरे लिए भगवत स्वरूप हैं। मनुष्य को भगवान समझकर उससे प्रेम करने में कितना आनंद है। अपने संतरे को इस प्रकार निचोड़कर देखिए, इससे आपको 10,000 गुना अधिक रस मिलेगा। रस की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाएगी।
5: स्वामी जी और भी एक मजेदार घटना सुनाया करते थे। उन दिनों वे व्याख्यान देने में लगे हुए थे और केवल एक बैग साथ लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का दौरा करते रहते थे। विभिन्न स्थानों के लोगों में स्वामी जी के व्याख्यान सुनने का आग्रह होने पर भी उनकी सुख सुविधा पर ध्यान देना सर्वदा संभव नहीं हो पाता था। इसी समय एक बार वे मध्य पश्चिम के एक छोटे से नगर में व्याख्यान देने पहुंचे। उस समय वे बड़े ही थके हुए लग रहे थे और थोड़ा विश्राम कर लेना उनके लिए आवश्यक था। स्वागत समिति के सचिव ने उनके विश्राम के लिए एक छोटा सा अंधेरा कमरा दिखा दिया। कमरे में प्रविष्ट होकर स्वामी जी जो ही आराम कुर्सी पर बैठे, त्यों ही वो चरमराती हुई बीच में से टूट गई।
7: हे भगवान!
5: और स्वामी जी अपना संतुलन खोकर उसके भीतर गिर पड़े। बहुत कोशिश करने पर भी उनका शरीर उसमें से निकल नहीं पाया, बल्कि उन्होंने पाया कि अधिक हिलने डुलने पर कपड़े फट जाने तथा शरीर छिल जाने की आशंका है। अतः वे उसी असुविधाजनक अवस्था में ही निश्चेष्ट पड़े रहे। आखिरकार व्याख्यान का समय हो जाने पर जब सचिव महोदय ने आकर मंच पर चलने के लिए उन्हें पुकारा, स्वामी जी चलिए, श्रोतागण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा,
8: महाशय, यदि आप मेरी वर्तमान शोचनीय अवस्था से उद्धार न करें तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को इसी प्रकार इंतजार करते रहना होगा।
5: यह सुनकर सचिव शीघ्रता पूर्वक भीतर आए और स्वामी जी को खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद हंसी ठहाकों से कमरा गूंज उठा। स्वामी जी इस घटना का इतने सुंदर ढंग से वर्णन करते थे कि हंसते हंसते उनके गुरु भाइयों के पेट में बल पड़ जाते थे।
1: एक अन्य घटना से स्वामी जी की महानता तथा मानव जाति के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा व सहानुभूति अभिव्यक्त हो उठी थी। अमेरिका के दक्षिणी प्रांतों में कई बार उन्हें भ्रमवश नीग्रो समझ लिया जाता था। एक बार उसी अंचल में ट्रेन से उतरने पर उनका बड़ा भव्य स्वागत होते देखकर एक नीग्रो कुली उनके पास आकर बोला, मैंने सुना है कि आप हमारी जाति में एक महान व्यक्ति हुए हैं और आपके द्वारा नीग्रो समाज गौरवान्वित हुआ है। मैं आपके साथ हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त करने आया हूँ। स्वामी जी ने बड़ी आत्मीयता पूर्वक उस रेलवे कुली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। वे अपने प्रति नीग्रो लोगों के व्यवहार के और भी उदाहरण दिया करते थे और अपने को नीग्रो समझ लिए जाने पर जरा सा भी संकुचित या नाराज नहीं होते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि दक्षिण के किसी होटल वाले ने उन्हें नीग्रो समझकर होटल में घुसने ही नहीं दिया और अभद्रता पूर्वक प्रताड़ित कर दिया। तथापि उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वे एक नीग्रो नहीं वरन भारतवासी हिंदू हैं। इसके बाद अन्यत्र आश्रय लेकर स्वामी जी ने उस नगर में बड़ा सुंदर भाषण दिया तथा अगले दिन का समाचार पत्र पढ़कर होटल वाले को अपनी भूल समझ में आई और उसने आकर क्षमा याचना की। यहाँ तक कि अमेरिका के उत्तरी भाग में भी उन्हें हजामत की दुकान से अपमानित होकर निकल आना पड़ा था। काफी काल बाद ये घटनाएं सुनने के बाद जब उनके एक पश्चिम देशीय शिष्य ने पूछा कि इन स्थानों पर उन्होंने क्यों नहीं अपना सही परिचय बता दिया, तो स्वामी जी रोष पूर्वक बोले, क्या कहा, दूसरों की कीमत पर बड़ा होना, मैं इसके लिए पृथ्वी पर नहीं आया।
5: रंग भेद पर आधारित श्रेष्ठता का दावा उन्होंने अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि ऐसा करने पर वे उसकी हंसी उड़ाते थे। उनका विश्वास था कि उनकी अपनी जाति के रक्त में विभिन्न धाराओं का सम्मिश्रण हुआ है। वे कहते थे,
3: यदि मुझे अपने गौर वर्ण आर्य पूर्वजों पर गर्व है तो अपने पीत वर्ण मंगोल पूर्वजों पर मुझे और भी गर्व है, और मैं सर्वाधिक गर्वित हूं अपने कृष्ण वर्ण नीग्रो पूर्वजों के प्रति।
5: भगिनी निवेदिता ने लिखा है,
4: उन्हें अपने शारीरिक गठन और विशेषतः अपने मंगोल जबड़े पर गर्व था, जिसे वे लक्ष्य सिद्धि के पथ में बुलडॉग जैसी दृढ़ता का परिचायक मानते थे। उनका विश्वास था कि मंगोल जाति की ये विशेषता आर्य जाति की सभी शाखा प्रशाखाओं में पर्याप्त हो चुकी है। इसी प्रसंग में एक दिन वे कह उठे थे, देखते नहीं ततार ही प्रत्येक जाति की प्राण शक्ति रूपी मदिरा है। वो सभी जातियों के रुधिर में बल और उद्यम संक्रमित करता है।
5: अपनी वाकपटुता के फलस्वरूप वे इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके पास व्याख्यान के लिए असंख्य आमंत्रण आते थे। उन सभी को स्वीकार करना उनके समय तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव न था, तथापि जिन्हें वे स्वीकार कर लेते थे उनके फलस्वरूप उन्हें सप्ताह में 12-14 तक व्याख्यान देने पड़ते थे। इससे उनका शरीर मन काफी थक जाता था। कुछ दिनों बाद उन्हें लगता कि बुद्धि का भंडार मानो शून्य हो गया है और वे व्याख्यान के विषय तक ठीक नहीं कर पाते। वे सोचते, अब क्या करूंगा, कल क्या बोलूंगा। ऐसी चरम अवस्था में अप्रत्याशित रूप से दैवी सहायता आ पहुंचती। इसके फलस्वरूप रात में सो जाने पर मध्य रात्रि के समय उन्हें एक ऊंची आवाज सुनाई देती, जिसमें उन्हें अगले दिन के व्याख्यान का विषय वस्तु बता दिया जाता। कभी ये आवाज काफी दूर से आती प्रतीत होती, फिर क्रमशः निकट आती जाती, अथवा देखते कि वे बिस्तर पर लेटे हैं और कोई दूसरा समीप खड़ा होकर व्याख्यान दे रहा है, या फिर कभी दो आवाजें व्याख्यान के विषय पर तर्क वितर्क करती, जिससे उन्हें अगले दिन के लिए सामग्री प्राप्त हो जाती। इनमें से अधिकांश विषय उन्हें पहले से अज्ञात तथा नवीन प्रतीत होते। कभी कभी तो उस मकान में रहने वाले अन्य लोग भी ये वार्तालाप सुनकर अगले दिन पूछते, स्वामी जी कल रात आप किसके साथ इतने जोर जोर से बातें कर रहे थे। इस पर स्वामी जी मृदु हास्य के साथ दो चार ऐसी बातें कहकर टाल जाते कि प्रश्नकर्ता के मन में ये व्यापार और भी रहस्यमय हो उठता। ज्यादा पूछताछ करने पर वे व्याख्या करते हुए कहते,
3: अरे वो कुछ भी नहीं, स्वयं क्रिय मन की स्वकेंद्रिक क्रिया मात्र है। वही अपने को दो भागों में विभाजित करके उपदेश देती है, बातें करती है और विचार करती है। यह आत्मा की ही असीम शक्ति की परिचायक है। आत्मा की असीम संभावनाएं इसी रीति से निद्रा काल में अभिव्यक्त होती हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें कोई अलौकिक रहस्य नहीं है। इसी को दैवी प्रेरणा कहते हैं।
1: परंतु वार्तालाप के दौरान वे प्रायः इन सबको कोई महत्व नहीं देते या इसकी अलौकिकता को स्वीकार नहीं करते और युक्ति की सहायता से समझा देते कि मन की स्वाभाविक प्रक्रिया से ही ऐसा हो जाता है।
5: इन्हीं दिनों उनमें अलौकिक योग शक्तियों का भी स्फुरण हुआ था। मदाम काल्वे की घटना में हमें उसका परिचय मिल चुका है, परंतु सामान्यतः वे उस शक्ति का उपयोग नहीं करते थे। जिन विरल अवसरों पर वे उसका प्रयोग करते उस समय कोई ना कोई विशेष कारण विद्यमान होता था। उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि इच्छा हुई तो स्पर्श मात्र से ही वे दूसरों की जीवन गति में परिवर्तन ला सकते थे। कमरे में बैठे ही दूर का समाचार जान सकते थे और दूसरों के अंतर मन की बातें देख लेते थे। कई बार देखने में आया कि पूछने के पहले ही वे प्रश्नकर्ता की शंका जानकर उसका निवारण कर देते। दूसरों की ओर देखकर ही वे उसके विगत जीवन के रहस्यों को खोल सकते थे। शिकागो के एक धनाढ्य व्यक्ति योग की शक्तियों के विषय में संदेहवान थे। एक बार उन्होंने स्वामी जी की हंसी उड़ाने के उद्देश्य से कहा,
7: महाशय आप जो कहते हैं वो यदि सत्य हो तो फिर मेरे मन के गठन तथा मेरे अतीत जीवन के बारे में कुछ बताइए।
5: स्वामी जी ने क्षण भर के लिए हिचकिचाने के बाद अपनी तीक्ष्ण दृष्टि इस प्रकार उनकी आंखों पर स्थिर कर दी कि वो दृष्टि अदम्य शक्ति के साथ उस व्यक्ति के देह मन को भेदती हुई उनकी जीवात्मा तक पहुंचने लगी। वे सज्जन घबरा कर कह उठे,
7: स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? लगता है मानो आप मेरी पूरी आत्मा को मत रहे हैं और मेरे जीवन के सारे गोपनीय रहस्य तैरते हुए ऊपर आ रहे हैं।
5: ऐसी शक्तियों के अधिकारी होकर भी वे उनका दुरुपयोग नहीं करते थे और ना ही उन्हें आध्यात्मिक प्रगति का द्योतक मानते थे।
1: इसके फलस्वरूप स्वामी जी के पास आने वाला व्यक्ति आत्म उन्नति तथा धर्मानुभूति के पथ की ही जानकारी पाता और जीवन में एक नवीन प्रेरणा की उपलब्धि करता। उन दिनों वे मानो बाकी सब कुछ भूलकर अमेरिका की आध्यात्म चेतना को जगाने के कार्य में ही विशेष रूप से लगे हुए थे। अमेरिका की जनता भी उन्हें इसी दृष्टि से देखती थी। उनके लिए वे साधु थे, महापुरुष थे और अमेरिका को भारत का श्रेष्ठतम एवं मंगलमय अवदान थे। इसीलिए भारत के इन वरद पुत्र को अमेरिका के समाज ने अतीव आत्मीय के समान अपना लिया था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 MHz, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अजय सिंह टिपानिया का गायन। उसके बाद क्लेरनेट वादन की प्रस्तुति दी जाएगी डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी और साथियों द्वारा, और अंत में गायन प्रस्तुत किया जाएगा आरती अंकलीकर टिकेकर का। तो आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं अजय सिंह टिपानिया का गायन।

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं,

सब आप लोगों की एक मोहब्बत से हम बजाए, आप लोग प्यार से सुन रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ा क्रिएशन हो गए। अभी नेक्स्ट एक धुन बजाएंगे पीलू का मध्यलय में।

0: अभी आप डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी तथा साथी बेंगलोर द्वारा क्लेरिनेट वादन का आनंद ले रहे थे।
1: आइए आज की सभा के दूसरे क्षण में हम कुछ ही क्षणों बाद आनंद लें। कबीर गायन की एक और शैली का और हमारे बीच कुछ ही क्षणों में मंच पर हाजिर होंगी विश्वख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायिका सुश्री आरती अंकलीकर टिकेकर।

तो श्रोताओं, अजय सिंह टिपानिया के गायन के बाद अब बारी है क्लेरनेट वादन की, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी और उनके साथ साथी कलाकार।

0: और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
1: ओफ यार, ये जूते कहां रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार ये लोग, फोन मोबाइल कहां रखा है मेरा यार?
2: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ?
1: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
2: हाँ।
1: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में, सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है के टूटते ही।
3: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
1: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
2: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
1: क्या मतलब
2: भाई? 5 महीने बाकी है अभी साल पूरा होने में,
1: और नोटिस दे दिए है कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
2: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
1: क्या?
2: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, और कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
1: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगा? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
2: देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
1: क्या?
2: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली। भाई उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
4: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है, पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीन न जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर, अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
1: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
2: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या? उफ़
4: साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
2: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
4: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो। हाँ। थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
2: अच्छा, बनाती हूँ अभी।
4: हाँ हाँ, तो कई दिन

0: लेकर चले गए।
1: तो गुना होता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
0: मैं क्या कर लूं, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस, अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
1: रो,
0: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
1: हाँ,
0: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
1: हाँ, करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
0: सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहनत आप तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ, हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह, फिर हाँ। आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे।

0: छाड़ यार, एक काम करो, अटपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था, है?
1: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो? अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
0: क्या करूं?
1: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान। आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
0: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
1: हटो जी,
0: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल, तुम उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी।
1: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको? क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
0: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
1: ये लीजिए। ये बताइए, अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
0: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
1: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
0: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, हैं? आधा गैस।
1: वाओ, मान गए आपको। वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्य कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
1: सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
0: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
1: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये, देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
0: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
1: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
0: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
1: है?
0: जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
1: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव? भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
0: क्या,
1: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
0: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद। मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो 7वां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
1: ये भी आ गए 7वें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
0: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
1: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है। कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
0: अरे ठीक कहती हो तुम,
2: एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे। बस प्लेट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
1: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
0: क्या
1: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा
1: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या
1: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटाकरण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी जी जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ।
0: हुँ।
1: शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कि कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़े मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूं भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जाने दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एक आध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांसू है।
1: हाँ।
0: चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैया?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले ही लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो?
0: हाँ,
3: सुनना जरा।
0: हाँ, बोलो।
3: देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के,
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल गया। ये देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर कौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई, किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो, पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई। कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी। अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये, जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो। हाँ पढ़ो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
3: अच्छा अच्छा चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ, हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा,
0: एक
3: अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं। अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ, जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों हम आपको सुनवा रहे हैं उर्मिला पांडे और साथी कलाकारों का बुंदेली गायन।
2: जो सोहर गीत मैं गा रही हूँ वो बुंदेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध सोहर गीत है, कहीं कहीं इसको बधाई गीत भी कहते हैं, तो आपके सामने ये बधाई प्रस्तुत है। दो लाइनें माँ के लिए।

एक लोक शैली में एक सुंदर सा गीत बहन उर्मिला पांडे जी और उनके सभी साथी कलाकार।

और अगला गीत आपकी सेवा में, जो वसंत ऋतु जो अपने बीच है उस ओर चलते हैं, जो बिहारी जी की रचना है, ऋतुराज महाछवि छाए अली, लीजिए बहन और

भोलानाथ वरा सजी है, लीजिए इस गाड़ी को बहन अनुला पांडे जी और उनके सभी साथी कलाकार।

भगवान भोले बाबा के चरणों में ये प्रस्तुति थी। सुंदर सा गीत चौकड़िया के रूप में, जिसे फाग भी कहते हैं, ईश्वरी जी की, ईश्वरी जी द्वारा रचित राधा श्यामल आँखें घेरे। लीजिए बहन उर्मिला पंडित जी।

0: और इस पारंपरिक भाग के बाद एक होली गीत नेक ठारी रही हो लाला रंग डालूंगी।
1: अभी आपने ईश्वरी की सुनी, अब ये चंद्र सखी द्वारा रचित होली गीत है।

0: और सुंदर सा होली गीत आपकी सेवा में बहन अनुला पांडे जी, एक पारंपरिक बहुत सुंदर सी होली एक गीत के माध्यम से सुनिए आप।
1: रसिया एक मैं सुना रही हूँ होली का। रसिया ब्रज के हैं, अपने बुंदेलखंड के भी हैं, होली के अलग हैं, सावन के अलग हैं। मैं ये होली का रसिया सुना रही हूँ।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्मिला पांडे और साथी कलाकारों का बुंदेली गायन। इसी के साथ आज का कार्यक्रम भारत भारती बस यहीं तक। अब दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह का समय है, आप नींद में हैं, कोई सुंदर सा सपना देख रहे हैं और अचानक कोई आए और धड़धड़ा कर आपको उठा दे। अजी उठा क्या दे, साथ में एक गिलास फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी आपके मुंह पर भी डाल दे तो कितना गुस्सा आएगा ना आपको। ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ हमारे नाटक के मुख्य पात्र उमेश के साथ भी, क्योंकि उनका बढ़ता वजन और उनकी बढ़ती खुराक के कारण उनकी सेहत उनके लिए मुसीबत बन गई थी। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, इस कश्मकश पर आधारित है हमारा हास्य नाटक सेहत बनी मुसीबत। आइए सुनते हैं।
2: अरे ओ कुंभकर्ण के मामा, पूरी दुनिया जाग गई है और तुम हो कि घर्राटे ही भरे जा रहे हो, जैसे कि सोने के लिए ही दुनिया में आए हो।
3: अच्छा, जैसे सुन ही नहीं रहे हो। मैं भी देखती हूँ आज कैसे नहीं उठते तुम।
4: ये क्या भगवान, तुम योगे पिछले जन्म के दुश्मन, ये भी कोई तरीका है जगाने का? इतनी ठंड में बर्फ जैसा पानी डाल दिया, हड्डियां तक फ्रीज हो गई हैं।
2: तुमने कोई रास्ता छोड़ा भी था मेरे पास? सुबह से 5 बार आकर उठा चुकी हूँ तुम्हें, करके फिर सो जाते। साउंड प्रूफ रजाई में आवाज भी तो नहीं जाती होगी ठीक से, पर ये वाटर प्रूफ नहीं है जी, भले मानस की तरह। अब उठ जाओ तुम तो।
4: तो किसी की नींद न खुले तो कटार भोंक दोगे उसे? बड़ा ये भी कोई शराफत हुई?
2: शराफत शरीफों के साथ की जाती है। और सुनो ये मिस्टर, मैंने जल डाला है आपके ऊपर, कोई कटार वटार नहीं चलाई है।
4: जल? बर्फ की धार को तुम जल कहती हो? कल को उबलता पानी डाल दो मेरे ऊपर और कहो कि जल डाला है, उफनती नदी में ढकेल दो और कहो जल ही में तो ढकेला है, तेल में तल दो इंसान को और कहो कि ऑयल ही तो है। तुम्हारी परिभाषा चलने लगे ना कोर्टों में तो सबके सब हत्यारे साफ बच निकले। अरे छुरी से सब्जी भी कटती है और बकरी भी और इंसान भी, लेकिन क्या इनमें कोई फर्क नहीं दिखता तुम्हें?
2: ए मिस्टर, अपना ये लॉजिक अपने पास ही रखो, हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से साबित करने पर तुले रहते हो
4: है?
2: और सुनो, जल्दी से फ्रेश होकर जॉगिंग पर निकलो, नहीं तो चाय भी नसीब नहीं होने वाली।
4: क्या?
2: हाँ, 100 आलसी मरे थे ना, तब पैदा हुए थे ये जीव, बस बहस करवा लो इनसे, इसी में फुर्ती दिखती है इनकी, मगर हाथ पाँव हिलाने को मत कहो। अरे कभी ध्यान से अपने आप को शीशे में देखा है? तुम्हारी ये सेहत ही तुम्हारी मुसीबत बनी हुई है।
4: हे भगवान, कैसी हिटलरी बीवी दी है, हाथ में चाबुक लिए घूमती, ये ना करो वो ना करो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ऐसा लगता है जैसे परेड कमांडर है ये और मैं एक अदना सा सिपाही। अब तो चाय मिलेगी ना श्रीमती जी, सर्द हवाओं से लड़कर आ रहा हूँ, एक कण चाय का तो बनता है अब।
2: इतनी जल्दी? हाय राम, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए तुम्हें गए और चले आए चाय मांगने। तुम क्या कोई घोड़ा वोड़ा हो जो 10 मिनट में 3 मील दौड़ा है? अरे कहा था ना तुमसे कि 3 मील से कम नहीं, और ये पेट देखा है अपना, लगता है 14 महीने का है।
4: अरे श्रीमती जी, इतना तो करेक्टर न लूज कीजिए मेरा, मुझ पर अप्राकृतिक आरोप लगाते हुए कुछ तो लजाइए, किसी ने सुन लिया तो दुनिया में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा।
2: हाँ हाँ, लजाती ही तो हूँ मैं आपके बढ़ते हुए वजन से, ये गालों पर लटकती हुई चर्बी के थैलों से। शरीर देखा है कभी अपना? ऐसा लगता है जैसे बरैया काटने से फूल गया हो, कोई फिटनेस ही नहीं है।
3: चलते हो तो लगता है कोई मांस का पहाड़ मटर गश्ती करने निकला है। पर बाकी सब पति लोग कितने चुस्त दुरुस्त रहते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, और एक आप हैं, केवल ईटिंग करते हैं और हमेशा रेस्टिंग ईटिंग रेस्टिंग। भर पेट खाने के बाद भी अगर चार गुलाब जामुन खिला दो ना तो सटका लोगे फटाफट। हाथ पांव नहीं हिलाते और बस मुंह ही चलाते रहते।
5: तो क्या चाहती हैं आप? हवा पीऊं, अखाड़े में जाकर कुश्ती लड़ूं और अपने हाथ पांव तोड़वा लूं?
3: अरे नहीं नहीं, हाथ पांव ही टूट जाएंगे तो जॉगिंग कौन करेगा। पर एक बात तो तय है, खाने में आपके कटौती जरूर होगी। अब पानी भी सर से ऊपर गुजर चुका है। बाप रे।
4: एक फुलका तो और दे दो जी, और हाँ थोड़ा सा घी भी डाल देना उस पर, सूखी रोटी अलग से नीचे नहीं उतरती जी।
3: घी? हाँ। और तुम्हें? अरे इतनी चर्बी है तुम्हारे बदन में, अगर इससे घी निकाला जाए ना तो एक कनस्तर तो जमा हो ही जाएगा कम से कम। ऊपर से घी खाना है तुम्हें? अरे ये कहो मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी नहीं परोस रही हूँ तुम्हें। और अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा तो उस दिन के लिए भी तैयार रहना तुम। और हाँ सुनो, 5 रोटियां हो चुकी है पूरी तुम्हारी। ये जो लिस्ट टंगी है ना दीवार में, इसी के हिसाब से खाना मिलेगा अब तुम्हें। साथ चलते हो तो सब कहते हैं ये देखो बकरी के साथ गेंडा चला जा रहा है।
4: मुझे गेंडा कहा तुमने? मेरी तुलना तुम उस प्राणी से कर रही हो? अरे हाथी भी कहती ना तो बुरा ना लगता मुझे, कम से कम साफ सुथरा तो जानवर है वो, पर गेंडा इतना भद्दा नाम। मेरा खाया पिया शरीर इतना करता है तुम्हें गेंडा।
3: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाथी ही सही, जो तुम्हें पसंद हो वही नाम रख लो, पर खाने के मामले में तो नो कम्प्रोमाइज। तुम्हारी फिगर मुझे अब ठीक करनी ही पड़ेगी, शुरू में चेत गई होती ना तो ये नौबत ही ना आती। पर खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है।
4: कम से कम एक चम्मच चावल तो दे दीजिए श्रीमती जी, पेट का गोडाउन पूरा खाली पड़ा है, भाई भाई चिल्ला रहा है वो, उसकी करुण पुकार कुछ तो सुनिए अन्नपूर्णा जी।
3: मुझे मस्का लगाने की कोशिश न करो जी, मैं अब बिल्कुल पिघलने वाली नहीं। अन्नपूर्णा कहो या महालक्ष्मी, पर मुझसे वरदान की उम्मीद मत पालो, चावल का एक दाना भी नहीं दे सकती अब मैं तुम्हें। और सुनो, तुम चाहो तो 8-10 गिलास पानी जरूर पी सकते हो, तुम्हारा ये गोडाउन फुल हो जाएगा, भाई भाई नहीं करेगा तब वो, मजे से हिलोरे लेना खुश।
4: हाँ खुश, जल प्रलय करने का इरादा है क्या पेट में? हे प्रभु कहाँ हो तुम? कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, पर ऐसी जोड़ी क्यों बनाई तुमने? इस गाड़ी में एक पहिया बुलडोजर का और दूसरा साइकिल का क्यों लगा दिया? भर पेट खाने को नहीं, नींद भर सोने को नहीं, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा भगवान? कुछ तो पुकार सुनो इस दुखियारे की, अगर दुनिया में हो तुम तो प्रकट हो और मेरी मदद करो भगवान।
6: कहो क्या कष्ट है वत्स?
4: कौन कौन?
6: वही जिसे तुम इतनी देर से पुकार रहे थे। मुझसे तुम्हारा कष्ट नहीं देखा गया पुत्र।
4: भगवान क्या सच मुझे?
6: हाँ बेटा उमेश, जब बच्चे दिल से पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। कहो क्या कष्ट है तुम्हें?
4: अरे भगवान, अरे प्रभु, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे खाने की इच्छा ही ना हो और ना ही जरूरत। ये खाना मेरा दुश्मन बन चुका है प्रभु, बहुत जिल्लत उठानी पड़ती है इसके कारण मुझे। ये सेहत मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मुझे इस पापी पेट से छुटकारा दिलाइए प्रभु। न खाऊंगा मैं और ना ही मेरा वजन बढ़ेगा। वो भी खुश और मैं भी खुश।
6: ये प्रकृति के विरुद्ध है वत्स। इस संसार में हर एक प्राणी को भोजन करना ही पड़ता है। ये प्रकृति का विधान है। इसे कोई भी नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं।
4: अरे तो आपके आने से क्या फायदा हुआ भगवान? मेरी समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई है।
6: सोचने दो वत्स, मुझे सोचने दो। हाँ ठीक, एक काम हो सकता है।
4: क्या?
6: इससे तुम्हें भोजन भी मिलता रहेगा और तुम्हारी पत्नी को खबर भी ना होगी।
4: अरे जल्दी बताइए प्रभु, जल्दी बताइए, सस्पेंस ना क्रिएट कीजिए।
6: वत्स, तुम्हारी ओर से भोजन ग्रहण करने का काम किसी और को दिया जा सकता है।
4: क्या?
6: वो शख्स भोजन ग्रहण करेगा और तृप्ति तुम्हें मिलेगी। समझो मिर्ची के बड़े वो खाएगा और मजा तुम लोगे। उसका स्वाद तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी भारिया सोचेगी तुम तो भूखे ही हो, पर वास्तव में तुम 56 भोग का आनंद ले रहे होगे। ये सिस्टम वैसा ही है जैसे खाना माँ खाती है पर तृप्ति उसके पेट के बच्चे को मिलती है। सिस्टम नया नहीं है हमारे लिए, बस इसका सॉफ्टवेयर नया डाला है। पहले ये इंटरनल होता था, अब एक्सटर्नल हो गया है।
4: वाह प्रभु, ये तो बिना भोजन के रहने से भी ज्यादा धांसू आइडिया है। अगर ऐसा है तो मेरी ओर से ये काम आप दो लोगों को दे दीजिए। वो क्या है ना कि दो लोग होंगे ना, इसलिए एक के बूते मेरा पेट नहीं भरने वाला।
6: नहीं नहीं, एक से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जा सकती।
4: क्यों?
6: वन फॉर वन। बच्चे की ओर से भी भोजन एक ही माँ ग्रहण करती है। हाँ, तुम चाहो तो इस काम के लिए कोई बड़े साइज वाला पेट चुन लो। वो तुम्हारी भाषा में कहते हैं ना जंबो साइज, जैसे एक टिकट पर केवल एक ही मुसाफिर सफर कर सकता है, चाहे उसका साइज कुछ भी हो। उसी तरह तुम अपने लिए भी केवल एक ही खाओ वीर चुन सकते हो। साइज अपनी मर्जी से देख लेना।
4: पर एक समस्या है भगवान, मेरा वजन भी तो बढ़ेगा था।
6: सो तो होगा ही।
4: हाँ।
6: ये तो प्रकृति का नियम है वत्स। अन्न शरीर में जाकर रक्त व मांस तो बनेगा ही, हाँ चर्बी फैट भी।
4: अरे फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भगवान। मेरी बीवी तो दौड़ा दौड़ा कर मेरा दम निकाल देगी। सचमुच वो आदमी से मुझे घोड़ा बना देगी, अश्व योनि में डाल देगी मुझे।
6: एक उपाय है इसके लिए।
4: वो क्या है प्रभु?
6: तुम अपने लिए एक व्यायाम वीर भी रख लो। खाओ वीर की तरह व्यायाम वो करेगा, फायदा तुम्हें मिलेगा। इस तरह तुम्हारे भोजन और फिटनेस दोनों का ही काम दूसरे लोग संभालेंगे, फायदा तुम उठाना।
4: आप विलंब नहीं कीजिए स्वामी, जल्दी से एवमस्तु बोल दीजिए प्रभु।
6: ओके ओके, एवमस्तु एवमस्तु।
4: ये डबल क्लिक क्यों प्रभु? बाकी मामलों में तो आप एक ही बार एवमस्तु का कमांड देते हैं।
6: वत्स, वरदान भी तो दो हैं, फिर कमांड भी तो दो बार ही देना पड़ेगा।
1: वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उमेश खुश था, उसने एक बड़े पेट वाला ब्राह्मण अपनी ओर से भोजन ग्रहण करने के लिए और एक हट्टा कट्टा व्यक्ति अपनी ओर से व्यायाम करने के लिए रख लिया। पत्नी को झूठ बोल दिया कि सपने में भगवान आए थे और आदेश देकर गए हैं कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ नियमित रूप से, इससे धन धान्य में और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। व्यायाम पुरुष के बारे में कह दिया कि यह घर का काम करने के लिए नौकर है। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण देवता की सेवा करने का उसे मौका मिलेगा और घर के कामकाज से छुट्टी भी। भला और क्या चाहिए था उसे। और अब सुनिए आगे की कहानी।
2: सुनो जी, सुनो तो।
6: क्या है?
2: कुछ नहीं तो कम से कम दूध ही पी लो ना। देख रही हूँ खाना पीना तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है।
5: हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था धर्मपत्नी जी, भगवान ने कहा था कि मुझे 2 माह निर्जला व्रत भी करना है।
2: क्या पागल हो गए हो तुम? 1 दिन के निर्जला व्रत में तो जान निकल जाती है आदमी की, और तुम कहते हो कि 2 महीने?
5: अरे मुझे कुछ नहीं होगा श्रीमती जी, जब भगवान का आशीर्वाद है साथ में तो फिर चिंता क्या। हाँ, ब्राह्मण देव के खाने पीने में जरूर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ लो ब्राह्मण नहीं साक्षात भगवान ही है वो।
2: अरे नहीं होगी जी, नहीं होगी, ब्राह्मण देव तो वैसे भी हमारी संस्कृति में भगवान ही माने जाते हैं।
5: और हाँ, उन्हें सुबह सुबह शुद्ध घी का बेसन का हलवा खिलाना, साथ में मेवे का दूध और काजू की नमकीन। दोपहर के खाने में विशेष ख्याल रखना, दाल चावल, 7-8 रोटी, 1 कटोरी रायता, 2 स्वीट डिश, 3-4 पापड़, खट्टी और मीठी दोनों तरह की चटनी।
2: एक मिनट रुको, ये सब तो तुम अपनी पसंद बता रहे हो।
5: हाँ, अरे तुमने पढ़ा नहीं है शास्त्रों में, दान उसी चीज का करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ये नहीं कि बासी रोटी बच गई है इसे कोई नहीं खा रहा है तो भिखारी को डाल दो, दाल खट्टी हो गई है तो गाय को डाल दो, चीनी जमीन पर गिरकर गंदी हो गई तो चींटी को डाल दो। ये दान नहीं, ना दान है, ना और दान यानी कोई दान।
2: बस बस बस, समझ गई बाबा, सब समझ गई। तुम्हें तो एक सिरा मिल जाए ना किसी भी बात का, बस पकड़ कर हवाई यात्रा पर चल पड़ते हो फुल टैंक के साथ, नॉन स्टॉप। ये बिना कुछ खाए पिए तुम्हें डकार कहाँ से आ रही है जी? और फ्रेश भी रेगुलरली हो रहे हो तुम, ऐसा चंभा न देखा है न कभी सुना।
6: सो भगवान की माया है धर्मपत्नी जी,
5: वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अरे वो राय को पहाड़ बना सकता है, वो बर्फ पर घास उगा सकता है। तुमने कबीर का दोहा नहीं सुना है, कमल जो फूले सरह बिन, यानी बिना तालाब के ही कमल खिल रहा है। अरे यहाँ तक कहते हैं कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, यानी वो बिना पैरों के चलता है बिना कान के सुनता है। और फिर
2: बस बस बस बस, मेरे तो कान पक गए। सच ही कह रहे हो तुम, मैं भी देख रही हूँ कि बिनु दिमाग के बकैल लड़े बिनु जुबाना।
5: अरे वाह, अरे वाह श्रीमती जी, विद्वानों की सोबत का असर तो आप पर अब होने लगा है। अच्छा एक बात तो बताइए, आपने रात में सब्जी में इतनी मिर्ची क्यों डाली थी? बुरा हाल हो गया मेरा।
2: तुम तो सरप्राइज पर सरप्राइज दिए चले जा रहे हो जी, और भगवान वाली कहावत मनुष्य योनि में साकार भी कर रहे हो। बिना खाए डकार लेते हो, बिना चखे सब्जी का स्वाद बताते हो। अल्लाहुद्दीन का जिन पाल रखा है क्या तुमने?
5: अरे नहीं, सब भगवान की माया है। तुमने श्लोक नहीं सुना है संस्कृत का, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरम। अरे वही कि गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो भला क्या नहीं कर सकता।
2: पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मुझे तो तुम भी अब बड़े अजीब लग रहे हो, ऐसा लगता है

0: इतना ही प्रतिमल लगाना है तो आप कोई दूसरा ब्राह्मण
1: पर होता है। आखिर माँ भी तो अपने पेट के बच्चे का ख्याल रखती है ना खाने पीने में।
0: अच्छा अब समझ गया मैं, तो जजमान आप मेरे पेट के बच्चे हैं। कल को माई माई करते हुए आ जाना मेरे पास और बोलेंगे तुम जननी मैं तेरा बालक। अरे पलीता लगा देंगे आप तो मुझे, महीने भर खिलाएंगे और जीवन भर खुद खाएंगे। वाह रे वाह।
1: अरे मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं।
0: बाप रे बड़ी खतरनाक मिसाल है आपकी, त्राही माम प्रभु। इस सीधे साधे ब्राह्मण को आपने किस संकट में डाल दिया, बचाइए प्रभु इससे।
1: क्या चल रहा है पहलवान, वर्जिश मर्जिश ठीक से चल रही है कि नहीं?
2: सब ठीक चल रहा है बॉस, बस भाई साहब टाइम पे खाना नहीं देती हैं और मेरी सेहत का ख्याल ही नहीं रखती हैं। जानते हैं आप, सब तर माल उस ब्राह्मण को खिलाती हैं और मेरे सामने यूं ही कुछ रूखा सूखा डाल देती हैं। सोचती हैं घर का नौकर है, आराम से चुपचाप बैठ के खा लेगा।
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है भाई, टेबल के नीचे से मनी सरकाता हूं ना मैं तुझे। हाँ। बाजार जाकर तबियत से खा पी लिया कर, मगर वर्जिश से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सुबह की जॉगिंग सूरज निकलने के पहले ही खत्म हो जानी चाहिए, हाथ की मछली निकलनी चाहिए मेरी।
2: हाँ।
1: समझे।
2: हाँ।
1: पेट की चर्बी छटनी चाहिए मेरी। आखिर मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो चाहिए ना मुझे।
2: अरे जान लगाकर तो मेहनत करता हूँ बॉस मैं। अब तबीयत कभी गरम नरम रहती है तो आराम तो करना ही पड़ेगा। आखिर मशीन भी गरम होने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती
1: बस,
2: है।
1: बस बस कर बस कर, मुझे लेक्चर नहीं रिजल्ट चाहिए, नहीं तो समझ ले कि नौकरी से बाहर तू।
2: नहीं
3: उमेश के दोनों ही कर्मचारी बेवफा निकले। ब्राह्मण देव दिल खोल करके भोग लगाते और पेट दुखता इस गरीब का। तीखा खाना वे खाते और एसिडिटी होती उमेश को, क्योंकि उनका पेट अब दूसरों के हाथ में था जो उन्हीं की दया पर निर्भर था। दूसरी ओर पहलवान भी अव्वल दर्जे का कामचोर था, केवल बातों की तनख्वाह ले रहा था और ज्यादातर घोड़े बेच करके सोता रहता। उमेश का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यह तो वही वाली मिसाल हुई कि काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के। कई बार तो ऐसी हद हो जाती कि उमेश के लिए परेशानी खड़ी हो जाती। सुनिए आगे की कहानी।
2: पेट में जैसे भूचाल आया हुआ है। अरे एक गिलास गर्म पानी के साथ आजमाइन दे दो जी।
4: अरे बाप रे बाप, मेरा हार रहने पर तुम्हारा ये हाल है? मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। सुनो, कहीं चोरी छिपे तुम?
1: क्या बात करती है धर्मपत्नी जी, अरे जब कोई बंदिश हो तो चोरी करना समझ में भी आती है, पर मैं तो अपनी मर्जी से व्रत कर रहा हूँ। तुमने कहाँ रोका है मेरा खाना?
4: सब कुछ बड़ा अजीब चल रहा है जी, मेरी तो बुद्धि गुम हो गई है।
1: अरे बुद्धि फिर जगा लेना भाई, अभी मेरे पेट के दर्द से तो मुक्ति दिलाओ मुझे, बम के गोले फूट रहे हैं इसमें।
4: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठहरो बस एक मिनट में लाती हूँ।
1: अरे कोई किसी का नहीं होता दुनिया में, सब मतलब के यार हैं। इतना मनाया साले ब्राह्मण को, मस्का लगाया कि भाई मेरा ख्याल रखना, मगर तर माल देखकर आपा खो बैठता है। 24 घंटे ठूसने पर तो ये हाल है इसका, ऐसे टूटता है जैसे 7 जन्म का भूखा हो। और भुगतना मुझे पड़ता है।
4: क्या बड़बड़ कर रहे हो जी, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? ये लो गरम पानी और ये पकड़ो अजवाइन, थाक कर पानी पी लो जल्दी से, अभी आराम हो जाएगा ना।
1: गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई है पेट, अभी गल जाएगा सब माल।
4: क्या गल जाएगा?
1: माल?
4: कौन सा माल छुपा रखा है तुमने अपने पेट में? सुनो एक काम करो, डॉक्टर को दिखा दो ना, समझ में तो आए कि रोग क्या है।
1: डॉक्टर? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं।
4: क्या डॉक्टर नहीं की रट लगा रहे हो? तुम तो ऐसे हड़बड़ाए हुए हो जैसे किसी हराम के पेट का मामला हो जो डॉक्टर के पास जाते ही खुल जाएगा।
1: अरे अरे आपको क्या बताएं श्रीमती जी, मुझ पर जो गुजर रही है वो मैं ही जानता हूँ। मेरा पेट अब मेरा पेट न रहा, मेरा शरीर अब मेरा शरीर न रहा, सब गड़बड़ भगवान का किया हुआ है।
4: सुनो सुनो सुनो, एक काम करती हूँ, इन दोनों मुस्टंडों को घर से निकाल बाहर करती हूँ। जब से ये दोनों घर में आए हैं ना, तब से गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। तुम खाते कुछ हो नहीं पर वजन बढ़ता जा रहा है तुम्हारा, जैसे हवा से ही पोषक तत्व खींच रहे हो तुम।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा न करना, ऐसा न करना, भगवान का मामला है, सरकारी मामला होता तो थोड़ी चीटिंग वीटिंग भी चल जाती, पर तुम तो जानती हो कि
4: तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमारे पल्ले तो नहीं पड़ती तुम्हारी ये सब बातें, मैं तो चली घर के काम के लिए।
1: पहलवान, अपनी ड्यूटी के साथ दगा कर रहे हो तुम, घर से दौड़ने के बहाने निकलते हो और बागीचे में जाकर आंखें सेकने बैठ जाते हो, सारी रिपोर्ट है मुझे।
5: बिल्कुल गलत है बॉस, भरोसा ना हो तो मेरे साथ आप भी निकला करिए सवेरे सवेरे, खुद ही तसल्ली कर लिया करिए ना, मैं जॉगिंग करता हूँ या तो।
1: चुप चुप रह, चुप रह, ऐसा ही दौड़ने वाला होता मैं तो तुझे क्यों ड्यूटी पर रखता, जानता है ना कि बॉस आलसी है, उठ नहीं सकता सुबह सुबह, उंगली तक हिलाने के पहले 100 बार सोचता है ये, इसीलिए ना मुझे फटके दे रहा है तू, पर मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं, पहले भी कहा था मैंने कि रिजल्ट ओरिएंटेड है तेरा अपॉइंटमेंट, पेट देख रहा है मेरा।
2: हाँ,
1: देख
2: देख रहा हूँ,
1: तेरे आने के बाद वजन 90 किलो की सुई छोड़कर 110 टच कर रहा है, अब तो कमजोर कांटे पर खड़ा होने में भी डर लगता है, साली गाड़ी तक का एवरेज डाउन हो गया अब तो इस बॉडी के कारण।
5: तो मैं क्या कर सकता हूँ बॉस, मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी तो कर रहा हूँ, आपकी बॉडी ही फैट टैंक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
1: ड्यूटी करता है तू, ड्यूटी करता है तू, अरे एक क्लोज सर्किट कैमरा लगा दूं ना तेरे पीछे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब से मैं लगता हूं तेरे साथ, देखता हूं कैसे काम चोरी करता है। चलो उठा डंबल और भांज तेल लगाकर।
5: हाँ हाँ, मैं भी साबित कर दूंगा मैं ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ, अब देखो मेरा कमाल। ध्यान से देखना बॉस।
1: हाँ, बक बक मत कर, काम कर। और ये चल चल चल, अरे और
2: देख लेना बॉस।
1: हाँ हाँ ठीक है,
2: ईमानदार बस बस, थक गए मैं, अब और नहीं, जान
5: निकल गई मेरी।
1: चालू रे नॉन स्टॉप, बहुत तड़ी मारी है अब तक तूने। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करता होता ना तू, तो इतनी जल्दी हवा खराब होती तेरी? 500 के नीचे सांस नहीं लेने दूंगा तुझे।
5: बॉस, मैंने कर रहा आपकी नौकरी। मैंने कर रहा आपकी नौकरी वोकरी, पेट पालने के लिए आया हूँ यहाँ पर, जान देने के लिए नहीं आया। मेरा हिसाब कर दीजिए आप।
1: हिसाब? कैसा हिसाब? वजन बढ़ाने का हिसाब, चर्बी चढ़ाने का हिसाब, अरे जवान इंसान को बुढ़ा बनाने का हिसाब? अरे अपना काम तो दिखा पहले तू।
5: अच्छा, ये ठीक नहीं कर रहे हैं बॉस आप। गरीब का पैसा मारना ठीक बात नहीं।
1: अच्छा,
5: अरे इतना भागा होता ना मैं तो आर्मी में भर्ती हो गया होता, और ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं भाई साहब को सच बताऊंगा, फिर वो ही करेंगे आपका हिसाब।
1: अरे, अरे अरे भाई साहब की धमकी क्यों देता है भाई? देख मेरी कमजोर नस पकड़ लेता है तू, सारी बोल पा गया है तू मेरी। बोल कितने पैसे निकलते हैं तेरे? बोल
5: अब आए ना लाइन पे।
1: बोल,
5: पैसा खाने चले थे मेरा। आज का लेकर ये हो गया 4600। और ये अभी जो डंबल उठाए और ये भांजी और ये तेल लगाकर
1: ठीक। ये पकड़ 1000 के 5 नोट, बचे पैसे तेरे मुंह बंद रखने की फीस है, और अब जान छोड़ मेरी।
5: अरे अभी छोड़े देते हैं बॉस, ये लीजिए। बाय बॉस, थैंक यू।
1: अरे भगवान, मैं थक गया आपके वरदान का बोझ उठाते उठाते। अरे ऐसा तो शाप भी ना मिले किसी को। प्रकट हो प्रभु, और इस संकट से उबारो, मुझे उबारो भगवान।
3: वत्स, तुमने मुझे पुकारा वत्स, अब क्या समस्या है तुम्हारी? भोजन और आराम सब तो मिल रहा है तुम्हें, भला और क्या चाहिए तुम्हें?
1: अरे प्रभु, आप क्या समझो मेरी विपदा, मेरा पेट उठाकर आपने गैर के हवाले कर दिया। अरे हराम का पेट जैसा बुरा इस्तेमाल हो सकता है, वैसा कर रहा है वो बामन देव। खुद तो तरमाल अंटी करता है, और दर्द मुझसे भगवाता है, और पहलवान, अरे चोरी और सीना जोरी दोनों कर रहा है। ये सेहत मुसीबत बन गई है मेरे लिए प्रभु। नहीं प्रभु, नहीं, अब तो अपना वरदान वापस ले लो आप।
3: वापस?
1: हाँ।
3: क्या तुम भगवान का सिस्टम भी इंसानों जैसा समझते हो कि पसंद ना आने पर माल वापस? हमारे यहाँ ट्रायल वर्जन और डेमो का कोई रिवाज नहीं है। हम भगवान हैं, जो देते हैं सो फाइनली देते हैं, और बिका हुआ माल वापस नहीं देते।
1: और फिर तो आप मुझे उठा लो प्रभु, मुझे उठा लो, क्योंकि आपके वरदान ने मेरी जिंदगी जहन्नुम कर रखी है। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी भैया।
3: ये भी नहीं हो सकता वत्स, निर्धारित आयु के पहले तो यमराज भी किसी को नहीं उठा सकते। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भले ना हो, पर रूल ऑफ तो है ही। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसका पालन करते हैं, रूल यानी रूल।
1: कोई एक्सेप्शन निकालिए प्रभु, कोई एक्सेप्शन। आखिर सावित्री के मामले में तो ऐसा किया ही था ना आपने, उससे भी मुश्किल केस है मेरा।
3: तुमने तो धर्म संकट में डाल दिया पुत्र, ऐसी नजीर रख दी मेरे सामने कि कोर्ट कचहरी वाले आदमी हो ना। गलती मेरी ही है, मुझे पहले ही सतर्क रहना चाहिए था तुमसे। खैर, सोचता हूँ कुछ। हाँ, ये हो सकता है।
1: जी जी,
3: तुम बंदा बदल सकते हो
1: क्या?
3: एक काम करता हूँ।
1: हाँ,
3: ब्राह्मण का रोल
6: तुम्हारी पत्नी को दे देता हूँ।
1: अरे ऐसा गजब ना ढाइए प्रभु, ऐसा गजब ना ढाइए प्रभु, वो तो मुझे भूखे ही मार डालेगी। साल भर में आधे दिन तो वो व्रत रखती है, सावन के 16 सोमवार, एकादशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, शिवरात्रि, रामनवमी, नवरात्रि, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, रविवार को फलाहार। मुझे उम्र के पहले उठाना है क्या आपको?
6: तो क्या किसी और को?
1: नहीं नहीं प्रभु, इस मुसीबत से बचाइए। अरे पता चला सांपनाथ से तो बचे और नागनाथ के हत्ते चढ़ गए। दारू वो पिएगा, मुंह से बदबू मेरे आएगी, मटन वो खाएगा, हजामत में ही उतरेगी। नहीं प्रभु नहीं नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है अब। मेरी आजादी लौटा दो प्रभु, मैं अपनी डाइट व वेट खुद ही कंट्रोल कर लूंगा। रहम करो भगवान मुझ पर।
6: तथास्तु तथास्तु।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटक सेहत बनी मुसीबत, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

0: भरा है भूपटल।
1: रही है आंधियां जोर शोर से प्रबल,
0: रही है आंधियां जोर शोर से प्रबल।
2: रही घटा विकल तम भरा है भूपटल, उठ रही है

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए प्रस्तुत।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या। हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
1: अध्वर्यवो यन्नरः कामयाध्वे सृष्टि वहन्तो नशथा तदिन्द्रे गभस्तिपूतं भरत श्रुतायेन्द्राय सोमं यज्यवो जुहोत। हे अध्वर्युगणो, नेता इंद्रदेव को हविष्यान्न प्रदान करके अपनी कामना अनुसार वांछित वस्तुएं प्राप्त करो। उंगलियों से शोधित सोम को यशस्वी इंद्रदेव के निमित्त प्रदान करते हुए आहुतियां दें। अध्वर्यवः कर्तना सृष्टिमस्मै वने निपूतं वन उन्नयध्वम् जुषाणो हस्त्यमभि वावशे व इंद्राय सोमं मदिरं जुहोत। हे अध्वर्युगणो, काष्ठ पात्र में शोधित सोमरस को रखकर इंद्रदेव के समीप पहुंचाओ। वे सोमपाई तुम्हारे हाथ में शोधित सोमरस की इच्छा करते हैं, अतः इंद्रदेव को हर्षित करने वाले सोम की आहुतियां समर्पित करो। अध्वर्यवः पयसोर्ध यथा गोह सोमे भिरीं प्रणता भोजमिंद्रम् वेदाहमस्य निभृतं म एतद्दित्संतं भूयो यजतश्चिकेत। हे अध्वर्युगणो, जिस तरह गाय के थन दूध से भरे रहते हैं, उसी तरह भोज्य पदार्थ प्रदान करने वाले इंद्रदेव को सोम के द्वारा पूर्ण करो। इससे पूज्य इंद्रदेव दाता यजमान को और अधिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इस गोपनीय रहस्य को हम भली भांति जानते हैं। अध्वर्यवो यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा तमूर्दरं न प्रणता यवेनेन्द्रं सोमेभिस्तदपो वो अस्तु। हे अध्वर्युगणो, इंद्रदेव द्युलोक पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्ष में उत्पन्न समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं। जिस प्रकार से जौ आदि अन्न से कोठे भरे जाते हैं, उसी प्रकार उन इंद्रदेव को सोमरस के द्वारा सदैव पूर्ण करते रहो। अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राधः समर्थयस्व बहुते वसव्यम् इंद्र यच्चित्रम् श्रवस्या अनु द्यून् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप महान ऐश्वर्यशाली हैं, अतः श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त हमें धन प्रदान करें। हम सदैव आपके धन को प्राप्त करने की कामना करते हैं। हम इस यज्ञ में पुत्र पौत्रों सहित उत्तम स्तोत्रों का गायन करके आपकी स्तुतियां करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त से वाचन प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
2: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रोताओ, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन सोच को सकारात्मक रखकर हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। मन जैसा सोचता है जीवन वैसा बन जाता है, इसलिए हर विचार में उम्मीद रखें, हर मुस्कान में आत्मविश्वास और हर कदम में आगे बढ़ने का हौसला। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भक्ति संगीत में। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि उस विश्वास का नाम है जो कठिन समय में भी हमें संभाल कर रखता है। जब इंसान अपने कर्म करता हुआ परिणाम प्रभु पर छोड़ देता है तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। यही विश्वास भक्ति को शक्ति बना देता है।

कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें अपनी राह दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में बस इतना विश्वास रखिए कि ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। जो आज कठिन लग रहा है, संभव है वही कल हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाए। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, कर्म करते रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए।

जब मन में उलझन हो, रास्ते कठिन लगे और जीवन की भागदौड़ हमें थका दे, तब प्रभु का स्मरण एक शीतल छांव की तरह मन को सुकून देता है। ईश्वर से जुड़ने के लिए बड़े शब्दों की नहीं, सच्चे भावों की जरूरत होती है। बस आंखें बंद कीजिए और अपने आराध्य को याद कीजिए, मन स्वयं ही शांत होने लगेगा।

और इन्हीं भक्ति रचनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है शहीद बूटा सिंह पर।
2: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
3: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
4: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
3: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
4: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
3: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

समय के निरंतर प्रवाह में तारीखें बीत जाती हैं, पीढ़ियां बदलती जाती हैं, लेकिन बीते समय के गलियारों में उन कदमों की आहट सुनाई देती रहती है जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना, जिनका हर कदम देश के लिए बढ़ा। भारतीय स्वाधीनता इतिहास के गलियारों में ऐसे अनगिनत कदमों की गूंज सुनाई देती है। ये आहट उन नौजवानों की है जिन्होंने गुलामी के अंधेरों के बीच भी आज़ादी के सूरज का स्वप्न देखा, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के भाग्य में स्वाधीनता का सौभाग्य लिखा और अपनी सांसें देश के नाम कर दीं। ऐसे ही एक अमर बलिदानी हैं शहीद बूटा सिंह। अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के लिए देश के भीतर और बाहर कई आंदोलन चलाए गए, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुए गदर आंदोलन का स्थान इन सबसे अलग और अनूठा है। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य विदेशी धरती से भारत में क्रांति की अलख जगाना और ब्रिटिश भारतीय सेना की बैरकों के भीतर तैनात भारतीय सैनिकों के माध्यम से एक व्यापक सैन्य संघर्ष आयोजित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1915 में गदर पार्टी द्वारा बुना गया सैन्य संघर्ष का तानाबाना इतना व्यापक था कि इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी। इस योजना में ब्रिटिश भारतीय सेना की 23वीं कैवलरी के सैनिक भी शामिल थे। इसी रेजिमेंट के घुड़सवार सैनिक थे बूटा सिंह। बूटा सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के कसैल नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंचल सिंह था। कसैल और उसके आसपास का क्षेत्र शुरू से ही अपनी देशभक्ति और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता था। खेती किसानी के बीच ऐसे ही वातावरण में उनकी परवरिश हुई। इस तरह बूटा सिंह को बचपन से ही धार्मिक संस्कार, ईमानदारी और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा अपने परिवार से विरासत में मिली।

बूटा सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उस समय पंजाब में ग्रामीण युवा आजीविका के लिए अक्सर सेना में भर्ती हुआ करते थे। बूटा सिंह शारीरिक रूप से बलिष्ठ, अनुशासित और अत्यंत साहसी थे, इसलिए युवावस्था में प्रवेश करते ही वो ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए। अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर बूटा सिंह 23वीं कैवलरी में एक सैनिक के रूप में नियुक्त हो गए। 23वीं कैवलरी ब्रिटिश भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी थी, जिसे एक प्रसिद्ध घुड़सवार रेजिमेंट के रूप में जाना जाता था। इस रेजिमेंट में पंजाब के वीर जवानों की बड़ी संख्या थी। एक सैनिक के रूप में बूटा सिंह अत्यंत अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और अपने साथी सैनिकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे, लेकिन वर्दी पहनने के बावजूद उनके सीने में भारत माता की गुलामी की टीस हमेशा बनी रहती थी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय और एशियाई मोर्चों पर अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसी समय पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों के शोषण और उनकी दमनकारी नीतियों के कारण असंतोष अपने चरम पर था। इन परिस्थितियों ने बूटा सिंह जैसे संवेदनशील सैनिकों के मन को झकझोर कर रख दिया था। विदेशों में रह रहे प्रवासी क्रांतिकारी भी उद्वेलित थे। परिणाम स्वरूप बाबा सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी गदर पार्टी के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दे रहे थे। गदर पार्टी का स्पष्ट मानना था कि जब तक ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक अंग्रेजों का साथ देना बंद नहीं करेंगे और जब तक अपनी बंदूकें अंग्रेजों की तरफ नहीं मोड़ देंगे, तब तक भारत की आज़ादी संभव नहीं है। इसी रणनीति के तहत गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारियों ने विभिन्न सैनिक छावनियों जैसे लाहौर, फिरोजपुर, मेरठ और नौगांव में तैनात भारतीय सैनिकों से गुप्त रूप से संपर्क साधना शुरू किया। क्रांतिकारी प्रेम सिंह गदर पार्टी के संगठनकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात 23वीं कैवलरी के सैनिकों से संपर्क स्थापित किया। प्रेम सिंह ने सैनिकों को गदर पार्टी के उद्देश्यों और अंग्रेजों की नीतियों के दुष्परिणामों से अवगत कराया। बूटा सिंह और उनके साथी सैनिकों के लिए ये एक निर्णायक मोड़ था। प्रेम सिंह के विचारों ने बूटा सिंह के भीतर देशभक्ति की ज्वाला को और अधिक प्रचंड कर दिया। उन्होंने अपनी आजीविका, भविष्य की सुरक्षा और जीवन की परवाह न करते हुए गदर आंदोलन से जुड़ने का संकल्प लिया। बूटा सिंह ने न केवल खुद को इस महायज्ञ से जोड़ा, बल्कि 23वीं कैवलरी के अपने अन्य साथी सैनिकों को भी इस गुप्त सैन्य संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह 23वीं कैवलरी की नौगांव में तैनात टुकड़ी यूं तो बाहरी तौर पर अंग्रेजों की सेना नजर आ रही थी, लेकिन बूटा सिंह और उनके अनेक साथी जवान अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का शंखनाद करने को तैयार हो चुके थे।

बूटा सिंह गदर आंदोलन से जुड़ चुके थे। अपने साथी सैनिकों के साथ वो गुप्त क्रांति गतिविधियों में सघन रूप से सक्रिय थे। इसी बीच गदर पार्टी ने 21 फरवरी सन 1915 को पूरे देश में सैन्य संघर्ष की योजना बनाई। योजना ये थी कि देश भर की विभिन्न छावनियों में भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसरों को बंदी बना लेंगे या मार गिराएंगे तथा शस्त्रागारों पर कब्जा कर लेंगे और गदर पार्टी का झंडा लहराकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। इस व्यापक योजना हेतु सभी सैन्य छावनियों से संपर्क किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की नौगांव छावनी भी शामिल थी, जिसमें बूटा सिंह तैनात थे। इस विद्रोह को लेकर सैनिकों में बड़ा उत्साह था और तैयारी भी मजबूत थी। लेकिन किरपाल सिंह नामक एक गद्दार ने अंग्रेजों तक ये सूचना पहले ही पहुंचा दी और समय से पहले ही इस योजना का खुलासा हो गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की और कई प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए। विद्रोह की योजना के उजागर हो जाने के बाद भी 23वीं कैवलरी के सैनिकों, विशेष रूप से बूटा सिंह का हौसला टूटा नहीं था। वो छावनी के भीतर रहकर सही समय का इंतजार करने लगे और गुप्त रूप से अपने पास विस्फोटक और हथियार इकट्ठा करते रहे। इस योजना की विफलता के बाद ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को लगने लगा था कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा था नहीं। मई सन 1915 में 23वीं कैवलरी की टुकड़ी को, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात थी, उसे यहां से हटाकर युद्ध के मोर्चे पर भेजने का फैसला किया गया। सैनिकों को रेलगाड़ी से रवाना किया गया। 13 मई सन 1915 की तारीख थी। सैनिकों को ले जा रही ट्रेन हरपालपुर स्टेशन पर रुकी। सैनिक अपना सामान ट्रेन के डिब्बे में व्यवस्थित कर रहे थे कि अचानक एक बक्सा नीचे गिर पड़ा। इस बक्से में गुप्त रूप से रखी गई विस्फोटक सामग्री, बम और हथियार रखे हुए थे। बक्सा गिरते ही रेलवे स्टेशन में प्रचंड विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जब पूरे सामान की तलाशी ली गई तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। बक्से के भीतर से बम बनाने की सामग्री और हथियार तो मिले ही, गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी साहित्य, पर्चे और गुप्त योजना के दस्तावेज भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के हरपालपुर स्टेशन का ये विस्फोट ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। इस घटना से अंग्रेज ये समझ गए थे कि ये सैनिक सामान्य सैनिक नहीं हैं, बल्कि ये गदर पार्टी के उस गुप्त संगठन का हिस्सा हैं जो ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए सेना के भीतर काम कर रहा था। अंग्रेजों ने हरपालपुर स्टेशन और नौगांव छावनी को घेर लिया। गहन जांच शुरू हुई और संदेह तथा साक्ष्यों के आधार पर 18 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों में बूटा सिंह मुख्य रूप से शामिल थे, क्योंकि वो छावनी में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। इन 18 सैनिकों के विरुद्ध शिमला के पास स्थित डगशाई सैन्य छावनी में कोर्ट मार्शल किया गया और एक तरफा फैसला सुना दिया गया। 12 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई और शेष सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। मृत्युदंड पाने वाले 12 सैनिकों में बूटा सिंह का नाम प्रमुखता से शामिल था। बूटा सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को अंबाला सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। 3 सितंबर सन 1915 को बूटा सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सबसे मार्मिक तथ्य ये है कि उनके परिवार के सदस्यों को उनकी फांसी की सूचना तक नहीं दी गई। इस तरह भारत माता के एक सच्चे सपूत ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज सुनिए कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है कान्हा की बाल लीलाएं।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम बाल सभा। अब नाम ही बाल सभा है तो फिर बाल सभा में बातें भी तो वही होनी चाहिए जो आपके मन को भाएं। तो आज हम आपको एक ऐसे बाल सखा से मिलवा रहे हैं जो आपकी हर उम्र में, जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर आपके बुजुर्ग हो जाने तक, हमेशा हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। उनकी कही बातें, उनकी लीलाएं, उनका दिया गया ज्ञान हम सबको पल पल पर ध्यान भी आता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे आज। क्योंकि नन्हे से कृष्ण सिर पर मोर पंख, हाथ में मुरली, पैरों में छोटी छोटी पायल, गले में वैजंती माला और चेहरे पर ऐसी प्यारी सी मुस्कान कि जिसे देखकर यशोदा मैया भी अपनी सारी नाराजगी भूल जाती थी। इसीलिए तो कान्हा कैसे कैसे प्रश्न कर लेते थे, याद है आपको? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। अब बताइए, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कभी किसी से? लेकिन जो बाल कान्हा हैं वो कुछ भी पूछ लेते थे अपनी मैया से। कभी माखन की मटकी के पीछे भागते कान्हा, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते कान्हा, कभी जमुना जी के किनारे गायों के बीच घूमते कान्हा, तो कभी अपनी मुरली की धुन से पूरे वृंदावन को मोहित करने वाले कान्हा। और इसलिए ही तो आज मैं आपको ऐसी ही कान्हा की बाल लीलाएं बता बता के उनकी शरारतों में छुपे प्रेम को सुनाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि कैसे हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक हैं ये सारी लीलाएं। आज हम ज़रूर कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी हम सबको उनका दिया ज्ञान कैसे कैसे अपने साथ समाहित कर लेता है। अब देखिए, कृष्ण जी का जन्म तो अंधकार में ही हुआ था, कहानी यहीं से शुरू होती है। भगवान विष्णु ने देवकी को सूचित किया कि वो शीघ्र ही आठवीं संतान के रूप में उनकी कोख से जन्म लेने वाले हैं। वे वासुदेव से बोले, मेरे जन्म लेते ही आप मुझे लेकर अपने मित्र गोकुलवासी नंद बाबा के घर जाएं। वहां उनकी पत्नी यशोदा एक बालिका को जन्म दे चुकी होंगी, मुझे उन्हें सौंपकर आप उनकी नवजात बालिका को ले आएं तथा माता देवकी की गोद में डाल दें, किसी प्रकार का भय ना करें। ऐसा कह विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अर्धरात्रि के समय देवकी ने बालक को जन्म दिया। बालक रोया नहीं। वासुदेव ने नवजात शिशु के लिए कंस द्वारा रखवाई गई टोकरी में बालक को रखा, फिर कई पल तक वात्सल्य भरे सजल नेत्रों से अपलक उसे निहारते रहे। तभी वासुदेव के मस्तिष्क में प्रश्न कौंधा, जंजीरों से बंधा एक कैदी नवजात शिशु को कैसे सुरक्षित गोकुल पहुंचा सकता है? इसका उत्तर तुरंत मिला। उनकी जंजीरें खुलकर नीचे गिर पड़ी। वासुदेव समझ गए कि ईश्वर की लीला शुरू हो चुकी है। बस फिर क्या था, उन्होंने टोकरी उठाई और बाहर की ओर चल दिए। कारागार का द्वार खुला और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी के मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो चुकी थीं। बस यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की लीला। कितनी कठिन परिस्थिति थी और वही आधी रात का समय, चारों तरफ घोर अंधकार, लेकिन उसी अंधकार के बीच जब जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, तो कितनी अद्भुत रात होगी वो। उसके बाद यमुना जी ने कैसे चरण पखारे हैं, आप सुनकर देखिए। बाहर बादल अभी गरज ही रहे थे, बिजलियां कड़क रही थीं, मूसलाधार बरसात होने लगी, पर वासुदेव निर्भय निर्विरोध आगे बढ़ते रहे। इस बात से अनभिज्ञ कि भगवान विष्णु के 1000 फनों वाले सेवक शेषनाग उनके ऊपर अपने फनों का विशाल छत्र ताने अदृश्य रूप से साथ साथ चल रहे हैं। यमुना तट पर जाकर वासुदेव ठिठके, लहरें उफन रही थीं, गोकुल यमुना नदी के उस पार था। वासुदेव भगवान का नाम लेकर लहरों में उतर गए। अचानक लहरें ऐसे ऊपर उठीं जैसे वासुदेव को टोकरी समेत लील जाना चाहती हों। शिशु कृष्ण ने यमुना की इच्छा को जानकर अपने पांव नीचे लटका दिए। यमुना चरणों को स्पर्श कर शांत हो गई। चमत्कारिक रूप से वासुदेव के लिए एक शुष्क धरातल वाला गलियारा बन गया। वासुदेव तेजी से आगे बढ़ने लगे। देखिए किस तरह से पवित्र नदी यमुना भी कृष्ण जी के पांव पखार कर शांत हो गई। कैसी है अद्भुत कृष्ण लीला। इसीलिए कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी गहरा हो बच्चों, प्रकाश आने की संभावना कभी खत्म नहीं होती। यहीं से हमें प्रभु श्री कृष्ण सीख देते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब आगे पहुंचे, अब गोकुल पहुंचे पालनहार। गोकुल की गलियां सुनसान थी। नंद बाबा के घर पहुंचकर वासुदेव ने द्वार खटखटाए, द्वार तुरंत खुल गए। मानो नंद बाबा द्वार के पीछे इसी प्रतीक्षा में तो खड़े हों कि कब वासुदेव आए और वे द्वार खोले। नंद बाबा अपने मित्र को देखकर आश्चर्य से बोले, मित्र वासुदेव, तुम यहां इस समय? तुम तो कंस के कारागार में थे। वासुदेव ने उनकी बात काटते हुए कहा, प्रिय मित्र, इस टोकरी में देवकी की 8वीं संतान है। पापी कंस का काल है। भगवान विष्णु की आज्ञा से इसे मैं तुम्हें सौंपने आया हूँ। अपनी सुरक्षा के साए में तुम इसे पालो। भगवान की यह भी आज्ञा है कि इसके बदले अपनी नवजात कन्या तुम मुझे दे दो। नंद बाबा मुस्कुराए, मैं समझ गया मित्र, जरा प्रतीक्षा करो। उन्होंने टोकरी से नवजात शिशु को उठाया और भीतर गए, जहां पलंग पर उनकी पत्नी यशोदा अपनी नवजात बालिका के साथ सो रही थीं। नंद बाबा ने वासुदेव के बालक को यशोदा के बगल में लिटाकर अपनी बालिका को वासुदेव की टोकरी में रख दिया। दोनों मित्र केवल एक दूसरे को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते रहे। वासुदेव ने बालिका को टोकरी से उठाकर देवकी की गोद में रख दिया। देख रहे हैं आप कैसे यशोदा मैया के आंगन में आ गए, कैसे गोकुल की गलियों को हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने ठिठोलियां करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन गलियों में दौड़ते हुए नन्हे कान्हा, कभी घुटनों के बल चलते, कभी अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश करते, कभी ऐसी शरारत करते कि बस पूरा घर उनके पीछे दौड़ता रहता। कल्पना कीजिए कि मैया ने घर में माखन रखा है और कान्हा की नजर उस माखन पर पड़ गई। अब कान्हा सोच रहे हैं कि इसे कैसे पाया जाए, मटकी इतनी ऊपर है, अकेले कैसे पहुंचेंगे। तो कान्हा अपने दोस्तों को बुलाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर माखन की मटकी तक पहुंचते हैं। और माखन मिल गया तो सिर्फ खुद तोड़ी खाएंगे, अपने दोस्तों को भी तो खिलाएंगे। और यहीं से कान्हा की शरारत में छिपी खूबसूरती है कि उनकी खुशी अकेले की खुशी नहीं है बच्चों। ये है हमारा आज का दूसरा ज्ञान कि कान्हा ने कभी किसी भी चीज का उत्सव अकेले नहीं मनाया, माखन मिला तो बांट के खाया और जब मटकी फूटी तब डांट भी मिल बांट कर खाई। तो बच्चों जो भी करना है मिल बांट कर करना है, खुश होना है तब भी, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तब भी सबके साथ शेयर करनी है। तो बस ये जो शरारत है ना, कई बार आपने सुना होगा माखन चोर कहते हैं कृष्ण को, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कृष्ण की माखन चोरी की कहानी हमें क्या सिखाती है? इन छोटी छोटी शरारतों में वो कितने लोगों से एक साथ जुड़ते हैं, कितने लोगों के बाल कान्हा बन जाते हैं, वो अपनी इन बाल सुलभ चेष्टाओं से कितने लोगों का दिल हर लेते हैं कान्हा, है ना। इसीलिए तो कृष्ण का गोकुल हमें बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी रिश्तों में है, तो रिश्ते बनाइए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह कान्हा ने अपनी छोटी छोटी सी बाल लीलाओं से कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। तो अब आते हैं पूतना वध पर। कंस को ये विश्वास हो गया था कि उनके विरुद्ध कोई दैवीय षड्यंत्र रचा गया है, तभी तो देवकी की आठवीं संतान को किसी और के गर्भ में भेज दिया गया। इसलिए अपने काल को समाप्त करने के लिए कंस ने भयानक राक्षसी को बुलाकर आज्ञा दी, पूतना मथुरा या उसके आसपास के क्षेत्र में सावन माह में किसी स्त्री ने मेरे काल रूप को जन्म दिया है, तुम इस समूचे क्षेत्र में सावन में जन्मे बच्चों को समाप्त कर दो। फिर क्या था, पूतना ने विष का लेप किया और गोकुल जा पहुंची। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धर के नंद बाबा के घर गई और अन्य स्त्रियों की भांति कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दुलारने लगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया अंदर गई, पूतना ने अवसर ताड़कर कृष्ण जी को अपना दूध पिलाना चाहा, लेकिन फिर क्या था, बाल कान्हा ने उनके प्राण ही खींच लिए और मायावी पूतना मृत होकर जमीन पर आ गिरी। देखा आपने किस इरादे से भेजा गया था पूतना को कंस के द्वारा, लेकिन बच्चों यहीं से बाल कान्हा की छोटी छोटी सी दैवीय शक्तियों से लोग ताकते रह गए कि ये क्या है। पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा के आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। इसके बाद क्या था, पूतना की मृत्यु ने कंस के सभी संदेह मिटा दिए, सिद्ध हो गया कि नंद बाबा का बालक कृष्ण ही उनका काल है। इसलिए इस बार कृष्ण को मारने के लिए बच्चों कंस ने तृणावर्त नामक मायाधारी राक्षस को भेजा। उसने क्या किया पता है, वो वायु का झोंका बनकर गोकुल पहुंचा। उस समय कृष्ण को गोद में लिए यशोदा घर के बाहर बैठी हुई थी। तृणावर्त की माया से यशोदा को एकाएक कृष्ण का भार बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अचानक होने वाले इस बदलाव को देखकर वो घबरा गईं और उन्हें पालने में लिटाकर नंद बाबा को बुलाने भीतर भागी। इसी बीच अवसर पाकर तृणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया, अपने कंधे पर बैठाकर बवंडर बनकर आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंच तृणावर्त ने बालक कृष्ण को मारने के लिए अपने शरीर को खूब झटके दिए, टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन कृष्ण तो जोंक की तरह उसकी गर्दन से चिपक गए और बाज के पंजों की तरह उनकी उंगलियां दुष्ट राक्षस की गर्दन में गढ़ती जा रही थी। तृणावर्त उनके बोझ तले दबकर धड़ाम से धरती पर आ गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब माता यशोदा, नंद बाबा और दूसरे ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो उन्होंने बालक कृष्ण को पर्वताकार दानव के मृत शरीर के पास अपना अंगूठा चूसते देखा। सुना बच्चों, कैसे छोटे से नन्हे से बालक बनकर कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटा दी और इसके बाद फिर धीरे धीरे लीलाएं और चमत्कारों का क्रम आगे बढ़ता गया। एक दिन माँ यशोदा ने बालक कृष्ण को मिट्टी फांकते हुए देखा, चिल्लाती हुई कृष्ण की ओर दौड़ी और आकर उनके कान पकड़ लिए। कृष्ण ने सिर हिलाकर मिट्टी खाने के आरोप को नकार दिया। यशोदा ने बालक को मुंह खोलने पर मजबूर किया ताकि वो उंगली से मिट्टी बाहर निकाल सकें। नन्हे कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा ठगी रह गई। कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का विहंगम दृश्य नजर आ रहा था। वात्सल्य और भक्ति से विभोर होकर यशोदा ने कृष्ण को अपने अंक में भर लिया। ऐसे ही एक दिन फल बेचने वाले की पुकार सुनकर बालक कृष्ण फल खरीदने मुट्ठी भर चावल लेकर बाहर की ओर दौड़े। जब फल वाली तक पहुंचे तब सारे चावल उंगलियों के बीच से होकर दाना दाना गिर गए। फल वाली ने बालक के भोलेपन पर न्योछावर होकर काफी सारे फल वैसे ही दे दिए। फल वाली जब घर पहुंची तो अपनी टोकरी देखकर विस्मित रह गई। टोकरी में उसके बचे फल मूल्यवान रत्नों की ढेरियों में परिवर्तित हो गए थे। तो बच्चों, ये कान्हा की बाल लीलाएं आखिर मैं आपको सुना क्यों रही हूं? पहले तो ये बताइए कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, गीत गोविंद सुनती हूँ और फिर मैं बहुत सुंदर सुंदर पद सुनती हूँ जो कान्हा के लिए लिखे गए हैं, मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चे को कान्हा की बाल लीलाएं जाननी चाहिए। बच्चों, जब उन्हें सुनो तो जीवन का मार्ग दिखाई देता है, जब उनके बारे में पढ़ो तो जीवन की कठिनाइयां ऐसे लगती हैं जैसे वो दानव थे ना। आते तो थे कभी बवंडर का रूप लेकर, कभी मायावी राक्षस तरह तरह की माया रच कर आते थे, लेकिन कृष्ण के सामने बहुत बोने नजर आते थे। तो ऐसे कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस रूप में कृष्ण को देखते हैं वो आपको उसी रूप में नजर आते हैं। कभी वो द्रौपदी का चीर बन जाते हैं, कभी वो पूतना को जमीन पर गिराने वाला बालक बनकर अपनी ताकत दिखाते हैं। ऐसे कान्हा की कहानी मैं आपको सुनाकर आज सच मायने में बच्चों खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य ही तो है जब आप जैसे नन्हे मुन्हे अगर रेडियो कान से लगाए सुनना चाह रहे हैं कि कुछ और कहानियां बताइए। आ रही है ना आपके मन में ये बात? तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको और बहुत सारी कहानियां सुनाने का दिल कर रहा है, लेकिन समय की ये थोड़ी सी मांग है कि आज थोड़ी कम कहानियां सुनाओ, अगली बार थोड़ी और सुना देना। तो मैंने सोचा है कि ये कान्हा की बाल लीलाएं ना बच्चों अगली बाल सभा में भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन अभी एक बात और बता देती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि माँ यशोदा का ध्यान आकर्षित करने के लिए ना कृष्ण हर तिकड़म का सहारा लेते थे। एक दिन यशोदा माँ दही बिलो रही थी तो कृष्ण ने दूध पीने के लिए रो रो कर घर सिर पर उठा लिया। उसके बाद क्या था, यशोदा अपनी गोदी में बिठाकर दही बिलोते हुए दूध पिलाना पड़ा। तभी यशोदा को याद आया कि रसोई में वो चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रख आई हैं। बदहवासी में वो कृष्ण जी को वहीं छोड़कर भीतर भागी। बालक कृष्ण को अपनी उपेक्षा पर अत्यंत क्रोध आया और बालक कृष्ण ने दही वाला घड़ा मथनी मारकर फोड़ दिया। सारा दही फर्श पर फैल गया। अब कृष्ण ने उस कोठरी की ओर कदम बढ़ाए जहाँ छत से लटकते घड़ों में मक्खन रखा था। नटखट बालक ने वहां रखी बड़ी सी ओखली पर चढ़कर कुछ घड़े नीचे पटक दिए। घड़े गिरने की आवाज सुनकर कुछ बंदर और नन्हे कान्हा के दोस्त कूद कर अंदर आ गए और माखन की दावत उड़ाने लगे।
4: कृष्ण स्वयं एक घड़ा लेकर ओखली पर बैठ मुट्ठी भर भर कर माखन फाटने लगे। आधा मक्खन मुंह में जा रहा था और आधा शरीर पर और आधा कपड़ों पर। जब यशोदा मैया बाहर आई तो सारी दही फर्श पर फैली देखकर सन्न रह गई। उन्हें कृष्ण के दही में लिथड़े नन्हे पैरों के निशान दिखे तो मक्खन की कोठरी की ओर गए थे। वो बस दौड़कर कोठरी के द्वार पर पहुंची और वहां उड़ रही मक्खन की दावत का नजारा देखकर संयम खो बैठी और क्रोधित स्वर में कृष्ण पर चीखी। माता यशोदा का तमतमाया मुखड़ा देखकर कृष्ण को आभास हो गया कि आज खैर नहीं। कृष्ण ओखली पर से कूदकर खिड़की से बाहर भागे। एक डंडा लेकर यशोदा मैया भी पीछे पीछे दौड़ी और माँ बेटे की दौड़ कमरों बरामदों आंगन को नापती हुई काफी देर तक जारी रही। अंत में यशोदा ने जब कृष्ण को पकड़ लिया तो नटखट ने ऐसा प्यारा सा मुखड़ा बनाया और रोना शुरू कर दिया कि यशोदा माँ भी नरम पड़ गई। बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें नहीं दंड दूंगी, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा दंड तो दूंगी। तो यशोदा ने कृष्ण को कुछ समय के लिए उसी बड़ी ओखल से बांधने का प्रयास किया, पर रस्सी जरा छोटी पड़ गई। यशोदा ने और रस्सी जोड़ी, वो भी छोटी रह गई। कई रस्सियां जोड़ी, पर हर बार रस्सी जो थी वो रहस्यमय ढंग से छोटी पड़ती रही। अंत में हताश होकर यशोदा रो पड़ी और बोली कि अरे दुष्ट, क्यों सताता है, क्या मिलता है मुझे सताकर। तब कृष्ण को यशोदा माँ पे तरस आया और वो स्वयं स्नेह पाश में बंध गए। अब आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जब नटखट बालक के रूप में आते हैं तो माँ की डांट खाते हैं। तो आप जैसे बच्चे मुझे कभी कभी मिलने पर जब ये बताते हैं कि मम्मी डांटती बहुत है, तो उन सब बच्चों के लिए आज मुझे ये कहना है कि देखिए ना, कान्हा भी तो जब बचपन में बच्चा बनकर आए थे तो माँ यशोदा की कितनी डांट खाई थी। और तो और, प्रभु श्री कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता, वो माता यशोदा ही थी जिन्होंने उन्हें स्नेह पाश में बांध लिया। तो ऐसी ऐसी बाल लीलाओं को जबकि मैं आपको सुना रही हूँ और फिर घड़ी भी देख रही हूँ तो लग रहा है कि आज थोड़ी और बात करनी चाहिए थी, पर नहीं, आज इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतनी सारी मैंने आपको बाल लीलाएं सुनाई हैं। और यकीन मानिए बच्चों, मैं यहाँ अभी ख़त्म नहीं करूँगी। मैं बाल सभा में जब अगली बार आपसे मिलूँगी तो थोड़ी और कृष्ण लीलाएँ बताऊँगी। इसलिए बच्चों, क्योंकि हमें कृष्ण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें हर दिन कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ों का सम्मान, दोस्तों की दोस्ती का मान और दुनिया में जो लोग राक्षस समान हैं, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई गंदी आदत भी हो सकती है, क्योंकि अब तो राक्षस होते नहीं, तो आपकी गंदी आदतें, आपका आलस, आपका बिल्कुल भी डिसिप्लिन में ना होना, ये सब क्या बोलते हैं इनको, राक्षसी प्रवृत्तियां, है ना। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जब बच्चे देर से उठते हैं तो क्या बेटा तुम्हारे अंदर बहुत राक्षसी प्रवृत्ति आ रही है। तो ये प्रवृत्तियां ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा इंसान बना देती हैं। एक दिन मैंने आपको एक कविता सुनाई थी कि बूंदों का आखिर क्या था दोष, एक बूंद सीप पर गिरेगी और मोती बन जाएगी, दूसरी बूंद नाली में गिरेगी और कीचड़ कहलाएगी। तो बच्चों, आज की ये कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी संगत का भी ख्याल रखिएगा, और अगर आपको बाल लीलाएं और सुननी है तो अगले हफ्ते तक मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते चलते वो समय आ गया है जब हम और आप छोटे छोटे से कुछ संकल्प लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, ये जो मुरली की धुन बज रही है इसमें शांति से बैठने का प्रयास कीजिए। कृष्ण को समझने के लिए बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है बच्चों, कभी कभी उन्हें समझने के लिए हमें आप जैसा बच्चा बनना पड़ता है। तो बस आज इस बाल सभा में पहला संकल्प यही है कि थोड़ा थोड़ा पूरे दिन मुस्कुराएंगे। आज पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेलेंगे भी, किसी दोस्त को गले लगाएंगे, माता पिता का बहुत सम्मान करेंगे और हां प्रकृति के करीब जरूर जाएंगे, क्योंकि कान्हा कभी गैया को चराने के बहाने, कभी गोपियों को छेड़ने के बहाने, कभी पेड़ पर बांसुरी बजाने के बहाने प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। और ये स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मैं वृक्षों की बात करूं तो वृक्ष में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बहुत ख्याल रखेंगे। तो आप इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ आज बाल सभा को समाप्त करें। उससे पहले आप सब आंखें खोल लीजिए, अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से आंख पर लगाइए और इसी मुरली की धुन पर शांति से अब मुझे यानी अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए। ठीक है बच्चों, अगली बार बाल सभा में फिर ऐसी ही बातें लेकर जल्द ही मुलाकात होगी। चलूं अभी, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा स्नेह। बच्चों मिलते हैं अगली बार बाल सभा में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय था कान्हा की बाल लीलाएं। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंधानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल, देश के लिए।
3: बाल सभा।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद दादी, नमस्कार।
2: आज रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं, संक्षिप्त तौर पे अगर बात करना चाहें तो किस आयु से बच्चे तैयारी कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेज में आने की, किस तरह की तैयारी कर सकते हैं?
3: अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी तो हम घर में बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पे सबसे अच्छे तो माता पिता ही कर सकते हैं, पर अगर एक प्रशिक्षण की बात करें तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक स्कूल्स होते हैं जिनको हम सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं। ये जो सैनिक स्कूल्स होते हैं, ये बच्चों को खासकर जो है मेंटली एंड फिजिकली डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए तैयार करते हैं। इसमें जो है बच्चों का एडमिशन जो है 6th क्लास से होता है, और इस समय जो है हमारे देश में ऐसे 33 सैनिक स्कूल्स हैं, और युवाओं में जो एक जोश है, उत्साह है, उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि 100 और नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। ये जो सैनिक स्कूल हैं, ये एक अलग कैटेगरी है, इसमें 18 स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो सैनिक स्कूल हैं, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और स्टेट गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर होता है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है फंड्स देता है और सर्विंग ऑफिसर्स प्रोवाइड करता है ये सैनिक स्कूल में, जो कि अपॉइंटमेंट्स में होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपना लैंड यानी कि ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ प्रोवाइड करता है। सैनिक स्कूल्स जो होते हैं वो CBSE का करिकुलम फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ कैसे आर्मी में ज्वाइन करना है उसी के लिए बच्चों को फिजिकली और मेंटली तैयार करते हैं। तो जिस तरह से एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए, उसके लिए उनको शुरू से जो है वो प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका एडमिशन जो है क्लास 6th में जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होता है, एंड क्लास 9th में जो है बॉयज़ के लिए होता है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और रेजिडेंशल्स होते हैं, मतलब कि ये इसमें जो है बोर्डिंग होता है, सब लोग बच्चे वहीं रह के पढ़ाई करते हैं। सारे के सारे सैनिक स्कूल में जो ये बच्चे पढ़ते हैं, ये NCC जूनियर विंग में ज्वाइन करते हैं, और इनके सबके पास NCC B सर्टिफिकेट होता है जब ये वहाँ से पास आउट होते हैं। अगर हम एडमिशन की बात करें तो इनका जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। जैसे मैंने बताया कि 33 सैनिक स्कूल जो हैं वो पुराने हैं, जिसमें कि बच्चों को क्लास 6 और क्लास 9 में लिया जाता है, और ये जो नए 18 सैनिक स्कूल जो अप्रूव हुए हैं फिलहाल सिर्फ क्लास 6 से बच्चों को वो ले रहे हैं। ये जो नए वाले स्कूल्स हैं इनका जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स हैं उसमें पार्टनरशिप करके जो है ये स्कूल्स को सैनिक स्कूल्स के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक नई स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है। लेकिन जो दोनों कैटेगरी के स्कूल हैं यानी कि पुराने वाले जो थे और ये जो नए स्कूल्स हैं ये सभी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं, और जो इनका एडमिशन है वो रिटन टेस्ट के ऊपर बेस होता है, और रिटन टेस्ट के बाद काउंसलिंग, मेडिकल फिटनेस, इन सब के पश्चात जो है मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें कि सिलेक्शन के बाद जो है बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसका जो एज है यानी कि उम्र जो है वो 10 और 12 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 10 साल से बच्चे को बड़ा होना चाहिए और 12 साल से कम होना चाहिए क्लास 6 के एडमिशन के लिए। ये जो कट ऑफ डेट इसकी उम्र की मानी जाती है वो 31 मार्च मानी जाती है जिस साल में वो सेशन शुरू हो रहा है। तो उनकी उम्र 31 मार्च को 12 साल से कम होनी चाहिए और 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से जो क्लास 9th में जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनकी एज जो है 13 साल और 15 साल के बीच में होनी चाहिए। जो लड़कियों का एडमिशन होता है वो क्लास 6th में है, और 9th में जो एडमिशन है वो भी लड़कों के लिए है। इसमें जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑनलाइन सबमिशन जो है अक्टूबर में शुरू हो जाता है, दिसंबर और जनवरी में जो है इसका एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जो हमारे 33 सैनिक स्कूल्स हैं अगर उनमें देखते हैं तो तकरीबन 2600 बॉयज की वैकेंसीज आती हैं और 325 से 350 जो है गर्ल्स की वैकेंसीज हैं, जो कि क्लास 6 के लिए है। क्लास 9th में जो वैकेंसीज होती हैं वो फिक्स नहीं है, वो वहाँ पे जितनी उस समय वैकेंसीज अवेलेबल हैं उसके ऊपर ही उनको लिया जाता है। इसमें जो है सीट्स का रिजर्वेशन भी होता है, देन डिफेंस सर्विस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन और स्टेट डोमिसाइल, ये अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं जिसके द्वारा बच्चों का इसमें जो है रिजर्वेशन कोटा भी होता है।
2: इसके अलावा और कुछ विवरण है जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
3: सैनिक स्कूल के अलावा हमारे देश में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं।
2: जी,
3: ये जो मिलिट्री स्कूल्स हैं ये हिंदुस्तान में मतलब सबसे पुराने पब्लिक स्कूल्स इनको हम कह सकते हैं
2: जी।
3: और इनकी स्थापना जो है मतलब 1925 में हुई थी। तो 5 जो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं वो एक जैल में है डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में, 2 जो है राजस्थान में है अजमेर और धौलपुर में, और 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है बेलगांव और बैंगलोर कर्नाटका में है। ये स्कूल्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं
2: जी।
3: इसमें भी जो है देखिए बेसिक एम यही है कि बच्चों को NDA और दूसरे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए तैयार करना, और इसमें भी एडमिशन जो होता है बच्चों का वो क्लास 6 और क्लास 9 में होता है, और उसके लिए जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि दिसंबर के महीने में कंडक्ट किया जाता है। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है
2: जी।
3: ये रिटन टेस्ट में होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है और मेडिकल फिटनेस कंडक्ट करी जाती है। देन उसके बाद जैसे कि प्रोसीजर होता है कि मेरिट बनती है, मेरिट के बाद जो है बच्चों का एडमिशन इसमें होता है। अगेन इसमें जो बच्चों की एज होती है वो 6ठी कक्षा में जाने के लिए एलिजिबिलिटी है कि 10 और 11 के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए, और जो 9th में जो बच्चे जाते हैं उनकी 13 से 14 के बीच में उम्र होनी चाहिए। ये 1 जुलाई को सेशन का जो होता है उसका ही कट ऑफ माना जाता है, और जाहिर है कि बच्चा अब 6th क्लास में जा रहा है तो 5th क्लास वो पास कर चुका होना चाहिए रिकग्नाइज्ड स्कूल से, या उस समय वो बच्चा 5th क्लास में जो पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी इसमें अपीयर कर सकते हैं। एंड अगर वो अपने एग्ज़ाम में 5th क्लास क्लियर कर जाते हैं और इसमें उनके क्लियरेंस मिलता है तो वो 6th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल मतलब प्रोसीजर होता है। जनरली जैसे बताया कि मैंने दिसंबर में इसका एग्जाम्स होते हैं, और इसका लास्ट डेट जो सबमिशन होता है फॉर्म्स वगैरह का वो सितंबर ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। जो भी माता पिता अपने बच्चों को इन स्कूल्स में डालना चाहते हैं वो सितंबर ऑनवर्ड्स या उससे पहले से जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें देख सकते हैं, इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इनकी जो वेबसाइट्स हैं, सब स्कूल्स की वेबसाइट्स हैं, अगर आप सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी टाइप करेंगे तो भी आएगी, उसमें उनके ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं, तो उससे आपको काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। एंड ये स्कूल्स का मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, और इन स्कूल्स ने बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं देश को दिए हैं, एंड काफ़ी अच्छे स्कूल्स में इनकी गिनती होती है।
2: तो सैनिक स्कूलों की तुलना में कर्नल साहब इनमें प्रतियोगिता का जो स्तर है वो भी ज़्यादा कठिन रहता होगा।
3: जी, क्योंकि ये सिर्फ 5 ही स्कूल हैं और इस कारण से जो है थोड़ा सा जो है सैनिक स्कूल से ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट इज समथिंग लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट में होते हैं, फिर IIT होता है, तो IIT जो है कम है जी, तो वैसे ये भी है। लेकिन एम अगर हम देखेंगे तो सबका एक ही होता है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पे डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए तैयार करना, और किसी कारण से अगर वो डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकते हैं तब भी वो एक देश के लिए एक अनुशासित नागरिक बनते हैं, और हर फील्ड में जहां वो जाते हैं किसी और फील्ड में भी बहुत अच्छा जो है उनका योगदान रहता है। अदिति जी, मैं आपको एक और स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है। वैसे हम इसको बोलते कॉलेज हैं लेकिन ये जो है स्कूल है। इसकी स्थापना जो है मार्च 1922 में हुई थी, और उसको समय प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहा जाता था। आगे चल के जो है इसी का नाम जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हुआ। ये एक NDA के लिए और दूसरी डिफेंस एकेडमीज में जाने के लिए एक फीडर इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करता है। इसको हम नर्सरी ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। अगेन ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें जो है CBSE के थ्रू करिकुलम फॉलो होता है और साइंस स्ट्रीम में ही होता है। इसमें साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी और जुलाई में, और ये जो एडमिशन है सिर्फ क्लास 8th से शुरू होते हैं। इसमें जैसे जिसको एडमिशन लेना होता है उस बच्चे की जो उम्र है 11.5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 13 साल से कम होनी चाहिए। वही सेम है कि बच्चे ने जो है 7th क्लास जो है पास करी होनी चाहिए, और इसका भी ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है। सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज होता है, और जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको फिर वाइवा वॉयस के लिए बुलाया जाता है। वाइवा वॉयस में क्लियर होने के बाद फिर इनका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट बनती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इसकी सिर्फ हर टर्म में सिर्फ 25 सीट्स होती हैं,
2: यानी ये और अधिक कठिन
3: ये और कठिन है। और इसमें जो है

0: सीट्स होती हैं, ये स्टेट वाइज अलॉट होती हैं, तो स्टेट के थ्रू जो है जाते हैं. और जाहिर है कि कंपटीशन बहुत टफ होगा और टफ होता भी है. और जो इनके एलुमनाई हैं जो यहाँ से निकले हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक इस कॉलेज ने 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए हैं, 2 चीफ ऑफ एयर स्टाफ यहाँ से निकले हैं, और बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल ऑफिसर्स जो हैं, सिविल डिग्निटरीज जो हैं, इस कॉलेज के एलुमनाई हैं.
1: कर्नल साहब, सैनिक स्कूल से मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या यह स्कूल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनके अभिभावक आर्म्ड फोर्सेस में है, कि भारत के सभी नागरिकों के बच्चे इन स्कूलों में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं?
0: अदिति, ये स्कूल सबके लिए ओपन रहते हैं और इसमें हर बच्चा जो है, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनके जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं. पहले ये सिर्फ बॉयज़ के लिए हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये गर्ल्स के लिए भी जो है ओपन है, तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं.
1: और अगर मोटे तौर पे पूछा जाए तो आर्मी में या किसी भी सेना में एंट्री के लिए मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है?
0: जैसे अभी ये स्कूल के बाद जो नेक्स्ट लेवल की एंट्री होती है उसको हम NDA बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं. इसमें जो एंट्री होती है वो 17 साल तक बच्चा जो है जा सकता है. नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में जो ऑफिसर्स के लिए जो है कैंडिडेट्स को लेती है, और ये 12वीं में पढ़ने वाले और उसके बाद 12वीं पास कर चुके जो है बच्चे हैं एग्जाम में बैठ सकते हैं. लड़कियां भी जो हैं इसमें अप्लाई कर सकती हैं.
1: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू अदिति. जय हिंद श्रोताओं.
2: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को. ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल, थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व. सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए.
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व. 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए.

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही माच शैली में। यह इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: मित्रों, मैंने जयदेव जी के असेंबली का पास वायस राय की निगरानी रखाओ कही दियो है।
2: ठीक है भगत, तब मैं असेंबली में बम फेंकवा के मत जाता, आफत में पड़ी जाओ और ये मैं नहीं चाहूंगा। अभी तुम्हारो भायर रहना जरूरी है।
3: सही बात है
1: आजाद जी, आप निश्चिंत रहो, मैं तो यो सब जनता के जगावा का वास्ते कर लू।
2: तो ठीक है,
1: हमारी चिंता मत करो।
2: तो ठीक है, पन साथियों आप सब सुनी लो, आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को ध्यान रखना। इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब जिंदाबाद।
3: आज 8 अप्रैल 1929 को दल ने अपने भगत सिंह, अपना साथी, उनका साथ असेंबली का माय कार्यवाही शुरू की जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पे अटेंशन।
4: इंकलाब जिंदाबाद,
3: वंदे मातरम।

0: हमारा सभी साथी लाहौर जेल में, आजाद जी फरार है और हमारा जीवन तो मृत्यु साधना का सिद्धांत पर चली रही है और हम अपनो बयान या जेल में नहीं सीधो सेशन जज की अदालत का मायदा गा। इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: वंदे
1: मातरम,
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: 4 जून 1924 का दिन भगत सिंह जी की पेशी दिल्ली की अदालत में हुई। कार्यवाही शुरू की जाए।
0: जज साहब, कानून पे कानून तमलाव हो और हमारे घना डराव हो। फ्रांस रूस की क्रांति देखो, कोई भी नहीं दबाई पायो। आजादी को कारगो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगो और फांसी अगर न्याय तमारो तो फंदा कम पड़ जाएगा। दस साहब, हमारी बात सुनी के नौजवान में जोश खूब भराएगा। सच्चा वीर सपूत भारत माँ का देश पे बलि बलि जाएगा। इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: वंदे
1: मातरम,
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: देखियो, देखियो आपने भगत सिंह के बयान का सत्य। आखो देश भगत सिंह जी का साथी हुई गयो। बच्चों देश का ऊपर बलिदान करवा के लिए तैयार हुई। अबे 10 जून 1929 का दिन फैसलो आवे।
3: ओ रामलाल जी।
4: अरे हाँ, एक बात है रामलाल।
3: रहो थोड़ा, इधर आओ जरा। काम की बात है। हमारे मालूम है
4: कहीं
3: भगत सिंह ने बट्टू केशर दत्त को आजीवन कारावास की सजा भई है।
4: हाँ, और
3: ने भगत सिंह के मियाँ वाली जेल में, ने बट्टू केशर दत्त के लाहौर जेल में भी सजा है।
4: अरे,
3: और वहाँ कहीं पे हो ना, इनके साथ साथ सारा खेती उन भी सब भूख हड़ताल पे बैठी जा। भगत सिंह ने वहाँ कितना परेशान कर रखा।
4: तुम सही कह रहा हो, वहाँ लाहौर जेल में भी बट्टू केशर दत्त ने ऐसा ही माहौल बनाई रखे।
3: हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा कर अपना।
4: तुम भी अपना ध्यान रखा करो।
3: ठीक
4: है, मिलते हैं फिर।
0: मैंने इंस्पेक्टर जनरल के पत्र लिखो कि हमारे यहाँ से लाहौर जेल भेजो जाए। और भी ने हमारी बात मानी ली है और अब मैं भी लाहौर जेल में आई हूँ।
2: दस जुलाई 1929 का दिन भगत सिंह जी के पेशी हुआ वाली थी, लेकिन बटू केशवर दत्त और भगत सिंह की हालत ऐसी थी कि विद्रोही चले भी नहीं पा रहा था। जो सब सुनी के भारत की जनता का मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़तो जा रही थी। विद्रोही को दोई अदालत का माय हड़ताल पे बैठी गया। जो सब होने से अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंची, जब इनके पाछो जेल में पहुंची।
0: सरकार की परेशानी तो बढ़ती जा रही है, हमारा साथियों की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। सरकार तो चाह रही है कि हड़ताल खत्म हो जाए, पर यह हड़ताल तो चली रही है। हमारो ध्यान अब अपना साथियों की जान बचाव में। ए सुनो जरा, हमारा साथियों के पानी क्यों जाए।
5: ए सुनो, भगत सिंह वान हड़तालियों को पानी की जगह दूध दिया जाए।
4: सब दूध के मटके इनके लिए पहले से भरवा के रख दिए।
5: दूध, हम में से कोई भी इना दूध पे हाथ भी नहीं लगाए दो,
6: हम पानी ही पियांगा। थोड़ी दो इन मटका के,
0: थोड़ी दो मटका उनके।
5: हे, व्हाट हैपेंड? सब सब इन हड़तालियों ने, कैदियों ने तो सारे के सारे दूध का मटका फोड़ी दिया इन्हें। अरे, इन हड़तालियों को पानी ही देना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो उस पर क्या जवाब देंगे?
0: जी सर। साथियों, अगर हमारा मित्र यतीन्द्रनाथ जी की मृत्यु नहीं होती तो हम पानी के कभी हाथ भी नहीं लगाता और या हड़ताल भी कभी समाप्त नहीं करता।
7: भगत, तुमने इन अंग्रेजों की हकीकत जनता के सामने लाके रखी दी।
0: मारो जो मकसद हो, मैं उनमें सफल हो तो चाहिए और हमारा मनोबल अब और बढ़ते जा रही है।

0: कि नौजवान मालूम है ये नौजवान जो है नौजवान ये अपराधी नहीं है, और ये तो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी, हाँ क्रांतिकारी है,
1: क्रांतिकारी नहीं देशभक्त।
2: भगत सिंह जी की रणनीति से लाहौर षड्यंत्र रचियों ने पूरी अपना साथी उनका माय विनय जोश हुई। 1 मई के लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई थी।
3: इनकलाब
4: जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम,
3: भगत सिंह,
2: सुखदेव, राजगुरु।
1: कार्यवाही शुरू की जाए।
3: जज साहब, देश की खातिर कौन बाजी लगाएगा, और सुनिए कि महफिल में हमारा इम्तहान होएगा। ए खुदा, वो दन भी आएगो जदे हम कायम होवांगा, जदे अपनी जमीन और अपनो आसमान होएगा। इनकलाब
4: जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम,
3: साम्राज्यवाद
4: मुर्दाबाद।

इनकी पिटाई देखी के आगा हैदर खान वहां से चलिया गया। तो फिर एक दिन फैसला आयो कि सुखदेव राजगुरु ने भगत सिंह जी के जल्द से जल्द फांसी दे दी।

0: बेटा बाबर?
1: हाँ पिताजी।
0: मैंने सुने था फांसी हवा वाली।
1: हाँ पिताजी, तुमने सही सुनी, हमारे फांसी हवा वाली है।
0: देशभक्ति है इतनी बड़ी, हम समझा मां ने बाप, हारो छोरो फांसी चढ़ी दी, सीना में चली दिया।
1: पिताजी म्हारी मौत जीवन से कीमती, सबके यो बतानो है, देश प्रेम की लो लगे ऐसो फर्ज निभानो है। तम मोह में मत पड़ जो, तमारो बेटो देश का वास्ते शहादत दई के देश की आजादी को रस्तो पक्को करनो चाहिए।
0: ठीक है भगत, वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम,
0: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम।
3: बेटा महारा, यो कई होएगी?
1: माँ तू रोएगी तो लोग कहेगा कि वीर की मार रो रही है, भगत सिंह की मार रो रही है। तुम्हारी बात सुन माँ,

0: मैं थारा जैसे वीर सपूत की माँ हूँ।
1: तू अपनो ध्यान रख जे माँ, बेन तू भी अपनो ध्यान रख जे।
2: ठीक है भैया। भैया तमारो यो बलिदान आपको देश याद रखेगा। इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: जिंदाबाद,
3: जिंदाबाद,
2: जिंदाबाद।

धोनी के कौन टाली सके, वह तो अटल सत्य। समय सब गुंगो हुई के देखी हुई, लो फांसी को पैगाम है। आपके मालूम भगत सिंह की फांसी से अंग्रेज सरकार इतनी डरी गई कि उनके एक दिन पहला फांसी पे चढ़ावों को हुक्म दिया। आखो देश, आखो देश भगत सिंह के बचाव की प्रार्थना करके, माँ ऐसो भाई चाहिए, माँ ऐसो बेटो चाहिए, बहन ऐसो भाई चाहिए, सबकी आख्या नम, मारी भी नम।

0: ये था मार्च खेल शहीद भगत सिंह। इसे लिखा था श्री सुंदरलाल मालवीय और यशस्विनी निगम ने। परिकल्पना, निर्देशन और संगीत श्री सुंदरलाल मालवीय।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं,
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दीपक नीमा और भगवती सक्सेना।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए यानी सपनों को पंख देने वाली संस्था के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले कुछ प्रकरणों में दादू और रुचि ने देश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों की प्रेरक कहानियां जानी। लंबी यात्रा के बाद अब दोनों अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन ज्ञान की यात्रा तो अभी भी जारी है ना?
2: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक खबर है।
1: नमस्ते दादू।
2: हाँ हाँ हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गई कॉलेज से? कैसी रही आज की पढ़ाई?
1: बहुत अच्छी रही दादू, लेकिन आप कौन सी खबर को इतनी ध्यान से पढ़ रहे हैं?
2: अरे बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ भारत के विमानन क्षेत्र से जुड़ी, ये एक आर्टिकल है, यही पढ़ रहा हूँ मैं।
1: विमानन क्षेत्र मतलब हवाई जहाजों की दुनिया?
2: हाँ हाँ बेटा, एक मिनट बस। हाँ बेटा, केवल हवाई जहाज नहीं बल्कि उन संस्थाओं की दुनिया जो भारत को आकाश में नई ऊंचाइयां देने का काम कर रही है।
1: दादू, जब भी मैं आकाश में उड़ते हुए विमान देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एक सवाल आता है।
2: मुझे देखकर तुम्हारे मन में कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। अखबार रख देता हूँ एक मिनट। चलो हाँ बेटा, पूछो सवाल पूछो।
1: दादू, इतना भारी विमान आखिर उड़ता कैसे है और उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी?
2: लगता है आज की कहानी फिर से शुरू होने वाली है।
1: वो तो होने वाली है दादू, अब जल्दी से बताइए ना, आज हम किस संस्थान के बारे में जानेंगे?
2: तो आज हम जानेंगे यही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की कहानी। एक ऐसी संस्था की कहानी जिसने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को नई दिशा दी।
1: वाह दादू, यानी आज की कहानी आकाश से जुड़ी है।
2: हाँ बेटा, आज हम धातुओं की दुनिया से निकलकर उड़ान की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं।
1: दादू, वो देखिए, छत पर बैठे कबूतर एक साथ उड़ गए।
2: हाँ बेटा, प्रकृति का ये दृश्य जितना सुंदर है उतना ही प्रेरणादायक भी है।
1: अच्छा दादू।
2: हाँ बेटा।
1: क्या इंसान ने उड़ने का विचार पक्षियों को देखकर ही सीखा था?
2: काफी हद तक, हजारों वर्षों से मनुष्य पक्षियों को उड़ते देखता रहा और उसके मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा जागती रही।
1: मतलब उड़ान का सपना बहुत पुराना है।
2: बहुत पुराना बेटा। पुराने ग्रंथों, कथाओं और लोक कथाओं में उड़ने वाले रथों और आकाश यात्राओं का उल्लेख इन सब में मिलता है। लेकिन सपना देखना और उसे वास्तविकता में बदलना दो अलग बातें हैं।
1: फिर दादू, इंसान ने ये सपना भला कैसे पूरा किया?
2: इसके लिए वैज्ञानिकों, अभियंताओं और आविष्कारकों ने वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने पक्षियों की उड़ान को समझा, हवा की गति को समझा और फिर ऐसे यंत्र विकसित किए जो हवा में उड़ सके।
1: यानी विमान केवल मशीन नहीं है बल्कि सदियों पुराने एक सपने की पूर्ति है।
2: बहुत सुंदर कहा तुमने।
1: लेकिन दादू, पक्षी तो अपने पंखों से उड़ते हैं, फिर ये विमान आखिर कैसे उड़ता है?
2: ये प्रश्न दुनिया के लाखों बच्चों के मन में आता है। विमान के पंखों का आकार ऐसा बनाया जाता है कि जब वो तेज गति से आगे बढ़ता है तो हवा का दबाव उसके ऊपर और नीचे अलग अलग हो जाता है
1: और उसी से वह ऊपर उठता होगा।
2: बिल्कुल, इसे ही उड़ान का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इसे समझना आसान है जबकि इसे व्यवहार में सफल बनाना बहुत कठिन होता है बेटा।
1: वो भला क्यों?
2: वो भला ऐसे बेटा, क्योंकि विमान को केवल उड़ना नहीं होता, सुरक्षित भी उड़ना होता है ना। उसे तेज हवा, बारिश, ऊंचाई और अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
1: अब समझ में आया कि विमान बनाना इतना कठिन काम क्यों है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, क्या हर देश अपना विमान बना सकता है?
2: नहीं नहीं बेटा, विमान निर्माण दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक माना जाता है।
1: मतलब इसके लिए बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव चाहिए होगा?
2: बिल्कुल चाहिए। विमान बनाने के लिए वायु गतिकी, धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सामग्री विज्ञान और अनेक अन्य क्षेत्रों का ज्ञान एक साथ काम करता है।
1: यानी ये कई विज्ञानों का संगम होगा।
2: बिल्कुल है बेटा।
1: अच्छा दादू, जब विमान बनाना इतना कठिन है तो भारत ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुरुआत कैसे की थी?
2: बेटा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये महसूस किया कि यदि हमें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपनी तकनीक विकसित करनी पड़ेगी।
1: और इसमें विमानन तकनीक भी शामिल थी।
2: बिल्कुल, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण था। किसी भी देश की वायुसेना उसकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार होता है बेटा।
1: तो क्या इसी सोच ने एडीए के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया?
2: हाँ बेटा, जैसे जैसे भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने का लक्ष्य तय किया, वैसे वैसे एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो इस विशाल कार्यक्रम का नेतृत्व कर सके।
1: और तब एडीए की स्थापना हुई होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, वर्ष 1984 में बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात एडीए की स्थापना की गई।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
2: भारत के हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और उसे तकनीकी दिशा प्रदान करना।
1: यानी एडीए का जन्म केवल एक संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय सपने के रूप में हुआ था।
2: सही कहा बेटा, ये उस सपने का हिस्सा था जिसमें भारत अपने लिए आधुनिक लड़ाकू विमान स्वयं विकसित करना चाहता था।
1: दादू, क्या ये वही कार्यक्रम था जिससे आगे चलकर तेजस विमान बना?
2: हाँ बेटा, तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि हजारों वैज्ञानिकों, अभियंताओं, तकनीशियनों और परीक्षण पायलटों की वर्षों की मेहनत, आत्मविश्वास, अनुसंधान, धैर्य और नवाचार की कहानी भी है।
1: दादू, जब एडीए की स्थापना हुई होगी तब क्या किसी ने सोचा होगा कि एक दिन भारत अपना आधुनिक लड़ाकू विमान विकसित करेगा?
2: सपना बड़ा था बेटा, चुनौतियाँ उससे भी बड़ी थी, लेकिन संकल्प उतना ही मजबूत था।
1: दादू, अब तो मुझे तेजस की पूरी कहानी जानना है आपसे।
2: तो तैयार हो जाओ, अब हम जानेंगे कि कागज पर बने एक विचार ने कैसे आकाश में उड़ान भरी और भारत की विमानन यात्रा का नया अध्याय लिखा।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस केवल एक विमान नहीं है बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है, लेकिन किसी लड़ाकू विमान की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है?
2: दिलचस्प प्रश्न है बेटी। किसी भी विमान की शुरुआत कारखाने से नहीं बल्कि विचार से होती है। विचार से? हाँ बेटा, सबसे पहले ये तय किया जाता है कि विमान को क्या क्या कार्य करने होंगे, वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकेगा, उसकी गति कैसी होगी, वो कितना भार ले जा सकेगा और उसकी युद्ध क्षमता कैसी होगी।
1: मतलब पहले उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार की जाती होगी?
2: हाँ बेटा बिल्कुल, उसके बाद वैज्ञानिक और अभियंता मिलकर प्रारंभिक डिजाइन तैयार करते हैं।
1: दादू, क्या आज भी विमान केवल कागज पर डिजाइन किए जाते हैं?
2: नहीं बेटा, आज आधुनिक संगणक प्रणालियाँ इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: वो भला कैसे?
2: एडीए ने अत्याधुनिक संगणन सुविधाएं विकसित की, वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर आधारित डिजाइन, विश्लेषण और सिमुलेशन तकनीकों का उपयोग किया।
1: सिमुलेशन मतलब?
2: मान लो किसी विमान को वास्तव में बनाने से पहले उसके व्यवहार को कंप्यूटर पर परखा जाए, ये देखा जाए कि उड़ान के दौरान वो कैसा प्रदर्शन करेगा।
1: अरे वाह, यानी पहले आभासी दुनिया में परीक्षण और फिर वास्तविक दुनिया में?
2: हाँ बेटा बिल्कुल।
1: दादू, लेकिन वैज्ञानिक कैसे जान पाते हैं कि हवा में विमान का व्यवहार कैसा होगा?
2: इसके लिए विंड टनल परीक्षण किए जाते हैं।
1: विंड टनल, ये क्या होते हैं?
2: ये बेटा एक विशेष सुविधा होती है जहाँ नियंत्रित गति से हवा प्रवाहित की जाती है।
1: और उसमें विमान को उड़ाया जाता है?
2: पूरे विमान को नहीं बल्कि उसके मॉडल का परीक्षण किया जाता है बेटा, ताकि ये देखा जा सके कि हवा उसके चारों ओर कैसे बह रही है।
1: सच में दादू?
2: इससे वैज्ञानिक ये समझते हैं कि डिजाइन कितना प्रभावी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है।
1: मतलब विमान की पहली परीक्षा आकाश में नहीं प्रयोगशाला में होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा।
1: दादू, एडीए की सुविधाओं में एक नाम आपने बताया था आयरन वर्ड, ये सुनकर तो किसी विज्ञान कथा की याद आती है मुझे।
2: हाँ, नाम सचमुच रोचक है बेटा।
1: तो बताइए ना, क्या है ये?
2: आयरन बर्ड वास्तव में एक परीक्षण व्यवस्था होती है बेटा। इसमें विमान की विभिन्न प्रणालियों को जमीन पर ही जोड़कर उनकी कार्य क्षमता की जांच की जाती है।
1: यानी विमान उड़ने से पहले उसकी कई प्रणालियां जमीन पर परखी जाती हैं?
2: हाँ बेटा, इससे संभावित समस्याओं का पता पहले ही चल जाता है।
1: मतलब सुरक्षा की शुरुआत उड़ान से पहले ही हो जाती है?
2: बिल्कुल।
1: दादू, जब इतने वर्षों की मेहनत के बाद कोई विमान पहली बार उड़ान भरता होगा तब कैसा माहौल होता होगा?
2: कल्पना करो बेटा, वर्षों तक वैज्ञानिकों ने काम किया, अभियंताओं ने डिजाइन तैयार किए, तकनीशियनों ने अनगिनत घंटे लगाए, परीक्षण किए गए,
1: और फिर वो दिन आता है
2: जब विमान पहली बार रनवे पर दौड़ता है,
1: और उस समय सबकी निगाहें उसी पर होती होंगी।
2: बिल्कुल, क्योंकि उस क्षण में केवल एक मशीन नहीं बल्कि वर्षों का परिश्रम और आशाएं उड़ान भर रही होती हैं बेटा।
1: दादू, मुझे सुनकर कितना रोमांच हो रहा है।
2: हाँ बेटा।
1: दादू, एक विमान का नाम तेजस भी तो था, वो भला कैसे रखा गया?
2: तेजस संस्कृत का शब्द है बेटा, जिसका अर्थ है तेज, ऊर्जा, प्रकाश और शक्ति।
1: तो ये नाम वास्तव में विमान की भावना को दर्शाता है।
2: हाँ, और ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि भारतीय विज्ञान और आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गया है।
1: अब समझ में आ रहा है कि तेजस की चर्चा होते ही लोगों की आंखों में गर्व क्यों दिखाई देता है।
2: क्योंकि ये उस क्षमता का प्रतीक है जिसे भारत ने अपने वैज्ञानिकों और अभियंताओं के बल पर विकसित किया है।
1: अच्छा दादू, क्या एडीए का काम केवल तेजस तक ही सीमित है?
2: नहीं नहीं बेटा, यही तो इस कहानी का अगला और भी रोचक अध्याय है।
1: मतलब एडीए भविष्य के विमानों पर भी काम कर रही है?
2: हाँ, तेजस के बाद तेजस MK2 नौसेना के लिए उन्नत लड़ाकू विमान और भविष्य की अत्याधुनिक विमान परियोजनाओं पर भी लगातार कार्य चल रहा है।
1: यानी एडीए केवल वर्तमान नहीं बल्कि भारत के भविष्य के आकाश की भी तैयारी कर रहा है।
2: हाँ बेटा, और हम उसी भविष्य की कहानी जानेंगे।
1: दादू, जब हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तो उसकी चमक और गति दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे चलने वाली वैज्ञानिक दुनिया हमें दिखाई नहीं देती।
2: हाँ बेटा, किसी भी आधुनिक विमान के पीछे हजारों

0: बन चुके हैं।
1: दादू, आजकल वर्चुअल रियलिटी की बहुत चर्चा होती है, क्या विमान निर्माण में भी इसका उपयोग होता है?
0: हाँ हाँ बेटा, वर्चुअल रियलिटी वैज्ञानिकों और अभियंताओं को विमान के विभिन्न भागों को त्रिआयामी रूप में देखने और समझने में सहायता करती है।
1: यानी विमान बनने से पहले ही उसके भीतर घूमकर देखा जा सकता है?
0: हाँ हाँ, इससे डिजाइन संबंधी समस्याओं को पहले से ही पहचानना आसान हो जाता है।
1: तो ये समय और संसाधन दोनों की बचत करता होगा?
0: हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: दादू,
0: हाँ,
1: अब मुझे लग रहा है कि विमान निर्माण केवल धातुओं और इंजनों की कहानी नहीं है।
0: आधुनिक विमानन में सॉफ्टवेयर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा।
1: वो कैसे?
0: एडीएन ने विभिन्न प्रकार के विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, जिनका उपयोग डिजाइन, विश्लेषण, निर्माण, उड़ान अनुकरण और परीक्षणों में किया जाता है।
1: यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रेखाएं आगे चलकर वास्तविक विमान का रूप ले लेती हैं।
0: हाँ, कई बार एक छोटी सी गणना भी पूरे विमान के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है बेटा।
1: दादू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि विमान निर्माण में गणित और विज्ञान कितना जरूरी है। सही कहा था आपने कि एडीए का काम केवल तेजस तक ही सीमित नहीं है।
0: हाँ बेटा, विज्ञान की यात्रा कभी रुकती नहीं है।
1: तो अब आगे क्या?
0: आगे बेटा, तेजस के अनुभव और सीख के आधार पर और अधिक उन्नत विमान विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है।
1: तो क्या ये तेजस का नया रूप लेगा?
0: इसे तुम अगली पीढ़ी की प्रगति कह सकती हो बेटा। हर नई परियोजना पिछली उपलब्धियों पर आधारित होती है।
1: यानी हर सफलता अगले लक्ष्य का आधार बन जाती है।
0: एकदम सही।
1: दादू, क्या भविष्य में विमानों की दुनिया और भी बदल जाएगी?
0: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले समय में विमान अधिक उन्नत, अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से और भी परिष्कृत होंगे।
1: तो क्या अब हमारा भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है?
0: हाँ, इसी उद्देश्य से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई परियोजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है।
1: मतलब एडीए केवल आज की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भी तैयारी कर रही है।
0: हाँ बेटा, यही किसी दूरदर्शी संस्था की पहचान होती है।
1: दादू, आज की कहानी सुनकर मेरे मन में एक नया विचार आया है।
0: वो क्या बेटा?
1: वो ये कि जब मैं अगली बार आकाश में कोई विमान देखूंगी ना, तो केवल उसकी गति नहीं देखूंगी, मैं उसके पीछे छिपे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत को भी याद करूंगी।
0: हाँ बेटा, और यही इस कहानी का उद्देश्य है।
1: दादू, लोग अक्सर उड़ते हुए विमानों को देखते हैं, लेकिन उसे उड़ाने वाले ज्ञान को नहीं देखते।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात पकड़ी। लगता है कि आज की कहानी ने तुम्हें फिर एक नई सीख दे दी है।
1: दादू, एक बात बताइए ना।
0: हाँ।
1: आपने BEML, मिधानी और कई अन्य संस्थानों की कहानियाँ सुनाई है मुझे, लेकिन विमान बनाने की बात आते ही हर कोई इसे बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों मानता है? क्या ये कार या रेलगाड़ी बनाने से भी अधिक कठिन है?
0: बहुत कठिन है बेटा। सोचो, रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है और कार सड़क पर, लेकिन विमान को हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ना होता है।
1: और वहाँ तो कोई सड़क भी नहीं होती।
0: हाँ, विमान को अपने संतुलन, दिशा और गति का नियंत्रण स्वयं बनाए रखना पड़ता है।
1: मतलब जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है दादू।
0: हाँ बेटा, यही कारण है कि विमान निर्माण में अत्यंत सूक्ष्मता और सावधानी की आवश्यकता होती है।
1: दादू, आधुनिक लड़ाकू विमानों के बारे में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, फ्लाई बाय वायर। ये क्या होता है?
0: बेटा, पहले के विमानों में पायलट के नियंत्रण सीधे यांत्रिक प्रणालियों से जुड़े होते थे, लेकिन आधुनिक विमानों में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: कैसे?
0: देखो बेटा, जब पायलट कोई नियंत्रण देता है तो कंप्यूटर उस संकेत को समझकर विमान की विभिन्न प्रणालियों तक पहुंचाता है।
1: यानी कंप्यूटर पायलट का सहयोगी बन जाता है।
0: हाँ, इससे विमान अधिक स्थिर और नियंत्रित रहता है।
1: तो तेजस में भी ऐसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया?
0: हाँ बेटा, यही कारण है कि तेजस भारत की तकनीक क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।
1: दादू, लड़ाकू विमान को मजबूत भी होना चाहिए और तेज भी, तो दोनों बातें एक साथ कैसे संभव होती हैं?
0: यही तो अभियंताओं की सबसे बड़ी चुनौती होती है।
1: कैसे?
0: यदि विमान बहुत भारी होगा तो उसकी गति और दक्षता प्रभावित होगी, यदि बहुत हल्का होगा तो मजबूती कम हो सकती है।
1: तो फिर समाधान क्या है?
0: देखो बेटा, विशेष सामग्रियों और उन्नत डिजाइन का उपयोग।
1: मतलब यहाँ मिधानी जैसी संस्थाओं का योगदान भी जुड़ जाता होगा।
0: हाँ, देखो कैसे देश की विभिन्न संस्थाएं मिलकर एक बड़े लक्ष्य को पूरा करती हैं।
1: दादू, जब कोई नया विमान पहली बार उड़ता है तब उसे कौन उड़ाता है?
0: परीक्षण पायलट।
1: क्या ये सामान्य उड़ान से अलग होता है?
0: हाँ बेटा, परीक्षण उड़ानों में विमान के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पायलटों को अत्यंत प्रशिक्षित और अनुभवी होना पड़ता है।
1: यानी वे केवल पायलट नहीं बल्कि उड़ान के वैज्ञानिक भी होते हैं।
0: ये सही कहा बेटा तुमने।
1: और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सुधार किए जाते होंगे।
0: हाँ बेटा, विमान विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
1: और ADA ने इन सब को दिशा दी है।
0: बिल्कुल दी है।
1: दादू, आपने कहा था कि तेजस के बाद भी ADA की यात्रा जारी है, तो अब उसका अगला बड़ा सपना क्या है?
0: देखो बेटा, हर उपलब्धि एक नए लक्ष्य का मार्ग खोलती है। आज ADA भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और अधिक उन्नत विमानों की दिशा में कार्य कर रही है।
1: क्या उनमें से कोई विशेष परियोजना है?
0: हाँ हाँ, ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट अर्थात AMCA।
1: वाह, नाम सुनकर ही लग रहा है दादू कि ये कोई अत्याधुनिक विमान होगा।
0: इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक उन्नत लड़ाकू विमान विकसित करना है बेटा।
1: मतलब विज्ञान और तकनीक की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि।
0: हाँ, विमानन विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए भविष्य के विमानों में नई सामग्रियां, आधुनिक प्रणालियां और उन्नत क्षमताएं शामिल की जाती हैं।
1: तो AMCA केवल एक विमान नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है।
0: हाँ बेटा, ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें देश केवल वर्तमान की नहीं आने वाले दशकों की आवश्यकताओं की भी तैयारी करता है।
1: दादू, अब तक हम वायुसेना के विमानों की बात कर रहे थे, लेकिन नौसेना का क्या?
0: नौसेना की आवश्यकताएं अलग होती है बेटा।
1: कैसे दादू?
0: देखो, समुद्र में विमान वाहक पोत पर काम करना सामान्य हवाई अड्डे पर काम करने से अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।
1: क्यों?
0: क्योंकि जहाज लगातार गतिशील रहता है, समुद्री हवाएं, सीमित स्थान और विशेष परिचालन आवश्यकताएं होती हैं।
1: तो दादू, नौसेना के लिए अलग प्रकार के विमान चाहिए होते?
0: हाँ बेटा, इसी दिशा में TEDBF अर्थात ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जैसी अवधारणाओं पर कार्य किया जा रहा है।
1: मतलब ऐसा विमान जो समुद्र में तैनात विमान वाहक पोत से उड़ान भर सके।
0: हाँ, ये दर्शाता है कि भारत विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: दादू, ADA की स्थापना बेंगलुरु में ही क्यों की गई?
0: क्योंकि बेंगलुरु लंबे समय से भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी और विमानन गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
1: मतलब वहाँ केवल एक संस्था नहीं है?
0: हाँ, वहाँ अनेक वैज्ञानिक संस्थान है बेटा, अनुसंधान केंद्र हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं और विमानन से जुड़े संगठन कार्य करते हैं।
1: यानी अलग अलग विशेषज्ञ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
0: हाँ, इसे ही कभी कभी वैज्ञानिक या तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है।
1: जैसे एक बगीचे में अलग अलग पौधे मिलकर पूरा वातावरण बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बेटा, ये उदाहरण बहुत सुंदर है।
1: दादू, तो बेंगलुरु केवल एक शहर नहीं बल्कि विचारों और नवाचारों का भी संगम है।
0: हाँ बेटा।
1: दादू, आपने बताया था कि ADA का संबंध रक्षा अनुसंधान से भी है।
0: ADA रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO से जुड़ी हुई है।
1: तो क्या दोनों मिलकर काम करते हैं?
0: हाँ हाँ बेटा, किसी भी बड़ी परियोजना में अनेक संस्थाएं अपना अपना योगदान देती हैं।
1: मतलब कोई संस्था डिजाइन में योगदान देती है, कोई परीक्षण में और कोई अनुसंधान में।
0: हाँ, आधुनिक तकनीक इतनी जटिल होती है कि इसमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है बच्चे।
1: यानी सफलता का श्रेय केवल एक संस्था को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता होगा दादू।
0: हाँ बेटा, पूरी टीम को जाता है।
1: ये कार्यक्रम सुनने वाले बहुत से बच्चे और युवा भी होंगे जो हमें सुन रहे होंगे दादू।
0: होंगे ही।
1: अच्छा, ये बताइए कि यदि कोई छात्र विमान निर्माण या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: अगर विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, उसे जानना है, समझना है, तो सबसे पहले जिज्ञासु बनिए।
1: जिज्ञासु?
0: हर वैज्ञानिक यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है।
1: जैसे मेरे प्रश्न?
0: हाँ बेटा, विज्ञान में प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना जाता है।
1: और फिर?
0: गणित विज्ञान, अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मेहनत करनी होती है।
1: यानी आज का जिज्ञासु विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक बन सकता है।
0: क्यों नहीं बन सकता? देश की हर बड़ी उपलब्धि कभी किसी विद्यार्थी के सपने के रूप में ही शुरू हुई थी बेटा।
1: तो हो सकता है दादू कि आज ये कार्यक्रम सुन रहा कोई बच्चा भविष्य में किसी नए विमान का डिजाइन तैयार करे।
0: बिल्कुल तैयार करेगा बेटा, और शायद वो भारत की अगली बड़ी तकनीकी उपलब्धि का हिस्सा भी बने।
1: दादू, अब मैं एक बार फिर वही प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो मैंने मिधानी के बारे में पूछा था।
0: पूछो पूछो बेटा पूछो।
1: वो ये दादू कि यदि ADA जैसी संस्था ना होती तो क्या फर्क पड़ता?
0: बहुत बड़ा फर्क पड़ता बेटा।
1: कैसे?
0: कल्पना करो, यदि किसी देश के पास अपनी विमानन डिजाइन क्षमता ना हो तो उसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए बाहरी तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
1: मतलब केवल विमान खरीदना ही पर्याप्त नहीं होता?
0: नहीं नहीं बेटा, तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान क्षमता और डिजाइन कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।
1: और ADA ने भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ाया?
0: हाँ बेटा, इसने केवल परियोजनाओं का नेतृत्व नहीं किया बल्कि देश में विमानन अनुसंधान और विकास की क्षमता को भी बहुत मजबूत किया है।
1: यानी ये संस्था केवल विमान नहीं बनाती बल्कि ज्ञान भी विकसित करती है।
0: हाँ, और यही किसी भी विकसित राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होती है।
1: दादू, आज मैंने जाना कि उड़ान केवल पंखों की कहानी नहीं होती।
0: तो फिर किसकी कहानी होती है?
1: दादू, ये विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, साहस और सामूहिक प्रयास की कहानी होती है।
0: हाँ, लगता है आज की चर्चा का सार तुम्हें मिल गया बच्चे।
1: हाँ दादाजी, और ADA की कहानी बताती है कि जब कोई देश बड़े बड़े सपने देखने का साहस करता है ना, तो वे सपने एक दिन आकाश में उड़ान भी भरते हैं।
0: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही भारत की वैज्ञानिक यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है।
1: प्रिय श्रोताओं, आज के संक में हमने जाना कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA केवल लड़ाकू विमानों के विकास का संस्थान नहीं है बल्कि भारत की वैज्ञानिक दूरदृष्टि, आत्मनिर्भरता और नवाचार का एक सशक्त प्रतीक है। तेजस से लेकर AMCA और TEDBF जैसी भविष्य की परियोजनाओं तक ADA ने भारत को स्वदेशी विमान डिजाइन और विकास की दिशा में नई पहचान दी है।
0: और यदि आप भी विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी या अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं तो अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए। कौन जाने आने वाले वर्षों में भारत के किसी नए विमान, किसी नई तकनीक या किसी नए वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे आपका भी योगदान हो। इसी प्रेरक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: अगले अंक में हम जानेंगे कि कैसे भारत के सैन्य उपग्रह धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर रहकर हमारी सीमाओं की निगरानी करते हैं, सुरक्षित संचार उपलब्ध कराते हैं और देश की सुरक्षा को नई शक्ति प्रदान करते हैं। श्रोताओं, सुनते रहिए रेडियो नाटक देश के संस्थान। आज के कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
0: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नीमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्ते। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं वासुदेव बलवंत सिंह गोगटे पर केंद्रित कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
2: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। क्रांति की चिंगारी से स्वतंत्रता का अलग जगाने वाले क्रांति वीरों की यशोगाथा का कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी।
0: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
2: आज हम चर्चा करेंगे क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत गोगटे की। महाराष्ट्र के शोलापुर नगर के निवासी एक विचित्र सत्याग्रह के द्वारा शासन की नीति का विरोध कर रहे थे। उन लोगों ने अपने सत्याग्रह को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया था। झुंड के झुंड लोग नगर सीमा के बाहर जाते और जंगल से वृक्ष काटकर जुलूस के रूप में नगर भ्रमण करते थे। और इसी तरह का एक प्रदर्शन किया गया 1 मई 1930 को। अंग्रेज सरकार अपना अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने जंगल सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ सत्याग्रही गोलियों से मारे गए, जिसके कारण जनता और अधिक भड़क उठी। न्यायालय के भवन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी गई और न्यायालय के अभिलेख जलाकर भस्म कर दिए गए। शोलापुर से अंग्रेज जिलाधीश मिस्टर नाइट ने महाराष्ट्र के गृह सचिव और प्रभावी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसन से अनुरोध किया कि शोलापुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए। सर अर्नेस्ट हॉटसन ने शोलापुर में तुरंत ही मार्शल लॉ लागू कर दिया। सरकार को दमन करने की अब खुली छूट मिल गई थी। जनता पर तरह तरह के अत्याचार होने लगे। तभी पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने वाला एक युवक वासुदेव बलवंत गोगटे ब्रिटिश सरकार के इन अत्याचारों की कथाएं सुनकर विचलित हो उठता था। वो सोचने लगे कि शोलापुर में लगाए गए मार्शल लॉ का विरोध किस प्रकार किया जाए। वो इस परिणाम पर पहुंचे कि मार्शल लॉ लगाने वाले अधिकारी सर अर्नेस्ट हॉटसन को दंडित किया जाए। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का, उसके बाद जानेंगे कि वासुदेव बलवंत गोगटे ने क्या योजना बनाई मार्शल लॉ का विरोध करने के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी। हम चर्चा कर रहे हैं वासुदेव बलवंत गोखटे की। वासुदेव बलवंत अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणित करने के विचार से निजाम हैदराबाद के राज्य में जा पहुंचे। हैदराबाद में उनके भाई डॉक्टर थे। गोखटे ने हैदराबाद की एक दुकान से दो रिवॉल्वर और कुछ कारतूस भी खरीद लिए। जंगल में जाकर निशानेबाजी का अभ्यास भी करने लगे और शीघ्र ही उनका निशाना अच्छा हो गया। लौटकर वो पूना पहुंच गए और सर अर्नेस्ट हॉडसन को मारने के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश करने लगे। लेकिन गोखटे को क्या मालूम था कि सर अर्नेस्ट हॉडसन 20 जुलाई 1931 को बंबई विधान परिषद के सत्र का शुभारंभ करेंगे। उन्हें मारने का ये उपयुक्त अवसर समझकर वो बंबई पहुंच गए और एक प्रवेश पत्र का प्रबंध करके परिषद में सीधे पहुंच गए। उन्हें ये जानकर बहुत निराशा हुई कि हॉडसन महोदय उस दिन वहां नहीं पहुंचेंगे और वे निराश होकर पूना लौट आए। गोखटे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हॉडसन महोदय पर हाथ साफ करने का फिर से अप्रत्याशित अवसर उन्हें शीघ्र लग जाएगा और वो भी पूना में। 22 जुलाई 1931 को उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज के फाटक पर एक अंग्रेज सार्जेंट को खड़ा हुआ देखा। वो जानना चाहते थे कि सार्जेंट वहां पर क्यों खड़ा है। उसने अपने साथियों से पूछा भी, लेकिन कोई भी उसे सार्जेंट की उपस्थिति का कारण नहीं बता सका। वो स्वयं उस गोरे सार्जेंट के पास पहुंच गए और विनम्रता के साथ उससे बातें करने लगे। गोरे सार्जेंट ने बताया कि आज ही बंबई प्रांत के प्रभारी गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉडसन फर्ग्यूसन कॉलेज का निरीक्षण करने आने वाले हैं। फिर क्या था, गोखटे की तो बांछे खिल गई। वो दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे और अपने दोनों रिवॉल्वर भरकर उन्हें कोट की जेब में रखकर फर्ग्यूसन कॉलेज पहुंच गए। सर हॉडसन की रुचियों के विषय में उसे बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि वे पुस्तक प्रेमी हैं और पुस्तकालयों का निरीक्षण वे अवश्य करेंगे। उसने कॉलेज के वाडिया पुस्तकालय में गवर्नर पर गोली चलाने का निश्चय कर लिया। वाडिया पुस्तकालय की पहली सीट पर बैठकर गोखटे अध्ययन करने का अभिनय करने लगे। उसकी निगाहें दरवाजे की ही ओर थीं। उन्होंने अपने कोट की बाहरी जेब में हॉडसन महोदय का एक फोटो भी इसलिए रख लिया था जिससे वो गलत आदमी पर गोली न चला सके। गोखटे को अपना प्रतीक्षित अवसर शीघ्र ही हाथ भी लग गया। पुस्तकालय भवन के निरीक्षण में गवर्नर महोदय उनके बिल्कुल पास आ गए। उनके साथ वाडिया बंधु भी थे जिनके दान से पुस्तकालय का निर्माण हुआ था। गोखटे गवर्नर महोदय को आदर दिखाने के लिए अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। वो उनके बिल्कुल सामने थे। अवसर का लाभ उठाने की दृष्टि से उसने कोट के अंदर की जेब से अपना रिवॉल्वर निकाला और एक गोली सर हॉडसन की छाती को लक्ष्य करके छोड़ दी। निशाना बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ना तो खून की एक बूंद निकली, ना हॉडसन महोदय के मुंह से कोई चीख। गोली खाकर हॉडसन महोदय गोखटे पर झपट पड़े और उसे नीचे गिराकर उस पर लेट गए। नीचे पड़े पड़े भी उसने एक गोली और उनकी छाती पर छोड़ दी। इतने पास से छोड़ी गई गोली का भी कोई असर नहीं हुआ। अब तो कई लोग दौड़ पड़े और गोखटे को काबू में करके उससे दोनों रिवॉल्वर छीन लिए गए। देशभक्ति गीत के बाद बताएंगे क्या हुआ गोखटे महोदय का।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी और हम चर्चा कर रहे हैं क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत गोगटे की। बलवंत वासुदेव ने हॉडसन पर गोली चलाई लेकिन उनको गोली नहीं लगी। गोगटे और हॉडसन फिर आमने सामने खड़े थे। हॉडसन ने पूछा, आपने मुझ पर गोलियां क्यों चलाई? गोगटे का उत्तर था, शोलापुर में मार्शल लॉ लगाकर आपने भारतीय जनता पर जो अत्याचार किए हैं उन्हीं के प्रतिरोध में मैंने आप पर गोलियां चलाई हैं। गिरफ्तार करके गोगटे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। उन्होंने कुछ अन्य बातें तो बताई लेकिन ये नहीं बताया कि उसने रिवॉल्वर कहां से खरीदा था। प्रारंभिक जांच करके खान बहादुर कोठाला ने गोगटे को सेशन सुपुर्द कर दिया। न्यायमूर्ति एनजे वाडिया की अदालत में गोगटे का मुकदमा शुरू हो गया। बचाव पक्ष की ओर से प्रसिद्ध वकील एलबी भोपटकर थे। इस घटना से देश भर में सनसनी फैल गई और अदालत में अच्छी खासी भीड़ हमेशा रहती थी। मुकदमे के निर्णय के दिन ज्यूरी ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अभियुक्त ने हिज एक्सीलेंसी पर दो गोलियां चलाई और अपनी खुशकिस्मती या गोलियों के कमजोर होने के कारण हिज एक्सीलेंसी की जान बच गई। इस वक्तव्य पर गोगटे के वकील श्री भोपटकर ने अस्पष्टता का आरोप लगाया। सेशन जज महोदय ने ज्यूरी से स्पष्ट कथन के लिए कहा और थोड़ी देर के लिए ज्यूरी के सदस्य फिर उठकर चले गए। उन्होंने स्पष्ट वक्तव्य देते हुए ये बात कही, अभियुक्त गोगटे स्पष्ट रूप से अपराधी है। उसने हिज एक्सीलेंसी सर अर्नेस्ट हॉडसन की हत्या का प्रयत्न किया है। चूंकि वो विद्यार्थी है और उसकी उम्र अभी कम है, इसलिए हम उसे कम सजा दिए जाने की सिफारिश करते हैं। गोगटे को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के अंतर्गत 8 वर्ष के कठोर कारावास का निर्णय सुना दिया गया। अवैध रूप से हथियार रखने के अपराध में भी उन्हें 2 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। उनके पक्ष में यह निर्णय भी दिया गया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा भुगतने के लिए गोगटे को पूना के निकट यरवदा के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। दोस्तों, वसुदेव बलवंत गोगटे का जन्म 11 अगस्त 1919 को सतारा जिले के मिराज नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिता मिराज हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। मिराज से हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद गोगटे फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने पुणे चले गए थे। गोगटे वीर सावरकर के जीवन दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और वो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के भी भक्त थे, जिन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी के फंदों पर झुला दिया गया था। मुकदमे के क्रम में गोगटे को बताया गया कि उनकी दोनों गोलियां हॉडसन महोदय के सीने में लगी थीं, लेकिन हॉडसन महोदय अपने शर्ट के नीचे रुपए रखने का एक चमड़े का बटुआ हमेशा रखते थे जिसमें स्टील के बटन लगे थे। स्टील के बटनों में ही गोलियां लगने के कारण हॉडसन महोदय की जान बच गई थी। गोगटे को इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ। उनका अनुमान था कि हॉडसन महोदय कपड़ों के अंदर स्टील का जिरह बख्तर पहनकर कॉलेज गए थे, क्योंकि खतरे के उन दिनों में अपने बचाव की सावधानी रखना उनके लिए बिल्कुल ही स्वाभाविक था। गोगटे को यरवदा जेल में रखा गया और उसी जेल में कुछ दिन बाद महात्मा गांधी को भी रखा गया था। जेल के अधिकारियों ने यह ध्यान रखा कि गोगटे और गांधी जी की भेंट ना हो सके। गोगटे की जेल से मुक्ति सन 1937 में हुई और कहा जाता है दोस्तों कि स्वयं सर अर्नेस्ट हॉडसन ने गोगटे की मुक्ति के लिए प्रयत्न किया था। जेल से मुक्ति के बाद गोगटे ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था उस पत्र में, जानेंगे इस देशभक्ति गीत के बाद।

0: क्रांति वीरों की यशोगाथा का कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रांति वीर वसुदेव बलवंत गोप्टे की। वसुदेव बलवंत गोप्टे को जेल हुई और फिर बाद में महात्मा गांधी को उन्होंने पत्र भी लिखा। गांधी जी ने 24 सितंबर 1937 को वर्धा से गोप्टे के पत्र का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। प्रिय श्री गोप्टे, आपका पत्र पाकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। मुझे इस बात का भी हर्ष है कि आप जेल से मुक्त हो गए हैं। यदि आप वर्धा आकर मुझसे मिलेंगे तो मुझे और अधिक हर्ष होगा। जब आप जेल में थे तो मैंने आपसे मिलने का प्रयत्न किया था, लेकिन मैं अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका। आपका शुभाकांक्षी मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, जेल से मुक्त होने के बाद गोप्टे ने सर अर्नेस्ट हॉटसन को भी एक पत्र लिखा था। हॉटसन महोदय ने गोप्टे के पत्र का उत्तर दिया और 100 रुपए का एक चेक भी गोप्टे के पास भेजा था और उस उपहार को स्वीकार करने का अनुरोध भी किया गया। गोप्टे ने उपहार को स्वीकार करते हुए सर अर्नेस्ट हॉटसन को धन्यवाद का पत्र लिखते हुए लिखा था, प्रिय सर हॉटसन महोदय, आपने जो मेरे पास उपहार स्वरूप 100 रुपए का चेक भेजा है उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। मेरा कथन है कि आपने मेरे लिए 100 रुपए के रूप में 100 आशीर्वाद भेजे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके प्रति मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है। वो तो उस समय की बात थी जब विशेष परिस्थितियों के कारण मैंने आपको दंड देना चाहा था। वो अध्याय अब समाप्त हो चुका है और अच्छा यही है कि उस घटना पर पर्दा डालकर हम लोग शेष जीवन में अच्छे मित्रों की भांति रहें। आपके प्रति समस्त शुभकामनाओं के साथ आपका वसुदेव बलवंत गोप्टे। अपने शेष जीवन के लिए वसुदेव बलवंत गोप्टे ने वकालत का काम शुरू किया था और उसे उन्होंने जीवन भर निभाया भी। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे क्रांतिवीर वसुदेव बलवंत गोप्टे। आप सुनिए ये देशभक्ति गीत और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था वासुदेव बलवंत सिंह गोगटे पर। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद ने जब डेट्रॉयट से विदा ली तो वहां लौटने की बात उनके मन में बिल्कुल न थी, परंतु घटना चक्र ऐसा घूमा कि 2 सप्ताह बाद ही 9 मार्च को वे पुनः वहां आ पहुंचे। 9 मार्च के डेट्रॉयट जनरल में छपा था कि हिंदू सन्यासी विवेकानंद शिकागो से आज रात डेट्रॉयट लौटेंगे और श्री पामर का आतिथ्य ग्रहण करेंगे। वे ओपेरा हाउस में भारत में पश्चिमी मिशनरी विषय पर व्याख्यान देंगे।
1: लगभग हजारों श्रोताओं ने ये व्याख्यान सुना था। डेट्रॉयट ट्रिब्यून में इसका विवरण प्रकाशित हुआ।
2: स्वामी जी ने सर्वप्रथम भारत की सामाजिक अवस्था का वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने स्पेन व पुर्तगाल से आने वालों की ध्वंस लीला का उल्लेख किया। इसके बाद आए अंग्रेज मिशनरी, परंतु वे भारतवासियों से मेलजोल न रखकर अपने अभिजात्य वर्ग की रक्षा में व्यस्त रहे और गरीबों की अन्न और वस्त्रहीनता का फायदा उठाने लगे। उन्होंने और भी कहा, अधिकांश मिशनरी भारतीय शास्त्रों के साथ अपरिचित, अर्धपरिचित तथा अपने कार्य के अनुपयुक्त हैं। वे सच्चे धार्मिक मिशनरी के विरोधी नहीं थे, परंतु ऐसे निस्वार्थ धार्मिक मिशनरी हैं कहाँ। वे तो आजीविका के रूप में धर्म प्रचार करने जाते हैं, और इन राष्ट्रों के बारे में चर्चा करनी हो तो कहना पड़ेगा कि उन लोगों ने पृथ्वी पर खून की नदियां प्रवाहित की हैं। उन्होंने और भी कहा कि सभी धर्म मूलतः सत्य हैं, अतः मिशनरियों को चाहिए कि वे किसी राष्ट्र या संप्रदाय का गर्व ना पालें, क्योंकि भगवान की संतानों के बीच भला संप्रदाय भेद कैसे होगा।
1: ये व्याख्यान देने के बाद स्वामी जी ने स्वयं बड़े संतोष का अनुभव किया था। अगले दिन हेल बहनों को अपने पत्र में उन्होंने सूचित किया,
3: इस समय मैं श्री पामर का अतिथि हूँ। ये बड़े ही सज्जन हैं। परसों रात उन्होंने अपने पुराने मित्रों को एक भोज दिया था, जिसमें से हर एक की आयु 60 वर्ष के ऊपर थी। इस मंडली को वे वयोवृद्ध बालक संघ कहा करते हैं। एक नाट्यशाला में मैंने 2.5 घंटे तक व्याख्यान दिए हैं, उनमें ये अंतिम ही सर्वोत्तम था। सुनकर श्री पामर आनंद विभोर थे और श्रोतागण मंत्रमुग्ध बैठे रहे। व्याख्यान समाप्त हो जाने पर ही मुझे पता चला कि मैं इतनी देर तक बोलता रहा।
0: इस भाषण के बाद ही वे पास के बे सिटी और सेगिनो नगर का दौरा कर पुनः डेट्रॉयट लौट आए और शनिवार को यूनिटेरियन चर्च में भारतीय नारी विषय पर बोले।
3: भारतीय नारी का आध्यात्मिक आदर्श अति उच्च है। विभिन्न देशों के नारी समाज को उनके अपने अपने आदर्शों के आधार पर विचार करना चाहिए। पाश्चात्य मापदंडों से प्राच्य नारी का मूल्यांकन करना उचित नहीं। पश्चिम में नारी पत्नी है, पूर्व में वो मां है। भारत में सतीत्व का सर्वाधिक सम्मान है। नारी के शरीर से जगदम्बा ही अभिव्यक्त होती हैं।
1: श्रोतागण पाश्चात्य और भारतीय नारियों की तुलना सुनकर अचंभित हो गए। इस प्रकार 30 मार्च तक डेट्रॉयट में बिताकर स्वामी जी इस नगर से विदा हुए, पर बाद में एक बार सन 1896 में पुनः वहां आकर लगभग 2 सप्ताह तक व्याख्यान और कक्षाएं चलाई। उस बार के डेट्रॉयट निवास के बारे में श्रीमती फंकी ने लिखा है,
4: उनके साथ आए संकेत लेखक तथा विश्वस्त गुडविन, विभिन्न परिवारों के निवास के लिए वहां पर एक छोटा सा रिचेल्यू होटल है, उसी के एक कमरे में वे लोग रहते थे और कक्षाओं एवं व्याख्यान के लिए बड़ा बैठक खाना उपयोग में लाते थे। तथापि भीड़ के अनुपात में वो कमरा छोटा पड़ता था, अतः अनेक लोगों को लौट जाते देखकर हमें अत्यंत दुख होता था। कमरा, हॉल और सीढ़ी सब लोगों से भर जाता था। उस समय वे केवल भक्ति से परिपूर्ण रहते थे, भगवत प्रेम के ही वे भूखे और प्यासे थे। वे एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद में विभोर हो उठे थे। लगता था मानो स्नेहमयी जगदम्बा के लिए व्याकुलता के फलस्वरूप उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका अंतिम सार्वजनिक व्याख्यान हुआ था टेंपल बेथेल में। उसके पुरोहित थे राबाई लुई ग्रॉसमन, जो स्वामी जी के बड़े निष्ठावान प्रशंसक थे। उस दिन रविवार था और जनता इतनी अधिक संख्या में आई थी कि हम लोग किसी दुर्घटना की आशंका से भयभीत हो गए थे। ठसाठस भरे लोगों की पंक्तियां सड़क तक फैली हुई थी और कई सौ लोगों को लौट जाना पड़ा। स्वामी जी ने वहां उपस्थित अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लिया था। वहां उनके दिए हुए दो व्याख्यानों का विषय था, पाश्चात्य जगत को भारत का संदेश तथा विश्व धर्म का आदर्श। उनके अति मनोरम तथा विद्वतापूर्ण व्याख्यान हमने सुने। उस रात आचार्य देव को मैंने जिस रूप में देखा वैसा और कभी नहीं देखा। उनके सौंदर्य में ऐसा कुछ था जो इस पृथ्वी का नहीं था।
0: सम्मान तथा सफलता के बीच भी स्वामी जी का वैराग्य किस प्रकार अभिव्यक्त हो उठता था, इसका परिचय उस काल के एक पत्र में प्राप्त होता है।
3: श्री होल्डन आज सुबह मुझे मिशिगन में भाषण देने के लिए खूब समझा रहे थे, परंतु मैं थोड़ा सा बोस्टन और न्यूयॉर्क देख लेने को इच्छुक हूं। सच कहता हूं, जो जो मुझे लोकप्रियता मिलती जा रही है और बोलने में आसानी होती जा रही है, त्यों त्यों मैं इससे उब रहा हूं। इन सब व्यर्थ की बातों से भगवान मुझे बचाएं। अब ये सब अच्छा नहीं लगता। ईश्वर को मंजूर हुआ तो मैं बोस्टन या न्यूयॉर्क में विश्राम करूंगा।
0: ठीक इसी समय उन्होंने अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों की सहायता से व्याख्यान कंपनी से नाता तोड़ लिया था। उनके 15 मार्च के पत्र में है,
3: पहले व्याख्यान के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं हुई। हॉल का किराया ही था $150। मैंने होल्डन को विदा कर दिया है, एक दूसरा व्यक्ति मिल गया है, देखें वो अच्छी व्यवस्था करता है या नहीं।
0: व्याख्यान विषयक अनुबंध रद्द करने के विषय में श्रीमती बर्क ने लिखा है,
4: स्वामी जी जिस समय श्री पामर के मकान में निवास कर रहे थे, संभवतः तभी स्वामी जी का व्याख्यान कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त हुआ था। यह अनुबंध 3 वर्षों के लिए हुआ था, परंतु 4 महीनों के भीतर ही वो उन्हें एक बड़ा बंधन प्रतीत होने लगा। संभवतः स्वामी जी के व्यवसायी मित्र ही उन्हें उससे मुक्ति दिलाने में सफल हुए थे, क्योंकि भगिनी क्रिस्टीन के मतानुसार प्रभावशाली मित्रों के हस्तक्षेप के बिना उससे मुक्त होने का कोई उपाय न था। परंतु इस अनुबंध को रद्द करने से उन्हें बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि स्वामी जी ने तब तक अपने भारतीय कार्य के लिए जितना कुछ संचय किया था वो लगभग पूरा ही उन्हें खो देना पड़ा था।
1: ये सारी बातें उन्होंने खुद श्रीमती हेल को लिखी थी। फिर निरंतर आलोचनाओं और आक्रमणों से वे ऊब गए थे। उन्होंने श्रीमती हेल को लिखा,
3: अब तक सब कुछ ठीक है, परंतु पता नहीं क्यों जब से यहां आया हूं मेरा मन बड़ा उदास है। व्याख्यान आदि निरर्थक चीजों से मैं बिल्कुल थक गया हूं। सैकड़ों प्रकार के नर पशुओं से मिलते मिलते मेरा मन अशांत हो गया है। मैं तुम लोगों को अपनी रुचि की बात बताता हूं। मैं लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, परंतु मैं गंभीर विचार कर सकता हूं, और उसके फलस्वरूप जब जोश में आता हूं तो वाणी के स्फुलिंग निकाल सकता हूं। पर यह होना चाहिए केवल कुछ चुनिंदा लोगों के बीच ही, फिर वे यदि चाहें तो मेरे विचारों को दूर दूर तक प्रसारित करें। चिंतन करने के लिए मनुष्य को स्वाधीन होना चाहिए, और विशेषकर तब जबकि विचार आध्यात्मिक हो। चूंकि स्वाधीनता का यह दावा कि मनुष्य मशीन नहीं है समस्त धार्मिक विचारों का सार है, अतः यंत्र के समान नियम पूर्वक इस चिंतन में अग्रसर होना संभव नहीं। हर चीज को यंत्र के स्तर पर खींच लाने की प्रवृत्ति ही पाश्चात्यों की अपूर्व समृद्धि का कारण है, परंतु इसी प्रवृत्ति ने समस्त धर्म को उनके द्वार से विताड़ित भी किया है। जो थोड़ा सा बचा है उसे भी पश्चिम ने नियमबद्ध कवायद सा बना लिया है। वस्तुतः मैं तूफानी कतई नहीं हूं, बल्कि हूं ठीक इसके विपरीत। मैं जो चाहता हूं वो यहां नहीं है, और मैं इस तूफानी वातावरण को और अधिक काल तक सहन करने में असमर्थ हूं। स्वयं पूर्ण बनने का प्रयास करना तथा कुछ अन्य नर नारियों को पूर्ण बनने में सहायता करना पूर्णता की उपलब्धि का यही मार्ग है। भला करने से मेरा तात्पर्य है कुछ असाधारण मानवों का विकास करना, न कि भैंस के आगे बीन बजाते हुए समय, स्वास्थ्य तथा शक्ति का क्षय करना।
1: व्याख्यान कंपनी के साथ संबंध तोड़ने के मूल्य स्वरूप उन्हें अपना अर्जित प्रायः सारा धन ही त्याग देना पड़ा था। कंपनी उन्हें कैसे ठगती थी उसके बारे में उन्होंने आला सिंगा को 11 जुलाई 1894 में लिखा था।
3: डिट्रॉइट के व्याख्यान से मुझे $900 अर्थात ₹2700 मिले थे। अन्य व्याख्यानों में से एक के द्वारा मैंने एक घंटे के अंदर $2500 अर्थात ₹7500 कमाए, परंतु मुझे मिले $200 ही। एक धोखेबाज भाषण कंपनी मुझे ठग रही थी, अब मैंने उनका साथ छोड़ दिया है।
1: आपको जानकारी दे दूं कि उन दिनों डॉलर की विनिमय दर ₹3 थी।
5: दूसरी बार डिट्रॉइट आकर स्वामी जी पहले श्री पामर के यहाँ, फिर श्रीमती वागले के घर पर ठहरे थे। इस बारे में उन्होंने एक पत्र में मजेदार बात लिखी थी।
3: मैं बूढ़े पामर के साथ आनंद पूर्वक हूँ, वे बड़े विनोदी तथा भले वृद्ध हैं। हाँ, मेरे बारे में सबसे मजेदार बात लिखी है यहाँ के एक समाचार पत्र ने। लिखा है, तूफानी हिंदू यहाँ आ पहुंचा है और वो श्री पामर का अतिथि है। श्री पामर हिंदू हो गए हैं और भारत जा रहे हैं। बस उनकी जिद यही है कि दो चीजों में सुधार होना चाहिए। प्रथम ये कि जगन्नाथ जी के रथ में श्री पामर के लॉग हाउस फार्म में पले हुए फ्रेंच नस्ल के घोड़े जोते जाएं, और द्वितीय ये कि हिंदुओं के पवित्र गौवंश में जर्सी गायों को भी सम्मिलित कर लिया जाए। श्री पामर उक्त नस्ल के घोड़ों तथा गायों के बड़े शौकीन हैं और उनके लॉग हाउस फार्म में दोनों का बाहुल्य है। श्री पामर के घर अधिक दिन बिताने से श्रीमती बागले नाराज हो गई हैं, अतः आज उनके यहां लौट आया। वैसे श्री पामर के घर में दिन बड़ी तफरीह में कटे। वे बड़े ही मौजी और हंसमुख आदमी हैं। मेरे चले आने से वे बड़े दुखी थे, लेकिन मैं विवश था।
5: स्वामी जी के पत्रों से ही ज्ञात होता है कि वे मध्य पश्चिम का कार्य समाप्त कर पूर्वी अंचल में जाने के लिए व्यग्र थे। उस अंचल में जाने से पूर्व 23 फरवरी को वे ओहियो प्रांत के आडा शहर में और वहां से डिट्रॉइट लौटकर पुनः 20 मार्च को मिशिगन प्रांत के बेसिटी तथा सेगिना नगर में गए थे।
1: इन्हीं यात्राओं के दौरान उनकी भेंट अमेरिका के लोकप्रिय अक्षयवादी वक्ता इंगरसोल से हुई। उन्होंने स्वामी जी को सावधान कर दिया था कि वे अति साहसी या अति स्पष्टवादी न हो। इसका कारण पूछने पर इंगरसोल ने कहा था,
6: 50 वर्ष पूर्व इस देश में प्रचार के लिए आने पर आपको फांसी से लटका दिया जाता या फिर जिंदा जला दिया जाता। यहाँ तक कि इसके कुछ और काल बाद आने पर भी आपको पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया जाता।
5: स्वामी जी तथा इंगरसोल के अनुभवों के बीच एक अंतर था। इंगरसोल पूरे धर्म के ही विरोधी थे, जबकि स्वामी जी स्वयं आस्तिक, ईश्वर प्रेमी तथा ईसा मसीह के प्रति असीम श्रद्धावान थे। इंगरसोल अतीन्द्रिय सत्य में अविश्वासी थे, जबकि स्वामी जी विश्वासी थे। इंगरसोल धर्मध्वंसी थे, जबकि स्वामी जी केवल संकीर्णता एवं पाखंड के विरोधी थे। अतः स्वामी जी के भाग्य में विरोधी के साथ समर्थन भी यथेष्ट जुटा था। एक घटना के द्वारा इन दोनों के बीच के पार्थक्य का स्पष्ट बोध हो जाता है। एक कक्षा के श्रोताओं को स्वामी जी ने बताया था,
3: एक बार इंगरसोल ने मुझसे कहा था, मेरा विचार है कि संसार से जितना अधिक संभव हो लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। संतरे को निचोड़कर जितना अधिक हो सके रस निकाल लेना होगा, क्योंकि इस जगत के अलावा अन्य किसी लोक के अस्तित्व के बारे में हम निश्चित नहीं हैं। मैंने उत्तर दिया, इस जगत रूपी संतरे को निचोड़ने की मैं आपसे अच्छी प्रणाली जानता हूं और उससे मुझे रस भी ज्यादा मिलता है। मैं जानता हूं कि मैं मर नहीं सकता, अतः मुझे रस निकालने की हड़बड़ी नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है, अतः आराम से निचोड़ता हूं। मेरा कोई कर्तव्य नहीं, स्त्री पुत्रादि तथा विषय संपत्ति का कोई बंधन नहीं है, अतः मैं समस्त नर नारियों से प्रेम कर सकता हूं। सभी मेरे लिए भगवत स्वरूप हैं। मनुष्य को भगवान समझकर उससे प्रेम करने में कितना आनंद है। अपने संतरे को इस प्रकार निचोड़कर देखिए, इससे आपको 10,000 गुना अधिक रस मिलेगा। रस की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाएगी।
5: स्वामी जी और भी एक मजेदार घटना सुनाया करते थे। उन दिनों वे व्याख्यान देने में लगे हुए थे और केवल एक बैग साथ लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का दौरा करते रहते थे। विभिन्न स्थानों के लोगों में स्वामी जी के व्याख्यान सुनने का आग्रह होने पर भी उनकी सुख सुविधा पर ध्यान देना सर्वदा संभव नहीं हो पाता था। इसी समय एक बार वे मध्य पश्चिम के एक छोटे से नगर में व्याख्यान देने पहुंचे। उस समय वे बड़े ही थके हुए लग रहे थे और थोड़ा विश्राम कर लेना उनके लिए आवश्यक था। स्वागत समिति के सचिव ने उनके विश्राम के लिए एक छोटा सा अंधेरा कमरा दिखा दिया। कमरे में प्रविष्ट होकर स्वामी जी जो ही आराम कुर्सी पर बैठे, त्यों ही वो चरमराती हुई बीच में से टूट गई।
7: हे भगवान!
5: और स्वामी जी अपना संतुलन खोकर उसके भीतर गिर पड़े। बहुत कोशिश करने पर भी उनका शरीर उसमें से निकल नहीं पाया, बल्कि उन्होंने पाया कि अधिक हिलने डुलने पर कपड़े फट जाने तथा शरीर छिल जाने की आशंका है। अतः वे उसी असुविधाजनक अवस्था में ही निश्चेष्ट पड़े रहे। आखिरकार व्याख्यान का समय हो जाने पर जब सचिव महोदय ने आकर मंच पर चलने के लिए उन्हें पुकारा, स्वामी जी चलिए, श्रोतागण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा,
7: महाशय यदि आप मेरी वर्तमान शोचनीय अवस्था से उद्धार न करें तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को इसी प्रकार इंतजार करते रहना होगा।
5: यह सुनकर सचिव शीघ्रता पूर्वक भीतर आए और स्वामी जी को खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद हंसी ठहाकों से कमरा गूंज उठा। स्वामी जी इस घटना का इतने सुंदर ढंग से वर्णन करते थे कि हंसते हंसते उनके गुरु भाइयों के पेट में बल पड़ जाते थे।
1: एक अन्य घटना से स्वामी जी की महानता तथा मानव जाति के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा व सहानुभूति अभिव्यक्त हो उठी थी। अमेरिका के दक्षिणी प्रांतों में कई बार उन्हें भ्रमवश नीग्रो समझ लिया जाता था। एक बार उसी अंचल में ट्रेन से उतरने पर उनका बड़ा भव्य स्वागत होते देखकर एक नीग्रो कुली उनके पास आकर बोला, मैंने सुना है कि आप हमारी जाति में एक महान व्यक्ति हुए हैं और आपके द्वारा नीग्रो समाज गौरवान्वित हुआ है। मैं आपके साथ हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त करने आया हूँ। स्वामी जी ने बड़ी आत्मीयता पूर्वक उस रेलवे कुली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। वे अपने प्रति नीग्रो लोगों के व्यवहार के और भी उदाहरण दिया करते थे और अपने को नीग्रो समझ लिए जाने पर जरा सा भी संकुचित या नाराज नहीं होते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि दक्षिण के किसी होटल वाले ने उन्हें नीग्रो समझकर होटल में घुसने ही नहीं दिया और अभद्रता पूर्वक प्रताड़ित कर दिया। तथापि उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वे एक नीग्रो नहीं वरन भारतवासी हिंदू हैं। इसके बाद अन्यत्र आश्रय लेकर स्वामी जी ने उस नगर में बड़ा सुंदर भाषण दिया तथा अगले दिन का समाचार पत्र पढ़कर होटल वाले को अपनी भूल समझ में आई और उसने आकर क्षमा याचना की। यहाँ तक कि अमेरिका के उत्तरी भाग में भी उन्हें हजामत की दुकान से अपमानित होकर निकल आना पड़ा था। काफी काल बाद ये घटनाएं सुनने के बाद जब उनके एक पश्चिम देशीय शिष्य ने पूछा कि इन स्थानों पर उन्होंने क्यों नहीं अपना सही परिचय बता दिया, तो स्वामी जी रोष पूर्वक बोले, क्या कहा, दूसरों की कीमत पर बड़ा होना, मैं इसके लिए पृथ्वी पर नहीं आया।
5: रंग भेद पर आधारित श्रेष्ठता का दावा उन्होंने अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि ऐसा करने पर वे उसकी हंसी उड़ाते थे। उनका विश्वास था कि उनकी अपनी जाति के रक्त में विभिन्न धाराओं का सम्मिश्रण हुआ है। वे कहते थे,
3: यदि मुझे अपने गौर वर्ण आर्य पूर्वजों पर गर्व है तो अपने पीत वर्ण मंगोल पूर्वजों पर मुझे और भी गर्व है, और मैं सर्वाधिक गर्वित हूं अपने कृष्ण वर्ण नीग्रो पूर्वजों के प्रति।
5: भगिनी निवेदिता ने लिखा है,
4: उन्हें अपने शारीरिक गठन और विशेषतः अपने मंगोल जबड़े पर गर्व था, जिसे वे लक्ष्य सिद्धि के पथ में बुलडॉग जैसी दृढ़ता का परिचायक मानते थे। उनका विश्वास था कि मंगोल जाति की ये विशेषता आर्य जाति की सभी शाखा प्रशाखाओं में पर्याप्त हो चुकी है। इसी प्रसंग में एक दिन वे कह उठे थे, देखते नहीं ततार ही प्रत्येक जाति की प्राण शक्ति रूपी मदिरा है। वो सभी जातियों के रुधिर में बल और उद्यम संक्रमित करता है।
5: अपनी वाक पटुता के फल स्वरूप वे इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके पास व्याख्यान के लिए असंख्य आमंत्रण आते थे। उन सभी को स्वीकार करना उनके समय तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव न था, तथापि जिन्हें वे स्वीकार कर लेते थे उनके फलस्वरूप उन्हें सप्ताह में 12-14 तक व्याख्यान देने पड़ते थे। इससे उनका शरीर मन काफी थक जाता था। कुछ दिनों बाद उन्हें लगता कि बुद्धि का भंडार मानो शून्य हो गया है और वे व्याख्यान के विषय तक ठीक नहीं कर पाते। वे सोचते, अब क्या करूंगा, कल क्या बोलूंगा। ऐसी चरम अवस्था में अप्रत्याशित रूप से दैवी सहायता आ पहुंचती। इसके फलस्वरूप रात में सो जाने पर मध्य रात्रि के समय उन्हें एक ऊंची आवाज सुनाई देती, जिसमें उन्हें अगले दिन के व्याख्यान का विषय वस्तु बता दिया जाता। कभी ये आवाज काफी दूर से आती प्रतीत होती, फिर क्रमशः निकट आती जाती, अथवा देखते कि वे बिस्तर पर लेटे हैं और कोई दूसरा समीप खड़ा होकर व्याख्यान दे रहा है, या फिर कभी दो आवाजें व्याख्यान के विषय पर तर्क वितर्क करती, जिससे उन्हें अगले दिन के लिए सामग्री प्राप्त हो जाती। इनमें से अधिकांश विषय उन्हें पहले से अज्ञात तथा नवीन प्रतीत होते। कभी कभी तो उस मकान में रहने वाले अन्य लोग भी ये वार्तालाप सुनकर अगले दिन पूछते, स्वामी जी कल रात आप किसके साथ इतने जोर जोर से बातें कर रहे थे। इस पर स्वामी जी मृदु हास्य के साथ दो चार ऐसी बातें कहकर टाल जाते कि प्रश्नकर्ता के मन में ये व्यापार और भी रहस्यमय हो उठता। ज्यादा पूछताछ करने पर वे व्याख्या करते हुए कहते,
3: अरे वो कुछ भी नहीं, स्वयं क्रिय मन की स्वकेंद्रिक क्रिया मात्र है। वही अपने को दो भागों में विभाजित करके उपदेश देती है, बातें करती है और विचार करती है। यह आत्मा की ही असीम शक्ति की परिचायक है। आत्मा की असीम संभावनाएं इसी रीति से निद्रा काल में अभिव्यक्त होती हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें कोई अलौकिक रहस्य नहीं है। इसी को दैवी प्रेरणा कहते हैं।
1: परंतु वार्तालाप के दौरान वे प्रायः इन सबको कोई महत्व नहीं देते या इसकी अलौकिकता को स्वीकार नहीं करते और युक्ति की सहायता से समझा देते कि मन की स्वाभाविक प्रक्रिया से ही ऐसा हो जाता है।
5: इन्हीं दिनों उनमें अलौकिक योग शक्तियों का भी स्फुरण हुआ था। मदाम काल्वे की घटना में हमें उसका परिचय मिल चुका है, परंतु सामान्यतः वे उस शक्ति का उपयोग नहीं करते थे। जिन विरल अवसरों पर वे उसका प्रयोग करते उस समय कोई ना कोई विशेष कारण विद्यमान होता था। उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि इच्छा हुई तो स्पर्श मात्र से ही वे दूसरों की जीवन गति में परिवर्तन ला सकते थे। कमरे में बैठे ही दूर का समाचार जान सकते थे और दूसरों के अंतर मन की बातें देख लेते थे। कई बार देखने में आया कि पूछने के पहले ही वे प्रश्नकर्ता की शंका जानकर उसका निवारण कर देते। दूसरों की ओर देखकर ही वे उसके विगत जीवन के रहस्यों को खोल सकते थे। शिकागो के एक धनाढ्य व्यक्ति योग की शक्तियों के विषय में संदेहवान थे। एक बार उन्होंने स्वामी जी की हंसी उड़ाने के उद्देश्य से कहा,
8: महाशय आप जो कहते हैं वो यदि सत्य हो तो फिर मेरे मन के गठन तथा मेरे अतीत जीवन के बारे में कुछ बताइए।
5: स्वामी जी ने क्षण भर के लिए हिचकिचाने के बाद अपनी तीक्ष्ण दृष्टि इस प्रकार उनकी आंखों पर स्थिर कर दी कि वो दृष्टि अदम्य शक्ति के साथ उस व्यक्ति के देह मन को भेदती हुई उनकी जीवात्मा तक पहुंचने लगी। वे सज्जन घबरा कर कह उठे,
8: स्वामी जी ये आप क्या कर रहे हैं? लगता है मानो आप मेरी पूरी आत्मा को मत रहे हैं और मेरे जीवन के सारे गोपनीय रहस्य तैरते हुए ऊपर आ रहे हैं।
5: ऐसी शक्तियों के अधिकारी होकर भी वे उनका दुरुपयोग नहीं करते थे और ना ही उन्हें आध्यात्मिक प्रगति का द्योतक मानते थे।
1: इसके फलस्वरूप स्वामी जी के पास आने वाला व्यक्ति आत्म उन्नति तथा धर्मानुभूति के पद की ही जानकारी पाता और जीवन में एक नवीन प्रेरणा की उपलब्धि करता। उन दिनों वे मानो बाकी सब कुछ भूलकर अमेरिका की आध्यात्म चेतना को जगाने के कार्य में ही विशेष रूप से लगे हुए थे। अमेरिका की जनता भी उन्हें इसी दृष्टि से देखती थी। उनके लिए वे साधु थे, महापुरुष थे और अमेरिका को भारत का श्रेष्ठतम एवं मंगलमय अवदान थे। इसीलिए भारत के इन वरद पुत्र को अमेरिका के समाज ने अतीव आत्मीय के समान अपना लिया था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं संक्षिप्त में कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ। 7:10 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत। महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा 8 बजे से। आमने सामने कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 8:30 से। वागर्थ ये कार्यक्रम सुनिएगा 9 बजे और हमारा विशेष कार्यक्रम होगा 9:30 से। परिक्रमा और रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा 10 बजे से। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हिंदुस्तान। हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा सुब्रमण्यम भारती पर। विष्णु नारायण भातखंडे जी पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी सुनिएगा 11 बजे से। और 11:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। ये थी जानकारी प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।